मन के जानने वाले सरकार झूठ अथवा कपट से नहीं कहता। पानी में पड़े हुए सन की गांठ जैसी मेरी हठ है। खोटा खरा जैसा हूं आपसे आपकी सौगंध इतना ही कहता हूं कि मैं आपका हूं। दूसरे किसी देवता या मनुष्य का भरोसा कुछ चाहने अथवा पूजने के लिए भी नहीं है। हाथी जैसी सेवा देकर कुत्ते जैसे फल देने वाले ये स्वार्थी साथी आपकी तरह दीनों की पीड़ा को कहां जान सकते हैं। झूठ कहूं तो मालिक मुझे वो सजा दें जो झूठे सपेरे को सांपों के बीच मिलती है, और प्रभु सच्चा हूं तो पंचों में कह दीजिए तू मेरा है। जातक की भांति आस लगाए मैं आपको ही देख रहा हूं।

नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 अगस्त सन 2026। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: ये है विविध भारती। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया भर के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्म

0: विश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है, और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थलसेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्र मौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा धर्म है। ये था आज का चिंतन। लीजिए सुनते हैं वंदनवार में भक्ति गीत।

यह है विविध भारती झरोका में लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 269 6:35 से। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा। आज आप सुनेंगे इसका तीसरा भाग, कलाकार गायिका शुभा मुद्गल। समय होगा 6:45 से। सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से सुनिए, हम है राही प्यार के। आठ बजकर 15 से और दिन में 2 बजे से त्रिवेणी सुनिएगा।

चित्रलोक का समय होगा सुबह 8:30 से और रात 8:15 से। सुबह व रात्रि 9:30 से आज के फनकार आज केंद्रित होगा गीतकार शकील बदाविनी पर।

10 बजे से पिटारा में उजाले उनकी यादों के। फिल्म निर्देशक, लेखिका, नाटककार पद्म भूषण सई पराजपई से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग आज आप सुनेंगे। ग्यारह बजे से रंग तरंग, 12:05 से यादों की महफिल। एक बजे से वक्त होगा सुरीला सफर का, 2:30 से सदाबहार नगमे।

दिन में 3 बजे से सखियों का कार्यक्रम सखी सहेली सुनिएगा। चार बजे से वक्त होगा पिटारा में सेहत नामा का। नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे। पांच बजे से छाया गीत, 5:30 से तराने नए पुराने। शाम 6:35 से वक्त होगा संध्या रंजन में भक्ति गीतों का। 7 बजे से फौजी साथियों के लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम जयमाला। 7:45 से इंद्रधनुष। रात 8 बजे आप सुनेंगे हवा महल। इसमें आप सुनेंगे हास्य नाटिका कैसे कैसे दोस्त, लेखक सुरेंद्र कुमार तिवारी, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। नौ बजे से लेकर आएंगे कार्यक्रम आपके लिए। 10 बजे छाया गीत और 10:30 से वक्त होगा ढलती जाए रात का। 'झरोखा' में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

बाली सुग्रीव युद्ध हुआ। बलशाली बाली के सामने सुग्रीव टिक नहीं सका। वो भागकर श्रीराम की शरण जाता है। उन्होंने उसको उत्साहित कर दूसरी बार फूलों की माला पहनाकर भेजा

समान दिखने वाले दोनों भाइयों में उसे पहचाना जा सके। दूर पेड़ की आड़ से श्रीराम बाली की छाती में वाण मारकर उसका वध कर देते हैं। अपने अंतिम क्षणों में श्रीराम को समीप पाकर वो प्रश्न करता है, हे प्रभु, आप तो समदर्शी हैं, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, फिर मैं वैरी और सुग्रीव आपका प्यारा क्यों कर हो गया? श्रीराम का उत्तर है, हे मूर्ख, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र वधु और कन्या, ये चारों एक समान होती हैं। इन पर बुरी दृष्टि डालने वाले को मारने से कोई पाप नहीं होता।

0: अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस का भाग 269।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोता मित्रों नमस्कार। श्रृंखला वर्षा चौमासा की आज की यह है तीसरी कड़ी। शुभा मुद्गल हमारी जानी पहचानी प्रख्यात गायिका स्टूडियो में उपस्थित हैं और हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार। और आपने मेरी तारीफ तो कर दी पर मुझे भी ये कहना है कि संगीत सरिता एक बहुत बहुत वर्षों से मैं भी सुनती आई हूँ और बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुने, मेरे लिए विशेष उपलब्धि है कि आज मुझे इसमें प्रस्तुति करने का अवसर दिया जा रहा है।
0: जी तो बात चल रही थी मल्हार की, शुद्ध मल्हार, मेघ मल्हार, मेघ, और इसके बाद आज आपने कौन सी बंदिश चुनी है, किस राग को चुना है, सब कुछ बताइए।
1: मैंने आज के लिए राग गौड़ मल्हार चुना है।
0: जी
1: बहुत लोकप्रिय मल्हार का प्रकार है, प्राचीन भी है और इसे विभिन्न प्रकारों से गाया जाता है, यानी खूब मतभेद है इसके विषय में।
0: अच्छा अच्छा
1: के बिलावल थाट का है, खमाज थाट का है, इत्यादि इत्यादि। कोमल गंधार लगा के गाना चाहिए, कैसे गाना है, दोनों निषाद लगने चाहिए कि नहीं, ये सब बहुत अलग अलग चर्चा है। लेकिन मैंने जिन दो बंदिशों को प्रस्तुत करने का मन बनाया है उनके विषय में एक और बात आपको बताना चाहूंगी। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो शास्त्रीय संगीत की बंदिशें हैं वो हमेशा ही प्राचीन होती हैं, और जैसे ही किसी भी प्रकार का शास्त्रीय संगीत हो तो वो एकदम 5000 साल से कम का नहीं होता। लेकिन सत्य तो ये है कि शास्त्रीय संगीत सीखने वाले लोग तो आज भी हैं और रचना करने वाले लोग
0: भी आज
1: हैं, प्रस्तुत हैं हमारे बीच में।
0: मतलब वो धारा जो रचना की है वो अविरल है, बहती जा रही है और वो विस्तृत भी होती जा रही है।
1: बिल्कुल। और उसमें अपना अपना योगदान समर्पित रूप से लोग करते जाते हैं।
0: जी
1: तो ये जो दोनों रचनाएं चुनी हैं, एक मैंने झपताल की रचना चुनी है और एक मैंने तीन ताल की रचना चुनी है,
0: अर्थात ये वर्षा ऋतु से संबंधित ही बंदिशें होंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। गौड़ मल्हार में निबद्ध और वर्षा संबंधी साहित्य की दो रचनाएं हैं, लेकिन दो बहुत ही जाने माने वाग्यकारों की बंदिशें हैं ये। जो पहली जो बंदिश है झपताल में जो मैं गाऊं,
0: गौड़ मल्हार का जो चलन है वो भी अगर आप मतलब आरोह अवरोह और राग के बारे में थोड़ी सी पहचान जो हो।
1: जी तो कुछ जो इसकी विशेषताएं हैं, वैसे तो मैंने बताया कि अलग अलग तरह से गाया जाता है इसे, लेकिन जो मैं प्रस्तुति कर रही हूं उसमें ये मुख्य जो इसकी स्वर संगतियां हैं वो इस प्रकार हैं। सारे गामा गामा, ये गौड़

0: ये मल्हार का टुकड़ा
1: जी।
0: मा पदानी सादानी पा, पनी दानी सादानी पा, ये बिलावल का टुकड़ा।

0: ये गौड़मल्हार की एक शक्ल ऐसी हाँ। बनती है और ये इन बंदिशों में आपको सुनाई देगी।
1: आप झपताल में जो बंदिश गाने वाली हैं वो पहले
0: जी, जो इसके बोल हैं उनसे अगर आप पूरा स्थाई अंतरा सुने तो उसमें ही आपको पता चल जाएगा कि जो वाग्यकार हैं उनकी छाप उसमें आपको मिलेगी। उमड़ घुमड़ आए कारे बदरवा, अजहू पिया नहीं आए मंदरवा, रुत बरखा में सब घर आए, आए न प्रेम रंग रंगीले पियरवा।
1: अच्छा, ये इनका तखल्लुस है
0: प्रेम रंग जी। लेकिन मजे की बात यह है कि प्रेम रंग के नाम से कई लोग रचना कर चुके हैं। मेरे गुरु जी पंडित रामाश्रय झा जी से पता चला कि ये बंदिश जो है ये एक बहुत जाने माने विद्वान वाग्यकार रहे स्वर्गीय पंडित डी टी जोशी
1: जी,
0: उनकी बंदिश है ये
1: जी
0: जो प्रस्तुत कर रही हूँ मैं।

0: शुभा जी, आप एक दूसरी भी बंदिश की बात कर रही थी कि गौड़ मल्हार में आप प्रस्तुत करने वाली हैं,
1: जी
0: तो वो रचना भी तो बताइए ना।
1: ये रचना पंडित रामाश्रय झा जी, मेरे गुरु जी, जो राम रंग के नाम से रचना करते हैं, उनकी गौड़ मल्हार की एक रचना है तीन ताल में। और इसमें वो कहते हैं कि घन घेरी आयो री माँ, गगन गरजत डर पावे, बड़ी बड़ी बूंदन बरसे, दामिनी दमके चमके कामिनी जियरा धड़के, दामिनी दमके चमके कामिनी जियरा धड़के, राम रंग मनुआ लरजे तरसे, घन घेरी आयोरी माँ।
0: जी, और घन जब इस तरह से घेर घेर लेते हैं, और कामिनी जो है अगर वो अकेली है तो उसका जियरा जरूर ही धड़केगा और लरजेगा मन, सुनते हैं।

0: श्रोता मित्रों, ये था राग गौड़ मल्हार और गौड़ मल्हार में शुभा मुद्गल जी से हमने दो बंदिशें सुनी। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वनियांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

रेल का डिब्बा, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत आप सुन रहे थे सोहनी महिवाल फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत था। श्रोताओं, आज है गीतकार शकील बदायूनी का जन्मदिन। आज भूले बिसरे गीत उन्हीं के लिखे गीतों पर आधारित है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे शबाब फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे मदर इंडिया फिल्म से। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा, नौशाद का संगीत था। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का।

0: मोहम्मद रफी को अभी आप सुन रहे थे कोहिनूर फिल्म से। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा, नौशाद का संगीत था।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय,
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत।

फिल्म अमर से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा, नौशाद का संगीत था। आज गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार जयदेव का जन्मदिन है। उन्हीं के गीत और संगीत से सजा था आज भूले बिसरे गीत।

मेरे महबूब, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। नौशाद ने संगीत दिया था और शकील बदायूनी ने इसे लिखा।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों की आँखों में इशारा हो गया।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त प्रोग्राम हम है राही प्यार के।

0: लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे मदर इंडिया फिल्म से। शकील बदायनी ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत।
1: एक बार जरा फिर कह दो मुझे शर्मा के तू।

अंतराल पर जाने से पहले आप सुन रहे थे गीत बिन बादल बरसात, इस फिल्म से। लता मंगेशकर, हेमंत कुमार की आवाजों में, शकील बदायनी ने इसे लिखा था, हेमंत कुमार का संगीत था। अब हम है राही प्यार के की अगली पेशकश।

0: अमर ज्योति इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले और ए हरिहरन की आवाजों में जयदेव ने संगीत दिया, नक्श लायलपुरी ने से लिखा।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

घरौंदा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह और रूना लैला की आवाजों में गीत। गुलजार ने इसे लिखा, जयदेव का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम हम है राही प्यार के यहीं संपन्न होता है।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंधा स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की संख्या, संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स

0: के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
1: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर दो विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड

0: चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर दो विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरिरंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नभर टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आज की त्रिवेणी भंवरे पर आधारित है। सुबह की पहली किरण के साथ जब ओस से भीगे फूल मुस्कुराते हैं, तब सबसे पहले उनका हाल पूछने भंवरा ही आता है। वो फूल को तोड़ता नहीं, ना ही चोट पहुंचाता है, केवल उसके पास बैठकर उसकी सुगंध को महसूस करता है और अपनी मधुर गुनगुनाहट से उसका अभिवादन करता है। ये उसका अपनापन है। भंवरे की गुंजन हमें सिखाती है कि जीवन में कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, उसमें मधुरता बनी रहनी चाहिए। वो कभी शिकायत नहीं करता कि उस फूल में रस कम है और उसमें अधिक रस है। भेदभाव नहीं करता, वो हर फूल को समान प्यार करता है। प्रकृति का वो अनूठा संगीतकार है जो बगिया में गुनगुनाकर जीवन का राग छेड़ देता है।

भंवरा जब उड़ता है तो लगता मानो हवा ने कोई धुन ओढ़ ली हो। उसकी गुनगुनाहट केवल एक स्वर नहीं बल्कि प्रकृति के हृदय से निकली प्रेम वीणा का मधुर आलाप है। भंवरा जब कलियों पर मंडराता है तो लगता है वो कवि है, फूलों की पंखुड़ियों पर कविता लिखता फिर रहा है। उसकी हर उड़ान एक गीत है और हर ठहराव एक कविता है और हर गुनगुनाहट प्रकृति की अनकही भावनाओं का अनुवाद। भंवरों से अगर हम सीख लें तो रिश्ते और भी सुंदर हो जाएंगे। हम लोगों के जीवन में मुस्कान, प्रेम और अपनापन देकर हम उन्हें खुश रख सकते हैं। हम किसी का मन महका सकते हैं, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। फूलों में सौंदर्य है, कांटों को देखोगे तो फूलों के सौंदर्य की सुगंध से वंचित रह जाओगे। हमेशा अच्छाई की खोज करो, बुराई की नहीं।

0: भंवरा पंखुड़ियों को छूता है, खुशबुओं से बातें करता है और रंगों की दुनिया में प्रेम संदेश लिख जाता है। भंवरा शायद जानता है फूलों की उम्र बहुत छोटी होती है, वो पूरी आत्मीयता से इनके संग जीता है। हमें पता है हमारी जिंदगी की गाड़ी कब तक चलेगी, रुकेगी, लेकिन हम अपनों से आत्मीयता नहीं रखते। कल किसने देखा है, जो आज है उसी में अपनों संग प्रेम से जी लें। भंवरे की छोटी छोटी उड़ाने, चाहे वो गुलाब पर हो या चमेली सरसों के पीले खेतों में हो, वो जीवन का सत्य सिखाती हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ शोर नहीं होता और न दिखावा, एक व्यवहार के मीठे बोलों की मिठास होती है जो बिना कहे भी दिल तक पहुँच जाती है। काश हम भंवरे की तरह रिश्तों की खुशबू पहचानना सीख पाते।
1: पकियन का मेहमान है।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म संडे से इस गीत को अभी आप सुन रहे थे, कामरान बारी और मोहम्मद अली की आवाजों में। वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक। दोस्तों आपको बता दें कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। इसका मुख्य उद्देश्य है स्तनपान के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समर्थन जुटाना, स्वास्थ्य में सुधार करना और स्तनपान के फायदों से लोगों को अवगत कराना।

0: सोनू निगम की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे लकी नो टाइम फॉर लव। इस फिल्म से समीर ने इसे लिखा, अदनान सामी का म्यूजिक।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

0: सोचा ना था, ये था फिल्म का नाम। सोनू निगम संजीवनी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल ने इसे लिखा, संदीस शांडिले का म्यूजिक था।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
0: विविध भारती से, इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक और वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

गोलमाल 3 से ये गीत अभी आप सुन रहे थे शान अनुष्का मनचंदा की आवाजों में, कुमार ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे फरहान अख्तर, अभय देओल, ऋतिक रोशन और साथियों की आवाजों में शंकर एहसान लॉय का संगीत था। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: दलेर मेहंदी, चित्रा और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे रंग दे बसंती फिल्म से। प्रसून जोशी ने इसे लिखा, एआर रहमान का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। शकील दिल का हूँ तर्जुमा कि मोहब्बतों का हूँ राजदां, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। इस बेमिसाल शेर के शायर शकील बदायूनी के नाम है आज के फनकार कार्यक्रम।

किसी ने क्या खूब कहा है कि शायर की दास्तान उसकी पैदाइश से शुरू तो जरूर होती है पर उसकी मौत पर खत्म नहीं होती। उसके अशार वक्त और जमाने की हदों के पार जाकर उसकी याद को जिंदा रखते हैं। शायर पैदा तो होते हैं लेकिन कभी मरते नहीं हैं। और ऐसे ही अमर शायर और गीतकार हैं शकील बदायूनी।

0: तुझसे किया है।
1: शकील शायरी की दुनिया से फिल्मों में आए थे, यानी फिल्मों में आने से पहले वो शायरी के आसमान का एक चमकता हुआ सितारा बन चुके थे। वो मुशायरों की जान हुआ करते थे। उस दौर में तरक्की पसंद शायरी पूरे उफान पर थी। जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही थी। गरीबों और लाचारों को जगाने के लिए शायरी की जा रही थी। ऐसे तूफानी दौर में भी शकील बदायूनी उर्दू शायरी की गहरी रवायत को पकड़े रहे और मोहब्बतों के शायर बने रहे। वो मुशायरों को लगातार लूटते चले गए। गृहस्थी चलाने के लिए शकील बदायूनी ने दिल्ली राज्य सरकार के सप्लाई विभाग में नौकरी कर ली। सन 1942 से 1946 तक दिल्ली में नौकरी करते हुए उन्होंने खूब शायरी की और खूब नाम कमाया। बात सन 1946 की है। एक मुशायरे में शिरकत करने के लिए शकील बदायूनी को मुंबई आना पड़ा। वो पढ़ने लिखने का जमाना था। फिल्म निर्माता भी मुशायरे सुनने के लिए जाते थे। नामचीन निर्माता निर्देशक A.R. कारदार ने जब शकील बदायूनी को मुशायरे में सुना तो उस वक्त बन रही अपनी फिल्म दर्द के गाने लिखने का मौका दिया। बस फिर क्या था, मुनव्वर सुल्ताना, श्याम और सुरैया की अदायगी से सजी इस फिल्म के जरिए शुरू हुआ एक सुरीला अफसाना।

जी, शकील बदायूनी के शुरुआती हिट गानों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि शायरी की दुनिया से आने के बावजूद शकील ने फिल्मी गीतों के व्याकरण को अच्छी तरह से समझ लिया था। उनकी पहली फिल्म के गाने एक तरफ तो सरल और सीधे सादे हैं, तो दूसरी तरफ उनमें शायरी की ऊंचाई भी है। 1946 से सीधे छलांग लगाते हैं और आ पहुंचते हैं सन 1949 में। एक बार फिर AR कारदार की फिल्म जिसका नाम दुलारी, नौशाद की धुन और एक बार फिर शकील का इंतजार की कशिश से लबरेज नगमा। इस गाने को नौशाद ने राग पहाड़ी में क्या खूब बनाया है। इस गाने में नौशाद ने वाद्य यंत्रों के मामले में बड़ी कंजूसी दिखाई है और इस कंजूसी ने बनाया आला दर्जे का ये गाना सुहानी रात।

यूं तो मजरूह और साहिर जैसे गीतकारों ने कमाल के भजन दिए हैं, इसी तरह शकील बदायूनी भजनों के मामले में एकदम अलग नजर आते हैं। भक्ति की पावन ऊंचाई पर पहुंचकर शकील ने जो कुछ लिखा उसे दुनिया आज तक गुनगुना रही है। बैजू बावरा फिल्म का वो ऐतिहासिक गीत जो शकील, नौशाद और मोहम्मद रफी का संगम है, लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिक सद्भाव की एक अनूठी मिसाल है। इस गाने के बोल हैं मन तरपत हरि दर्शन को आज।

दिलचस्प बात यह है कि शकील के रचना संसार में कुछ ठेठ शास्त्रीय संगीत पर आधारित रचनाएं भी हैं, जैसे मुगले आजम फिल्म का ये गीत जिसे गाया उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने।

आपको ये जानकर हैरत होगी कि शकील बदायूनी ऐसे एकमात्र गीतकार हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सुपर हिट होली गीत दिए हैं और तीनों की लोकप्रियता कमाल की। सन 1952 फिल्म

इन तीनों गानों को सुने तो जिस दिन सुने उस दिन मन की होली मन जाती है। आपको याद होगा साहिर लुधियानवी ने ताजमहल के बारे में लिखा था, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। दरअसल ये शकील बदायूनी के एक नायाब नगमे का बेमिसाल जवाब है। फिल्म लीडर के लिए शकील ने ताजमहल पर आधारित ये रचना लिखी थी।

शकील बदायूनी की अनगिनत गजलें हैं जिन्हें कई नामचीन कलाकारों ने गाया है। बेगम अख्तर की गजलों की दुनिया में शकील बदायूनी की शायरी चमकती हुई नजर आती है, जैसे ये गजल।

नौशाद के साथ शकील बदायूनी का सबसे ज्यादा काम है, लेकिन अगर सिर्फ नौशाद के साथ की बात की जाए तो शकील बदायूनी की ये दास्तान अधूरी रहेगी।

उस दौर के सिनेमाई गीत हैं जब नायक पियानो पर गाकर अपना दिल टूटने का ऐलान करता था, और इस फहरिस्त में एक से बढ़कर एक गाने शामिल रहे हैं जिनमें से कुछ शकील बदायूनी के हैं। गमजदा गाने लिखने में शकील का कोई जोड़ नहीं था। बहरहाल 20 साल बाद फिल्म का ये गाना सुना जाए, संगीत हेमंत कुमार का।

फिल्म साहब बीवी और गुलाम के एक गाने में तो जैसे शकील बदायूनी ने तिलिस्म रच दिया है। इस गाने की विकलता के कहने ही क्या हैं? बस मीना कुमारी का चेहरा आंखों के आगे तैरता है और गूंजती है ये आवाज।

शकील शायरी की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा है और उनकी शायरी हमारे दिलों में उतरती है। और एक शेर मुलाहिजा फरमाइए कि मेरा अज्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, कहीं ये चमन को जला ना दे। शकील की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि वो फिल्मों में भी सक्रिय रहे और शायरी की दुनिया में भी सक्रिय रहे, यानी उन्होंने एक साथ दो नावों की सवारी की और दोनों में कामयाब रहे।

21 अप्रैल 1970 को शायरी की दुनिया का ये बेमिसाल सितारा बुझ गया। शकील ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया।

लेकिन शकील बदायूनी के जाने के बाद भी शकील की ये दास्तान जारी है। जब जब हम उनके गाने सुनते हैं, हमें उनकी याद आती है, उनकी शायरी हमारी आंखों के आगे तैरती है और हम उन्हें सलाम करते हैं इस गाने के जरिए।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने शायर और गीतकार शकील बदायूनी को। शोध आलेख स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की दूसरी कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का तीसरा भाग।
1: ये तो स्पर्श की बातें हुई, हालांकि स्पर्श के बारे में इतनी सारी बातें हैं और वो आपने अपनी आत्मकथा में बहुत विस्तार से लिखी हैं, पर इंटरव्यू में हम चूंकि संक्षिप्त बात कर रहे हैं तो हमने स्पर्श की तमाम बातों को स्पर्श किया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए मुझे लग रहा है एक छोटी सी चीज और करते हैं, फिर चश्मे बद्दूर की तरफ बढ़ते हैं।
2: ओके।
1: स्पर्श का स्मिता कनेक्शन, थोड़ी सी बुरी बात,
2: फिर मायूस किस्सा है, बताती हूँ
1: जी,
2: बताती हूँ। ये जब मैं दिल्ली छोड़कर और अपनी नौकरी छोड़कर और अपनी क्या कहते हैं टेडी जिंदगी छोड़कर मैं एक स्ट्रगलर के रूप में बम्बई में हाजिर हो गई, फिल्म, क्योंकि फिल्म बनानी थी, अब नजरों के सामने वही था और फिल्म की राजधानी बम्बई, तो बम्बई आना लाजमी था, तो बम्बई पहुंच गई और इत्तेफाकन मुझे बहुत अच्छा ये मिला। वहां दामू झवेरी नाम के बहुत बड़े गुजराती थिएटर के जाने माने वंडरफुल पर्सन, तो दामू भाई ने मुझे बिकट वाट वही वाट ये म्यूजिकल नाटक डायरेक्ट करने का ये सौंपा मुझ पर। हाँ, दैट वाज फिडलर ऑन द रूफ का वेंकटेश माडगुळकर ने किया मराठी अनुवाद। तो एनीवे वो मैं कर रही थी, लेकिन उसके पहले बम्बई पहुंचते ही अब नाटक तो करना ही था, नाटककार थे तो, और तब स्मिता मिल गई और ओमपुरी मिल गया।
1: वाह।
2: और ओमपुरी तो बहुत ही स्ट्रगलर था उन दिनों, मतलब कुछ भी डेला भी उसने नहीं कुछ तब तक किया था, और स्मिता का नाम जरा जरा हो रहा था क्योंकि टेलीविजन में वो निवेदिका थी वगैरह वगैरह, और शायद शाम के साथ एक आध फिल्म शुरू हुई, लेकिन स्मिता का जरा सा नाम हो रहा था, ओमपुरी का नहीं था, मेरा भी नहीं था बम्बई में। हम तीनों ने मिलकर सोचा कि कुछ थिएटर किया जाए, और मेरे पास महेश एलकुंसवार का बहुत बेहतरीन नाटक था वासना कांड, जो मैंने दिल्ली में खेला।

0: लता कुसुम हैदर ने रोल किया था उसमें, लाजवाब रोल किया था बहुत, और वो प्रोडक्शन भी खुद नहीं कहना चाहिए लेकिन बहुत बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन हुआ हमारा, और लोग दंग रह गए, बहुत बहुत ही जिसे कहते हैं कि निस्तब्ध हो गए शो देखने के बाद, ऐसा सन्नाटा सा हुआ ऐसे, इट वॉज अ फैबुलस एक्सपीरियंस। तो एनीवे मैंने कहा कि मुंबई में ये करते हैं, और एनसीपीए के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में हमने ये नाटक किया। अब मेरे इतने साल हो गए इन तीनों चारों फील्ड्स में काम करते, टेलीविजन, स्टेज, थिएटर, फिल्म, रेडियो, लेकिन व्यवहार किस चीज सिखाते हैं ये अभी तक मुझे नहीं समझ में आया
1: जी।
0: इसको भी मैं मेरे नाना को और मेरी माँ को मैं दोष देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुझ पर इतना वो किया कि ये बहुत पैसे के बारे में सोचना बहुत बुरी बात है, तुम अपना काम करो, काम में आनंद लो, काम में मजा लो, लोगों को देखो, लोगों को समझो, लोगों से प्यार करो वगैरह, पैसा क्या चीज है। और कभी उन्होंने मेरी तनख्वाह कितनी है उनको नहीं मालूम था आखिर तक, कितना माँ ने पूछा ना नाना ने कभी भी पूछा कि कितने पैसे, मतलब पैसों की बात ही नहीं होती थी। और मैं अनाड़ी के अनाड़ी रह गई, तो मुझे लगता था काम चलाने लायक कुछ मिले तो ठीक है गुजारा हो जाएगा, लेकिन इस नाटक के लिए पैसा तो चाहिए ना स्टेज करने के लिए, तो वो कुछ ढेला भी नहीं था किसी के भी पास। ओम तो स्ट्रगलर, स्मिता बिचारी नई नई आई हुई, फिर हमने किसी तरह इधर उधर जुगाड़ करके पता नहीं कैसे किया, लेकिन वो नाटक हमने किया। और उस दरमियान मेरी स्मिता से बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई, और उसकी एक वजह ये थी कि हम दोनों को बिल्लियां बेहद पसंद। स्मिता अपनी बिल्लियों के बारे में बताए, मैं अपनी बिल्लियों के बारे में, और ओम सुनता रहे, तो हम बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए। फिर मैंने स्मिता को बताया, और ये तो मेरे पास था ही पटकथा इसकी थी, मैंने कहा स्मिता ऐसे ऐसे कहानी है मैंने लिखी हुई, एंड देयर इज अ लवली रोल फॉर यू एंड आई वुड लव यू टू रीड दैट पटकथा। तो स्मिता ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, पढ़ूंगी ना हाँ, और बात वहां तक रह गई। फिर चार पांच दिन बाद मैंने फिर कहा स्मिता तुम पढ़ोगी ना, हाँ हाँ पढ़ूंगी। और फिर मुझे ऐसे लगा कि ये आउट ऑफ पोलाइटनेस ये हाँ हाँ कर रही है, उसको कोई सचमुच की दिलचस्पी नहीं है इसमें, और वो बेचारी इतनी शरीफ है कि वो मुझे नहीं कहना चाहती कि तू क्या लिखेगी, मुझे नहीं पढ़नी तुम्हारी कहानी वगैरह, तो ये तो कहेगी नहीं, और थी वो थोड़ी सी अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि शायद ये ऐसा तो नहीं समझ रही कि हमारी दोस्ती का मैं नाजायज फायदा उठा रही हूँ, क्योंकि हमारी दोस्ती है मैं अपनी फिल्म के लिए उसको मैं गले में डाल रही हूँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई हैड माई ओन सेल्फ रिस्पेक्ट नेचुरली, मैंने कहा उसको ये नहीं लगना चाहिए, ये गलत होगा। फिर मैंने कहा ऐसा करते हैं, लेट्स वेट, उसको अब पूछने दो, दो तीन बार तो मैंने जिक्र किया है, अब उसको पूछने दो कि सही अगर है कहा कमबख्त तेरी फिल्म पढ़ने तो दो। वो कुछ नहीं, एक नहीं दो नहीं, स्मिता से कुछ भी पूछताछ नहीं हुई, और फिर मैं मन में समझ गई कि इसको इंटरेस्ट नहीं है। और तब तक ये नसीर की बात हुई थी, शबाना की बात हुई थी, और शबाना को जब कहा तो शबाना ने ये चार फुट ऊंची छलांग लगाई, हाय मुझे एक जप्पी मारी का सही फैंटास्टिक, ओ यस यस वाओ, मतलब बिल्कुल उल्टा जो एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। तो शबाना ने इतना मुझे, मतलब मैं तो आसमान में जाना बाकी था खुशी से, इतना शबाना ने उसमें कहा दिलचस्पी। तो फिर शबाना तय हो गई, और फिर धीरे धीरे इधर से सुनाई देने लगा कि स्मिता नाराज है। स्मिता ने कहा कि सही ने तो मुझसे बात की थी, मैंने कहा बात तो सच है मैंने बात की थी, लेकिन उसने आगे नहीं ना बात कुछ की, तो मैं अकेली कब तक बात करती रही, लेकिन उससे मेरी बात नहीं हुई। फिर एक पार्टी में पूना में, वो मुझे अच्छी तरह याद, चाय पार्टी, और सुभाष औसट करके हमारे कॉमन दोस्त थे स्मिता के, मेरे जो चित्रकार हैं खुद, सुभाष के घर पार्टी थी तो स्मिता थी, इतने दोनों बात स्मिता, तो मैंने कहा चलो आज मैं बात करूंगी इससे। तो मैं पास गई, मैंने कहा स्मिता नाराज हो, तो उसने मुझे बड़ी ठंडी निगाह से देखा, उसने कहा हाँ, और पीठ फेरी, and that was it, that was the last conversation we had। फिर कभी हमारी ना मुलाकात हुई ना बातचीत हुई, ना मैं उसे समझा पाई कि क्यों ऐसा मैंने नहीं पूछा, मेरी अपनी तरफ से कुछ, मैं अपनी ये करती ना तरफदारी, तो वो नहीं करने को मिली और वो चल बसी। और मुझे ये आज तक बहुत अफसोस होता है कि ये बड़ी ज्यादती हुई।
1: बिल्कुल, ये थोड़ी दुखद बात है। स्मिता की याद में एक गाना सुनते हैं, और एक ऐसी फिल्म का जिसमें स्मिता और शबाना दोनों साथ में थे।
0: अच्छा अच्छा
1: महेश भट्ट की फिल्म अर्थ।
0: हाँ हाँ अरे वाह,
1: है ना, सुनते हैं।

0: चश्मे बद्दूर की तरफ आ रहा हूं अब मैं, और एक दिलचस्प बात यह कि चश्मे बद्दूर भी आपके ही एक टेलीविजन प्रोडक्शन से प्रेरित थी, धुआं धुआं से।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वो पूरी दास्तान जो है अब आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि चश्मे बद्दूर आपकी आइडेंटिटी से चिपक गई है। दूसरी चीज ये है कि हमारे सारे सुनने वाले इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर आप कहीं किसी के घर बैठने जाते हैं और वहां चश्मे बद्दूर टेलीविजन पे चल रही है तो आप उठ नहीं सकते, वो एक तिलस्म है।
1: क्या बात है। परसों मुझे एक पुरस्कार मिला
0: जी, जी गौरव अवार्ड
1: जी,
0: उसकी बधाई भी देनी बाकी है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि अभी तक बधाई
1: नहीं देता हूँ। वो जी अवार्ड, और वो जी उन्होंने एक बड़ा प्यारा काम किया कि अवार्ड मुझे किसने दिया, दीप्ति नवल ने।
0: वाह वाह वाह।
1: तो दीप्ति को देख के, और उन्होंने मेरे प्ले का नाट्य गौरव अवार्ड मिला मेरे नाटक के लिए, तो उसमें मेरे जासवंदी नाम का एक मेरा नाटक है, उसमें से एक उन्होंने 20 मिनट का सीन भी किया स्टेज पे, तो मैं भी दंग रह गई। दीप्ति ने ये मुझे दिया अवार्ड, और दीप्ति ने कहा कि मैंने चश्मे बद्दूर की, फिर मैंने कथा की, और उसके बाद इतनी सारी मैंने फिल्में की अच्छी अच्छी, ये वो बहुत फिल्में की, लेकिन लोग मुझे भूलने नहीं देते हैं, मुझे कहते हैं हाँ चश्मे बद्दूर, हाँ हाँ कथा, कहते ले दे के सही किए।

0: फिल्में जो चिपक गई है कुछ मतलब नकली गुस्सा दिखा रही थी। इतना प्यारा उसने ये किया कि वो ये दो ले दे के फिर इन दोनों फिल्मों पर आके मामला रुक जाता है कि अरे बाबा मैंने और भी बहुत काम किया है जिंदगी में, लेकिन नहीं लोग नहीं भूलने देते है, कहते हैं। और सच कहूं तो मैं भी नहीं भूल पाती हूं, ये भी कहा आदित्य ने, बहुत प्यारा भाषण किया, वेरी स्वीट। तो ये स्पर्श तो हुई मेरी फिल्म, जिससे काफी सराहा गया, अवार्ड्स मिले ये वो, और बहुत तेरे फिल्म फेस्टिवल्स में बुलाया गया, साथ साथ मुझे भी। तो मैं मॉस्को पहुंची, मॉस्को में फिल्म ये दिखाई गई। और प्यारा से किस्सा सुनाती हूँ कि वो फिल्म देख के बाहर निकल रहे थे लोग, और उसमें B.R. चोपड़ा थे जिन्होंने मेरी पटकथा को मना किया था बड़े प्यारे ढंग से, मतलब मुझे कोई ये नहीं है, आई हैव नो कम्प्लेंट, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये बड़ी एपिसोडिक फिल्म है। अब आज तक मैं ये समझी नहीं कि एपिसोडिक मतलब क्या कहना चाहते थे, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने मुझे देखा, बड़े प्यार से मेरे हाथ पकड़े और कहा सही तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया,
1: वाह वाह
0: क्या प्यारी फिल्म बनाई है, और क्या चाहिए, मतलब इतना बड़े दिल से मानना कि मैं गलत था, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, विच वॉज वंडरफुल। एनीवे वो फिल्म और एक जन को अच्छी लगी और वो थे गुल आनंद।
1: क्या बात है,
0: गुल आनंद भी वहां थे और वो तो बिल्कुल हम कहते थे ये रशियन फिल्म इंडस्ट्री के जामात है, क्योंकि वो बहुत फिल्में रशियन लेके उनको डब करके वो चलाते थे। ही वॉज बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूटर बट ही हैड ट्राइड हिज हैंड एट वन फिल्म खट्टा मीठा विच वॉज वेरी वेरी सक्सेसफुल, और उनको फिर चस्का लग गया प्रोड्यूसर बनने का, और उनको ये स्पर्श बहुत अच्छी लगी। फिर मुझे मिले जो भी बातें करनी थी अच्छी फिल्में वगैरह, कहके उन्होंने कहा कि सही आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग वेरी सीरियस विथ यू, कल सुबह मिलते हैं। मैंने कहा जरूर, और हम दोनों एक ही होटल में ठहरे थे, तो उन्होंने कहा ये होटल के सामने बहुत बढ़िया पार्क है, बड़ा विशाल पार्क, गोरकी पार्क, हाँ तो हम पार्क पे मिलते हैं, वहाँ घूमेंगे बात करेंगे। मैंने कहा चलेगा। तो हम सुबह सुबह मिल गए और चक्कर लगाते लगाते उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम वो फिल्म लिखो और तुम वो फिल्म डायरेक्ट भी करो। तो उन्होंने कहा लेकिन वो फिल्म सीरियस नहीं होनी चाहिए, कॉमेडी बस, बिल्कुल 100% कॉमेडी चाहिए। ऐसी कोई कहानी है तुम्हारे पास? इत्तेफाकन मेरे पास थी ऐसी एक कहानी, बल्कि एक फिल्म बनाई हुई थी टेलीफिल्म कॉल्ड धुआं धुआं, जैसे कि आपने बताया। वो फिल्म थी तीन मुस्टंडे नौजवान कॉलेज स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हैं कॉलेज में, मस्ती मारते हैं, ये करते हैं, क्लासेस डुबो कर फिल्में देखते हैं, मटर गश्ती इधर उधर, लड़कियों का पीछा करना, सिगरेट पीना, और इसलिए धुआं धुआं कि वो हमेशा वो धुएं में क्या क्या देखते रहते थे, रंगीन सपने कि मैं फला करूंगा, मैं ढिमका करूंगा, ये वगैरह वगैरह।
1: ये कोई रियल लाइफ इंसिडेंट जैसा कुछ ऑब्जर्वेशन था?
0: ऐसे नहीं कह सकते, हो सकता है, पता नहीं क्या क्या देखते हैं क्या क्या नहीं, या हो सकता है थोड़ी किसी हद तक, और फिर थोड़ा सा मैंने उसमें नमक मेरे डाला
1: जी।
0: अच्छा
1: शानदार वाला।
0: तो ऐसे तीन दोस्त, और मैंने फिर गुल को ये कहानी सुनाई, कहा कि ये बहुत ही टेलीविजन में हिट हो गई थी, उसके 6-7 बार रीटेलीकास्ट हुआ वगैरह वगैरह लोगों की मांग पर। तो गुल ने कहा बहुत ही बढ़िया है ये कहानी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बात है सही, अपन तो कमर्शियल फिल्म बनाने जा रहे हैं, अब ये तीनों को बेकार बकवास लोग मत दिखाओ, उसमें से एक जरा अच्छा होने दो, एक हीरो अपना, दो तो बेशक तुम्हारे मुस्टंडे जो नालायक लोग को दिखाते हैं, लेकिन उनमें से एक जरा ढंग का आदमी जो सीरियस है, जो पढ़ता लिखता है, जो अच्छा है आदमी, हाँ ऐसा दिखा सकते हो, तुम बदल सकते हो थोड़ा। मैंने कहा क्यों नहीं, मैंने ही तो लिखा है, तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है तो ये फिर तुम लिखो, कब कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा एक महीना तो लग ही जाएगा। इसे जरूर, तो अभी हम जा रहे हैं 3-4 दिन में वापस भारत, तो आज तारीख ये है, करेक्ट एक महीने बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा, तब तक तैयार होगी कहानी? मैंने कहा हाँ होनी चाहिए। तो हम लोग फिर एक दूसरे से विदा लेके निकल गए। भारत आके मैंने इधर उधर बताया, फिर मैंने सोचा कि ये फिल्म वाले तो होते ही बड़े लंबी बातें करने वाले, ये कुछ होने वाला नहीं है ऐसे ही मीठी मीठी बातें करके कि तुम ये लिख लो फला करो, मैं अब मेहनत करूं लिखूं दोबारा, टाइम अपना बर्बाद करूं, और वो फोन तक नहीं करेंगे, ये मुझे पक्का मालूम है, फिल्म वाले है आखिर। तो मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया।
1: अरे बाप रे।
0: हाँ, और उसी तारीख को सुबह फोन, हेलो मैं गुलानंद, बन गई लिख ली मेरी आवाज? मैंने कहा नहीं अभी क्या है गुल, थोड़ी सी बाकी है। तो, लेकिन ऐसे करो

0: प्लीज मुझे एक हफ्ता और दे दो। दे दिया। उन्होंने कहा, फोन जैसा मैंने रखा, अपना कलम उठाया, रिसीवर रखा, कलम उठाया, और वाकई में चार पांच दिन में फिर मैंने वो थोड़ा सा बदल रहा था, वो बदल दिया और वो कहानी दिखाई जो उनको बहुत पसंद आई। और फिर वो कुछ कुछ बताते गए, उसमें भी गुल का काफी ये था,
1: योगदान, कंट्रीब्यूशन,
0: एग्जैक्टली योगदान बहुत था। कि उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, और वो लड़की वो भी नौजवान, हमको और भी तो चाहिए। कि हम चाहते हैं कि सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, उनके मौसी मौसा मौसी आए, मामा आए, वगैरह वगैरह। मैंने कहा समझ रही हूँ, इसकी कुछ बड़े बुजुर्ग कैरेक्टर भी तो आने चाहिए ना। फिर मैंने एक दादी माँ डाली, एक नानी, एक बाप डाला,
1: भाई डाला,
0: एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। तो ऐसे लोग डलते गए। फिर मैंने एक दिन गुल से कहा गुस्से से कि मुझे लगता है मैं बनिया बन गई हूँ और पुड़िया बांध के ये कर रही हूँ। लेकिन बहुत अच्छी कहानी बन गई। और स्पर्श के बाद तो ये अनुभव बहुत ही अनोखा था कि जो हम मांगे, मतलब किसी हद तक, तो वो एकदम पेश हो जाता था।
1: अच्छे प्रोड्यूसर की निशानी,
0: अच्छे प्रोड्यूसर, क्योंकि वो चाहता था अच्छी फिल्म बने। अब यहाँ ऐसे लगा कि नहीं, एक ही टीम में है हम लोग। और फिर फिल्म बन गई और बहुत अच्छे कलाकार मिले, फारूक, और वहाँ भी गुल बहुत ही, मतलब ही वॉज अ पक्का प्रोफेशनल, ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू सेव मनी, बट ही नेवर डिड द फिल्म और एनीवन एनी हार्म। फिल्म को मार के उसने नहीं कुछ कहा। उन्होंने एक्टर्स भी चुने, अब दीप्ति नई नई आ रही थी, बट ही सॉ कि यस, इस लड़की में बहुत टैलेंट है, हाँ उसको लिया। और नेचुरली एट दैट टाइम दीप्ति वॉज ड्राइंग टू मेक अ गुड फिल्म, हाँ, सेम विथ फारूक, सेम विथ
1: रवि।
0: रवि ने तो कुछ भी नहीं किया था, मेरे कहने पर रवि को ले लिया, सिर्फ मेरे कहने पर। मैंने कहा नहीं नहीं, इसको तो लेने, कुछ दो तीन लोगों के लिए मैं अड़ गई थी। एक वो रवि बासवानी था और दूसरी लीला मिश्रा थी। मैंने कहा ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, दादी अम्मा मुझे कोई, तुम चाहे जो भी कहे उनका तुम किराया दोगे। तो वह हंस के कहता है हाँ ओके बाबा, ओके बाबा, ले लिया उसको। क्योंकि बाकियों को तो, रवि को बेचारे को 3,000 पूरी फिल्म का उसका मेहनत आना।
1: राकेश बेदी
0: वो नहीं मुझे मालूम, क्योंकि वो गुल ने लाया था राकेश को।
1: लेकिन उसने कहां से किस तरह कास्ट हुए थे?
0: फारूक ने गमन की थी ना
1: जी,
0: गमन
1: मुजफ्फर अली की,
0: मुजफ्फर की। और फिर देखा था उधर उधर, फारूक अच्छा एक्टर तो था ही, थिएटर करता था, तो गुल ने वो जरूर देखा होगा, जाके चुपचाप उनके प्लेस देखे होंगे, इधर देखा होगा उधर, वो तो बहुत करता था। फिर वेन ही वॉज कन्विंस्ड की यस ही इज अ वेरी कल्चर्ड एंड अ वेरी गुड आर्टिस्ट, तो उनसे बात की और फारूक भी मान गए खुशी खुशी। और फारूक के साथ भी मेरी बड़ा अच्छा दोस्ताना हुआ, बहुत प्यारा आदमी था, बहुत ही नेक और प्यारा इंसान।
1: दो फिल्में और वो अच्छा आगे बात करेंगे कि कैसे कथा में नसीर और फारूक आपसे लड़ाई करते थे कि कैसे रोल दिए, है ना, वो आगे बात करेंगे। गाना सुनते

0: सईद जाफरी का किरदार कहां से आया और ये पूरी फिल्म में आप ये देखिए कि कितना महत्वपूर्ण पक्ष बन गया।
1: हाँ हाँ, सईद का ना बहुत बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो था ही उस लायक ही, वाज अ ट्रेमेंडस एक्टर विद अ मेजर पर्सनालिटी, बिग पर्सनालिटी, एंड ही वाज वेरी सिंसियर टुवर्ड्स हिज रोल, टुवर्ड्स हिज मिशन। और वो भी अब गुल की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने सईद को पकड़ा कि वो वेस्ट एंड से लंदन में करते थे थिएटर और फिल्में बीबीसी के लिए इधर उधर, और वो अब चाहते थे यहाँ बॉलीवुड में आजमाना कि क्या कुछ बन सकता है क्या। वो देखने आए थे सईद, और गुल ने बराबर अपना जाल फांसा और सईद को पकड़ा लिया। और अब अच्छा प्रोड्यूसर तो था ही गुल, मतलब नाम उनका अच्छा था, तब तक स्पर्श के बदौलत मेरा भी थोड़ा सा नाम हुआ था, तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू बी इन द फिल्म। एंड तब तक वो एक कैरेक्टर बन गया था पान वाले का। हाँ, उसने कहा फिर मुझे सईद ने, भाई वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? जैसे अरे वहां के पान वाले देखेंगे। हाँ, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया
1: एक और आ गया। तो मैंने कहा चलो चलते हैं फिर मैं उनके साथ, और फिर हम दोनों दिन भर वो देखता रहे, हर ठेले में जाके उनके साथ बैठना, उनके साथ गुफ्तगू करना, उनकी बातें सुनना, उनके कुछ कुछ लफ्ज भी वो लिखते थे पुरानी दिल्ली वाले, जो जुबान थी ना दिल्ली की वो भी उन्होंने उठाई, और कमाल का ये किया। और फिर अपने नाम पे वो बहुत ही वो थे स्ट्रिक्ट कि नाम अच्छा चाहिए मेरे रोल को। तो फिर हमने फुफन और याकूब और लच्छन और ये वो, हाँ कहते ना घंटी नहीं बजी, नहीं नहीं घंटी नहीं बजी। और फिर हमने कहा कि जाओ अब तुम अपने आप ही ढूंढ लो, अब हमारे नाम खत्म हो गए। तो एक दिन सुबह सुबह मुझे फोन आया, काफी सुबह की, मैंने कहा हेलो आदाब, मैं ललन मियां बोल रहा हूँ। तो वो नाम मिल गया, तो क्या रोल किया सईद ने। हाँ, बहुत बहुत ही मजा आ गया, एंड द होल थिंग वाज वंडरफुल। लीला मिश्रा भी क्या कमाल की एक्ट्रेस है, वंडरफुल पर्सन। बहुत
0: सही जी, जब चश्मे बदूर की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। मुझे लगता है पहले शूटिंग लोकेशंस की बात करते हैं, जितनी खूबसूरती से दिल्ली आपने दिखाया है और वो पूरा माहौल आपने जिंदा किया है, वो लोकेशंस कैसे ढूंढी थी और उससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बात?
1: ढूंढना क्या था यूनुस, वो तो सामने आ खड़ी होती थी।
0: अच्छा,
1: अरे हमें इधर नहीं देखा, हमको शूट करो, क्योंकि चाहे आम सड़क हो कोई दिल्ली की, या चाहे पुराना बाजार हो, पुरानी दिल्ली का कोई माहौल हो, या कोई खूबसूरत सा बाग हो, गार्डन हो, चाहे लोधी गार्डन हो, चाहे तालकटोरा गार्डन हो, चाहे जो भी, और इतने खूबसूरत सब नजारे होते थे कि क्या ले क्या नहीं, कैमरा पगला जाता था सचमुच। इसलिए वो कोई मुसीबत ही नहीं हुई। और एक तो खंडहर, दिल्ली के जो पुराने टूटे फूटे फोर्ट्स वगैरह, वो क्या मतलब बात, बहुत ही वो थी, दुकानें छोटी छोटी, और फिर बरसातियां, वो बरसाती भी अपने आप में बड़ी प्यारी चीज होती थी,
0: जी,
1: है ना
0: जी।
1: तो वो भी हमें बहुत सुंदर बरसाती मिली, और घर भी इतने अच्छे मिले। फॉर दैट आई मस्ट गिव क्रेडिट टू रवि बासवानी, क्योंकि रवि तो पक्का दिल्ली का बंदा था, दिल्ली में रहने वाला, और उसके पीआर बोलो तो इतना अफाट जाल था, विस्तृत जाल था उसके दोस्ताने का। तो एक से बढ़कर एक रवि ने लोकेशंस लाए। नसीर का घर जो था वो दैट वाज प्रोफेसर आर्याज लिटिल बंगलो विथ ब्यूटीफुल गार्डन ऑल अराउंड इट एंड अ वेरी क्यूट लिटिल हाउस इन बिटवीन, जो लगे बिल्कुल कि हाँ ये प्रोफेसर का घर होगा।
0: बिल्कुल, और वो जिस तरह से हाँ, वो किचन
1: बड़ा टेस्टफुली किया हुआ। फिर शबाना का मतलब कविता का जो होता है फ्लैट बरसाती पे ऊपर, हाँ अगेन टेरेस है चारों ओर, उसपे छोटे छोटे पौधे लगे हुए, उसका इकबाना उस पे लगाया हुआ, तो वो भी एक बहुत खूबसूरत

0: सूरत सा मिल गया, दोस्तों का था वो एक घर, और तीसरा रहा वो मंजुल जो कविता की दोस्त होती है उनका घर एक शानदार है जो संकन लिविंग रूम है उसका। वो तो बहरहाल एक खुद आर्किटेक्ट थे बड़े जाने माने मशहूर दिल्ली के, उनका अपना घर था जो उन्होंने हमें शूटिंग के लिए दे दिया। तो ऐसे एक एक एक एक होकर वो लोकेशंस बहुत सुंदर बने, और इसलिए दिल्ली जो दिखी चश्मे दूर में वो निहायत खूबसूरत दिल्ली थी, बड़ा प्यारा हसीन सा शहर। किसी ने मुझे कहा कि तुमने तो ये एड फिल्म बनाई सही दिल्ली के लिए, मैंने कहा नहीं, ये मेरा लव लेटर था दिल्ली को।
1: क्या प्यारी बात है, वाह। एक चीज ये है कि जो कमर्शियल सिनेमा है उसके प्रति प्यार की एक निशानी चश्मे बद्दूर में आती है, और वो आती है जब वो ड्रीम सीक्वेंस जैसा है जहां पर एक के बाद एक गाने आते रहते हैं।
0: हाँ,
1: जो आपने पूरा का पूरा पैरोडी बनाई,
0: मजाक उड़ाया था यार, रवि जो गाते हैं, रवि और दीप्ति मिलके
1: जी। हाँ, वो कमाल है जिसमें एक के बाद एक गाने आते हैं, कभी परवीन बाबी का गाना आ जाता है तो कभी पुराने गाने चले आते हैं,
0: कभी जीरत अमान का आता है
1: जी,
0: है?
1: जी,
0: कभी देवानंद का, और वो
1: क्या कमाल, देवानंद वाला तो अद्भुत
0: किया भी उसने वो ढीली ढाली चाल उसकी
1: जी,
0: और कभी दिल चाहे या माथा यारा
1: मैंने तो हाँ कह दी,
0: वो भी दीप्ति और रवि ने गाया, जो वो बहुत मजे मजे
1: शीशा हो या दिल, उसमें तो जो दीप्ति लगी है
0: वो बहुत अच्छा किया ना उसने, बहुत सुंदर किया रीना रॉय का, बहुत खूबसूरत। तो वो करने में मजा भी बहुत आ गया, बहुत
1: जी। ये फिल्मी गानों से आपका प्यार भी दिखाता है।
0: एक बात बताऊं, वो जो उसमें ये था ना आ जा
1: तीसरी मंजिल,
0: तीसरी मंजिल वाला गाना, तो वो दीप्ति से वो करवा रहे थे, और दीप्ति ने थोड़ा सा इस सिलसिले में परेशान किया, अगर कहीं पूरे मेरे दीप्ति के साथ जो ताल्लुकात हुए हैं उसमें अगर कहीं हमारी थोड़ी सी नोक झोंक हुई तो उसमें, वो चाहती नहीं थी वो गाना गाए और ये करे इस तरह कुछ वीक पहने वगैरह, पता नहीं क्या उसके बीच बीच में कभी भूत सवार होता था, कभी कम ही लेकिन कभी कभी होता था। तो फिर गुल ने तब के डांस मास्टर जो इंडस्ट्री के बड़े माने हुए विजय ऑस्कर करके दोनों थे, तो उसमें से ऑस्कर को रखा उन्होंने, और ऑस्कर का ये काम था कि दीप्ति से
1: डांस करवा ले,
0: डांस करवा तो वो एक सन एंड सैंड में कमरा बुक किया था गुल ने, और वहां हमारा दिन भर चलता था, तब VHS का जमाना था
1: जी।
0: तो VHS एक मंगवाया मशीन, और VHS कैसेट्स थी जिसमें ये तीसरी मंजिल वाला गाना बार बार हमने इतनी बार वो सुनाया। उसमें डांसर्स भी हैं, एक तो आशा पारिक नाचती है और उनके साथ एक फाइल होती है दाएं बाएं, हाँ, आठ आठ लोगों के, आठ मर्द इधर आठ मर्द उधर, और नाचने वाले सब, तो वो हम बार बार देखते थे, और मैं ऑस्कर को बहुत बार समझाती थी क्या चाहिए। मुझे लगता है कि ये मेरी बुरी आदत है, हालांकि तब किसी दोस्त ने या कलाकार ने कभी नहीं मुझे कहा, लेकिन अब बच्चे कहते हैं मुझे कि तुम वही एक बात इतनी बार बताती हो कि आदमी तंग आ जाता है, ये मुझे अभी वो कहते हैं। तो उस हिसाब से मैं बार बार बेचारे ऑस्कर को बताती रही कि ऑस्कर ये ऐसा चाहिए, देखा ना ये कैसे ये आठ जने नाच रहे हैं, ये देखा ना ये, तो ऑस्कर ऐसा मुझे चाहिए वगैरह, और वो बड़ा प्यारा बड़ा पोलाइट आदमी, हाँ हाँ सही है, सब कुछ सही, हाँ जी जी बिल्कुल ये सही, श्योर श्योर सही कहता रहे। फिर एक दिन मुझे लगता है ऑस्कर का भी दिल भरा है, उब गया वो भी उसने फिर वो रोका VHS मशीन, ने कहा सही ये आठ जनों की लाइन देख रहे हैं ना जो मर्द नाच रहे हैं दाएं तरफ, मैंने कहा हाँ, उसमें से तीसरा आदमी देखो पहचानती हो, वो मैं हूँ मैंने कहा क्या, हाँ मेरे करियर की शुरुआत इस गाने से हुई है, और तुम क्या मुझे बार बार बता रही हो ये करो वो करो वो करो, मैं चुप। फिर मैंने कहा जो करो मैं नहीं कुछ कहने वाली, तो इतनी मजे की बात होती है।
1: वाह वाह वाह क्या बात है। इस फिल्म में मंगेश देसाई का एक बहुत बड़ा योगदान है, उसका जिक्र हम करना चाहेंगे।
0: ये जब फिल्म पूरी हो गई, और तब आपको तो मालूम है कि ट्रैक्स बनते हैं, आखिरकार जब बिल्कुल फिल्म बनने को आती है, मतलब जैसे ढक्कन उतारना होता है और भाप को निकलने देना होता है, तो ये सारे ट्रैक्स फिर एक ट्रैक पे जुड़े जाते हैं। तो हम राजकमल में पहुंचे, क्योंकि तब से जो बादशाह था रीमिक्सिंग का या साउंड री रिकॉर्डिंग का बादशाह था मंगेश देसाई
1: जी।
0: मतलब इतने वो मशहूर थे कि हर कोई हर जना चाहे कि मंगेश देसाई का सिक्का हमारे फिल्म पे लगना चाहिए री रिकॉर्डिंग, और यहाँ तक कि सत्यजीत रे भी कोलकाते से उनका टाइम लेते थे, उनका शेड्यूल देख के उनका टाइम बुक करके वो खुद अपनी फिल्में लेके पहुंच जाते थे बम्बई राजकमल में। हाँ
1: जी जी।

ना मंगेश जी का नाम था। तो अब स्पर्श में जाहिर है विद द काइंड ऑफ मनी दैट बासु वाज गिविंग अस एंड द काइंड ऑफ कटिंग कॉर्नर्स वी वर डूइंग, तो ये सवाल ही नहीं था। हमारा ट्रैक इतना भद्दा था कि मैं क्या बताऊं। मतलब एक जगह तो अब कहने में कोई बात नहीं है, लेकिन तब मैं कभी नहीं कहा, ये किसी को नहीं बताया कि कहीं कहीं जगहों पर पायलट ट्रैक भी हमने इस्तेमाल किया है, विच इज अनहर्ड ऑफ। ये कभी कोई नहीं करता। फिल्म वाला, जो किसी नाम का फिल्म वाला हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि पायलट ट्रैक, मतलब भद्दा होता है, वो सिर्फ गाइडेंस के लिए होता है और फिर वो डबिंग किया जाता है। लेकिन डबिंग के लिए पैसे ही नहीं थे, तो एक दो जगह बिल्कुल हमने कि अब क्या करें, अब रहने दो पायलट ट्रैक, नहीं पता चलेगा करके हमने दो तीन जगह स्पर्श में पायलट ट्रैक रखा। तो किसी ने कहा इनके पास जाओ, मंगेश देसाई के पास। तो मैंने कहा पिटाई करवानी है। मंगेश देसाई तो उनका गुस्सा बहुत मशहूर था कि वो अगर भद्दा काम उनके पास ले जाओ ना, तो वो ऐसे रीलों के डब्बे फेंकते थे बाहर, ठक से एकदम पूरा रील का रील बाहर। तो शर्म नहीं आती, कैसे काम के लेके आए हो मेरे पास। मैंने कहा वो मंगेश जी रील तो नहीं, मुझे भी बाहर फेंक देंगे। तो मैंने कहा उनके पास मैं कैसे, किस मुंह से जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तो नहीं गए। फिर हमने जैसा तैसा गया, हमें भी बहुत अच्छे मिले। फिर बॉम्बे लैब में तब थे खन्ना साहब का, वेरी वेरी नाइस कॉलेज, तो उन्होंने काम किया। एनीवे, फिर चश्मे बदूर तो गुल ने कहा कि जरूर मंगेश जी के पास जाना चाहिए। उन्होंने फिर डेट वेट पकड़ के हम लोग मिलने गए। तो मंगेश ने मुझे देखा, कहते फिल्म लेके आई है, पहली फिल्म लेके कैसे नहीं आई। तो फिर मैंने बिल्कुल कह दिया उनको साफ साफ। मैंने कहा मंगेश जी सुना है अच्छा काम नहीं हो तो आप बाहर रीले फेंकते। तो मैंने, हमारा इतना भद्दा था साउंड का सारा पूरा सिलसिला कि मैंने हिम्मत ही नहीं की आपके सामने आने की। अच्छा ठीक ठीक, चलो तो फिर बैठ जाओ, दोपहर से काम शुरू करते हैं। और फिर काम शुरू हो गया हमारा। और क्या बताऊं कि ऐसा मेल, जो मतलब शायद ही मेरा किसी के साथ इतना मेल हुआ हो, किसी व्यक्ति के साथ, किसी कलाकार के साथ, कि मतलब इट वॉज फैंटास्टिक एब्सोल्युटली। एक बताती हूँ मैं बहुत प्यारा किस्सा। वो जो चश्मे बदूर जिन्होंने देखे है उनको वो मालूम है कि वो जो दो दोस्त होते हैं वो लड़की के मिलने के चक्कर में बाहर पड़ते हैं। बड़ी बातें तो करते हैं कि हम यो करेंगे वो करेंगे, और एक को तो बेचारे को वो समझती है कि ये प्लमर है और बेसिन दिखाती है बाथरूम वाली कि ये देखो चोक हो गई है, पानी नीचे नहीं जा रहा तो आप कुछ करो। और वो वहां से फिर भाग जाता है, बड़ा पानी पानी होकर शर्मिंदा होकर निकल जाता है। दिन भर फिर वो इधर उधर मटर गश्ती पार्क में दिन बताता है, क्योंकि ऐसा मुंह लेके घर कैसे जाएगा, घर मतलब कमरे में दो दोस्तों को मुंह कैसे दिखाएगा ना। तो वो फिर शाम को जाके फिर बड़ी गप्पे हाँकता है कि यों क्या त्यों क्या। और फिल्म में एक असली किस्सा है जो कि वो जाता है, वो कहती है अरे आइए आइए, कितनी देर आपका इंतजार कर रही थी। तो पहले तो खुश होता है कि हाँ मेरा इंतजार, कि ये देखो ना बाथरूम में कैसे पानी वगैरह वगैरह। और दूसरा जो किस्सा है, फिर ये बताता है कि अरे फिर हमने पार्क में गए और फिर वो एक बड़ा तालाब है, वो उसमें नैया एक थी और वो नैया में ये दोनों बैठ के टिपिकल फिल्मी गाना गाते हैं, इस नदी को मेरा आयना मान लो, इंदु ने बहुत सुंदर गाना लिखा। तो वो दोनों ये ड्यूएट गाते दो गाना, तो वो भी किया, मतलब वो जो उसकी फालतू की कहानी है मनगढ़ंत वो भी फिल्माई थी। तो मंगेश जी ने कहा कि सही ऐसा करते हैं, वो दोनों बार बगीचे में तो जाके बैठता है, तो क्यों ना ऐसा करे कि पहली बार जब मतलब असलियत है, शर्मिंदा होता है बेचारा, तब हम बैकग्राउंड पे कौवा डालेंगे काओ, काओ, काओ। और दोबारा जब वो ये शोरो शायरी वाली और फला निमका ये बड़े प्यार मोहब्बत वाले किस्से सुनाता है, तब हम कोयल डालेंगे बैकग्राउंड पे। क्यों, कैसे रहा? मैंने कहा ओह गजब, मैंने कहा कैसे रहा, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया मंगेश जी, क्या बात है। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। फिर काम हमारा चालू हो गया और वाकई में उन्होंने कौवे ढूंढे, फिर कोयल ढूंढी और वो साउंड ट्रैक पे आया, इतना मजे का लगा। और फिर करते करते जब हम सुन रहे थे, एकदम से उन्होंने रोक दिया रिकॉर्डिंग प्लेबैक। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ, कहते हैं सही हम दोनों इतने खुश हैं, लेकिन शायद किसी के समझ में भी आएगा कि नहीं, क्या पता। क्या कि शायद ही किसी के, जो बहुत ही समझदार कलाकार किस्म का आदमी हो, उसके समझ में आए, लेकिन आम आदमी के समझ में आएगा कि नहीं, क्या पता। कोई बात नहीं, तुम और मैं, हम तो खुश हैं ना। इसी को कहते हैं कला का आनंद। हमने तो यह आनंद खूब लिया, कोयल कौवा ये वो, बहुत खुश रहे हम। तो दिस इज इट, वर्थ इट। तो
यू नो इट वॉज ब्यूटिफुल लाइक दिस। और दूसरी एक छोटी सी बात, उन्होंने कहा कि वो दोनों बंदे जो दोस्त उसके रवि एंड राकेश बेदी, वो

0: करते हैं बेचारे हीरो को, अपने फारूक को, कि वो लड़की बेकार है और वो हमारे साथ भी घूमी है क्या वो क्या, उसको बहुत ही वो करते हैं। फिर वो इतना मायूस हो जाता है सिद्धार्थ कि वो फिर उसके साथ झगड़ा करके वो उनकी बातचीत बंद हो जाती है वगैरह वगैरह। और फिर ये दोनों, क्योंकि है तो बेचारे अच्छे, वो बुरे थोड़ी ना है, तो वो उनको फिर बहुत अफसोस होता है कि अपना दोस्त बेचारा किस कदर बुरी हालत में है। तो अब क्या करें, वो दोनों बहुत मायूस है। और वो मद्रासी कैफे में है, डोसा वोसा इडली कुछ खा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, और रेडियो पे गाना चल रहा है। तो मंगेश जी ने कहा कि ये रेडियो पे गाना तो हम लगा रहे हैं उस सीन को, लेकिन इसमें अनाउंसमेंट भी होगी तो क्या मजा आएगा।
1: वाह वाह,
0: वो ये होता है ना कि आपकी पसंद वाला
1: जी।
0: मैंने कहा वेरी गुड आइडिया, ये जरूर जरूर। कहते फिर तुम ऐसे करो कि अच्छी डबर को बुलाओ और उससे अपन अनाउंसमेंट करवा लेंगे। वो बोलो, वो खास तरीका होता है उनका। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है, मैंने रेडियो में काम किया है, मुझे मालूम है। वो ओके, फिर दोपहर के बाद करेंगे, लंच के बाद। फिर लंच हो गया, उन्होंने कहा अच्छा आई तुम्हारी डबर। मैंने कहा हाँ आई, कहाँ है? तो मैंने कहा नहीं, वो मंगेश जी मैं खुद ही करके देखती हूँ। तो उनका चेहरा इतना सा हो गया और मैं साफ साफ पढ़ पाई कि ये डायरेक्टर लोग ना समझते हैं कि सब कुछ वो कर सकते हैं, ये वो ये सब उनके जरूर दिमाग से गुजर गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं क्या है, वो एक तरीका होता है, उसका एक खास ये होता है वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं मंगेश जी, ऐसा करो कि आप देख लो, नहीं है तो बिल्कुल आप कह दो कि ये नहीं बात बनी नहीं, और फिर मैं कल सबसे पहले बुलाती हूँ, डोंट वरी। मैं बिल्कुल ये नहीं करूंगी कि नहीं नहीं मुझे ही ले लो। अच्छा चलो। फिर बड़ा बेमन से फिर मुझे स्टूडियो में धकेला उन्होंने, फिर मैं हेडफोन लगाए क्या, और फिर मैंने वो पढ़ा और बड़े नटखट ढंग से पढ़ा, बल्कि बीच में गलत भी किया और माफ कीजिए वगैरह ये भी कह के आगे गई
1: जी, जी।
0: और फिर वो सारा झुमरी तलैया वगैरह ये सब डाला और पूरी तरह मतलब उस अंदाज से। अब वहाँ इतना टाइम जो गुजारा था आकाशवाणी में तो यूं ही तो थोड़ी ना गुजारा था, तो वो मैंने सारा पूरा कर फर्स्ट टेक ओके हो गया। और फिर वो भारी भक्कम दरवाजा खोल के मैं जैसे बाहर आई दरवाजे में, मंगेश जी ने दोनों हाथ जोड़े, कहते हैं मोहतरमा तुम तो कमाल की चीज निकली, वाह वाह क्या बहुत खूब।
1: तो क्या बात है, लेकिन ये एक तरह से ट्रिब्यूट टू विविध भारती हो गया।
0: बिल्कुल, अब विविध भारती पे जो मुलाकात दे रही हूँ तो कुछ बात तो करनी चाहिए ना, जो वो अच्छी बातें याद है वो तो जरूर शेयर करनी चाहिए
1: जी,
0: है ना?
1: बिल्कुल। इस फिल्म का संगीत भी बहुत मायने रखता है।
0: हाँ बहुत बहुत सुंदर है ना, बहुत संगीत और गीत भी। हाँ गीत मतलब देखो, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि राइटर डायरेक्टर एंड म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट, इनका अगर आपस में खूबसूरत मेल हो जाए तो क्या बात है। जैसे अब इंदु जी को मैंने कहा कि इंदु ऐसा है को, वो बताती है कि मैं फला जगह संगीत क्लास के लिए जाती हूँ और वो उसका बराबर जहन में उसको एब्सॉर्ब करता है और वो वहाँ पहुँच जाता है। और मैंने कहा वो अपने सुंदर मोटरसाइकिल है उसकी एक काली सी,
1: हाँ।
0: तो गाना कुछ ऐसा करो कि जो उसमें मजा आ जाए कि तो वो साथ जुड़ जाए। तो फिर काली घोड़ी द्वार खड़ी, और काली घोड़ी मतलब उसकी मोटरसाइकिल, और वो काली घोड़ी पे गोरा सैया चमके,
1: क्या शानदार लाइन है।
0: और वो इतना, और चकित भई सगरी नगरी, तो वो बस स्टॉप पे लोग सब ऐसे ऐसे देखते कि अरे ये कहाँ गई है, मगर मतलब पूरा वो बैठ गया इतना। मतलब ये होता है जब मेल होना लिरिसिस्ट, फिर राजकमल का म्यूजिक, और फिर गाने वाले, और फिर मेरे एक्टर और मैं।
1: कमाल, ये गाना सुनते
0: जी, क्या बात।

0: चकित भय सगरे नगरे काले घोड़े दौड़ पड़े, काले घोड़े दौड़ पड़े, काले घोड़े दौड़ पड़े, काले घोड़े दौड़ पड़े।
1: इस जैसा गाना जो पटकथा के अंदर इतना ज्यादा एम्बेड हो गया, ये जो बात आपने बताई कि मोटरसाइकिल और वो और इंदु जी ने जिस तरह से उस कहानी में उस गाने को पिरोया, एक कालजयी गाना बन गया। राजकमल जी को भी बड़ा श्रेय जाता है इतने बढ़िया गाने बनाने का।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: राजकमल जी ने अपना श्रेष्ठ काम किया इस फिल्म में
2: मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, में कोई शक नहीं। और वो भी कितना अच्छा और कितना नेक गाना है, कहाँ से आए बदरा, इतना दुख भरा, इतना ये। और वो तो टीचर तो गाए चले जाते हैं क्योंकि उनको क्या लेना देना, लेकिन ये रो पड़ती है गाते गाते
1: जी, आंसू बह रहे हैं उसके, पूरा एक माहौल आप बनाते हैं उसमें।
2: और उसके भी अंतरे जो है म्यूजिकल बीच के है प्रीलूड्स, उसमें फिर इसको दिखाया है कि ये भी उदास बेचारा दीवाना जैसे घूम रहा है सिद्धार्थ, तो वो गाने का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल हो गया। आई लव यूजिंग सॉन्ग्स टू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड।
1: बिल्कुल, ये तो कथा में भी आता है, उसकी बात आगे करेंगे। बल्कि एक बहुत ही तेज तर्रार गाना इस फिल्म में था और वो था प्यार लगावत। वो तो एकदम अलग शैली का गाना है।
2: वो भी अगेन वही बात है कि जब म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर इनका आपस में मेल हो और समझौता हो और एक दूसरे को समझे और एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करे दोनों, तो क्या होता है ये गाना साबित करता है। क्योंकि मैंने फिर ये कहा राजकमल को कि ये तीनों जने गाना गाते हैं मोटरसाइकिल पे घूमते, हाँ तीनों मुस्टंडे, तीनों अवलिया हैं, अपने अपने अलग ढंग के आदमी। मैंने कहा वो क्यों एक जैसा ही गाएं?
1: बिल्कुल,
2: हाँ वो अपना अपना गाने दो ना उनको। तो राजकमल ने कहा मतलब क्या? मैंने कहा ये कुछ और गा रहा है, वो कुछ और गा रहा है, वो कुछ, मतलब उनका सुर भी और होगा, उनके लफ्ज भी और होंगे। कहते नहीं नहीं तो बड़ा झमेला नहीं हो जाएगा? मैंने कहा कोशिश करके देखते हैं। और कोशिश की उन्होंने और क्या कमाल की, वो जो है ना प्यार लगावट प्रणय मोहब्बत, वो तीनों

0: अलग अलग अपना गाते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और इतना वो मजे का लगता है, दैट्स व्हाई वो जो आज भी लोग कहते हैं कि वो फिल्म आज भी फ्रेश है, ताजगी है उसमें, ये ऐसे गानों की वजह से तो है।
1: बिल्कुल, तो ये गाना इस इंटरव्यू में प्यार लगा
0: क्या सुनोगे?

0: मैं एक चीज पर और ध्यान खींचना चाहता हूं और वो है ओपनिंग सीक्वेंस ऑफ चश्मे बद्दूर। जिस तरह से फिल्म ओपन होती है वो बड़ा शानदार बना है।
1: नामावली
0: जी, नामावली, जिसमें
1: टाइटल्स।
0: वो एनिमेशन वगैरह है। जी
1: वो उसका पूरा पूरा क्रेडिट आप राम मोहन को दे दो। राम मोहन एंड ही डिड कथा एंड ही डिड चश्मे बद्दूर दोनों।
0: हाँ, और कथा में वो चूहा बिल्ली।
1: हाँ यस टाइगर और ये वो। और कथा में भी तो जैसा हमारा निर्माता का जब आता है तो सुरेश जिंदल को आपने देखा है कभी? ये बाल उनके बिल्कुल लगे जैसा लायन है सींग। हाँ, तो वैसे ही उन्होंने सींग बनाया उसके लिए तो वो बिल्कुल लगे ये
0: लाइन
1: बराबर सुरेश जिंदल है। और डायरेक्टर के लिए उन्होंने बिल्ली मतलब मैं और वो नाखून ऐसे ही करके जाती है तो मतलब इतना। और दीप्ति के लिए खूबसूरत सी गिलहरी और कान में उसके वो फूल
0: फूल।
1: दसवंदी का फूल। और विनी के लिए विनी का इंट्रोडक्शन था फिल्म में तो एक अंडा ऐसा फूटता है और अंदर से छोटा सा चूजा बाहर निकलता है चू चू चू चू चू चू नया परिचय विनी परंस पे। और सैनी हमारा गुस्से वाला कैमरामैन वो टाइगर आता है शेर हा करके कैमरा लेके ऐसे बहुत बहुत मजे के ये। और बीच बीच में जाहिर है कि कछुआ और खरगोश इनकी रेस तो फिर चलती रहती है
0: बिल्कुल।
1: तो
0: तो उसमें सारे अलग अलग
1: भी क्या। और
0: एनिमेशंस।
1: चश्मे बद्दूर में तो और भी कमाल किया कि उन्होंने एक्चुअल फोटोग्राफ्स इस्तेमाल किए। गांधी जी बर्ट्रेंड रसेल वगैरह ऐसे लोग लेके मतलब एक तरह की ये हिमाकत ही हुई ना ऐसे लोगों को लेके उन्होंने इतना खुश मिजाज बनाया पूरा टाइटल किस्सा कि क्या बताओ
0: उसमें फिर आपका हाथ आता है जिसमें नेल पॉलिश लगी है लाल रंग की।
1: जी बिल्कुल।
0: तो वो सुंदर है, लेखक निर्देशक है ना, इस तरह से पूरा फिर आपका नाम आता है। सुंदर, मतलब वो ओपनिंग भी कमाल की थी। वीरेंद्र सैनी का जिक्र हमेशा बहुत जगह आया बातचीत में और वो आपके तकरीबन स्थायी कैमरामैन रहे।
1: हो उन्होंने स्पर्श और चश्मे बदूर और कथा सैनी ने की। फिर दिशा के साथ वो नहीं आए बट सैनी अच्छे कैमरामैन भी थे दोस्त भी बहुत अच्छे थे एंड ही वाज वन पर्सन हु वुड कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कभी भी उन्होंने

0: मुझे अच्छा लगे इसलिए कुछ नहीं कहा।
1: कोई टकराव होता था?
0: बहुत बार, बहुत बार, दिन में एक दो बार तो जरूर होता था। लेकिन बहुत सही आदमी था, बहुत काम से लगाव वाला आदमी था, और बहुत मतलब अच्छे दिन गुजारे हमने, बहुत आर्टिस्टिक ढंग के काम किए, और बहुत अच्छा रहा वो सब पूरा माहौल, और उसमें शहरी का बहुत हाथ था।
1: जी जी।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले।

रंग तिरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले हरिओम शरण की आवाज में ये भजन आपको सुनवाते हैं।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
3: अलका याग्निक और हरिहरन की आवाजों में तुम आए, इस एल्बम का गाना जावेद अख्तर के बोल राजू सिंह का संगीत।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों में इशारा हो गया।
3: पंकज उदास की आवाज़, शब्दकार मोहम्मद अलवी, संगीत पंकज उदास का, एल्बम मुस्कान।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाजें RS हरियाणवी रतन के बोल हैं। संगीत अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन का, एल्बम तस्वीर।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। वसुंधरा दास की आवाज में समीर का लिखा हुआ गाना, संजीव दर्शन का संगीत, एल्बम तलाश।

सवाल है वसल पर मिलने के सवाल मिलने की जब रिक्वेस्ट की डेट मांगी कि लेट्स मीट समवेयर सवाल है वसल पर उनको उदू उदू है आपका राइवल जो है कंपटीटर हर फिल्म में एक जो विलन होता है वो उदू होता है दुश्मन को भी कहते हैं उदू सवाल है वसल पर उनको उदू का खौफ है इतना

जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल आपने सुनी, शायर अमीर मिनाई, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम खामोशी। और अब अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये गाना, हसरत जयपुरी के बोल, दिलीप वर्मन का, संगीत एल्बम रात।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

रंग तरंग कार्यक्रम में लीजिए। अब सुनिए कमाल खान की आवाज, संगीत भी इन्हीं का है, बोल महबूब के और एल्बम कल रात।

पहला नशा इस एल्बम का गाना सुनिधि की आवाज में, नक्शलायलपुरी के बोल संगीत है ललित का। ये है आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 3 दिवसीय ओडिशा यात्रा का कार्यक्रम है। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल और दतिया सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है, जहां 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित रही। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की। विपक्ष के सदस्यों ने फिर नीट पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया। विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
1: सदन चर्चा संवाद के लिए, अपने विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए, अपने मत रखने के लिए, अगर असहमति है तो भी सदन के अंदर अपने मत विचार से अभिव्यक्त की जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सहारोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम की धुन के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें

0: राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार शकील बदायूनी के लिखे हुए गाने। पहला जो गीत है ये 14वीं का चांद फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज़, संगीत रवि का।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हुए हैं यादों की महफिल इस कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। लीजिए अब सुनिए गृहस्थी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजें, शकील बदायूं के बोल, संगीत है रवि का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: गीतकार शकील बदायूनी के लिखे हुए गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। फूल और पत्थर इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, संगीत है रवि का।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें,
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को

0: लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
1: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आँखों में इशारा हो गया।
3: दो बदन फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में।

0: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए उड़न खटोला फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत नौशाद का।
1: चले आज तुम जहां से,

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: गीतकार शकील बदायूनी के लिखे गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में, संघर्ष फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में।

बिन बादल बरसात, ये उस फिल्म का नाम है जिसका गीत अब आप सुनेंगे हेमंत कुमार की आवाज़ में। शकील बदायूनी के बोल, संगीत हेमंत कुमार का।

गीतकार शकील बदायूनी के लिखे गाने आप सुन रहे हैं यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत रवि का।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सुरीला सफ़र कार्यक्रम में। मैं हूँ मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज फेसबुक पर जो टेक्स्ट, जो इबारत हमने पोस्ट की है वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। हमारे संस्कारों ने हमें ये सिखाया है कि किसी भी काम की शुरुआत ईश्वर का नाम लेकर की जाती है। किसी अनजान शहर में जब कोई अकेला व्यक्ति अपने दिल और निगाहों को चौकन्ना रखकर जिंदगी की तलाश करता है और उससे घर आने की गुजारिश करता है, तब कई बार परिस्थितियां बहुत विपरीत होती हैं। रात भीगी भीगी हो, नदी नारे उफान पर हो, चंदा की चांदनी भी सीने में जलन पैदा करती हो, तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना से हमें ऐसा सुकून मिलता है जैसे तपती गर्मी में तरुवर की छांव हो। साथ ही ये आश्वासन भी मिलता है कि एक दिन सुखों की गागर हमारा स्वागत जरूर करेगी। तब सीने की जलन शांत होकर कोई गाता सा प्रतीत होता है और मन ख्वाबों के गलियारों में सो जाता है। ये आज की इबारत है, आपने पढ़ी और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी, प्रार्थना से संबंधित बातें लिखी और आज के गानों की क्या खासियत है ये भी उन्होंने बातें लिख करके भेजी। हमारे एक साथी की बात है कि आज की इबारत भारतीय जीवन दर्शन को चिन्हित करता आदर्शों का समागम है। ये सत्य को उजागर करता है कि भारतीय मानस में हर यात्रा, चाहे वह भौतिक हो या जीवंत आस्था के सहारे ही शुरू होती है। विपरीत परिस्थितियों में जब प्रकृति भी बैरी लगने लगे, तब प्रार्थना इंसान के लिए अंतिम और सबसे सशक्त सहारा बनती है। ये इबारत अकेलेपन के दर्द, आस्था की शक्ति और उम्मीद के सूर्योदय की एक भावपूर्ण यात्रा है। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि आज की इबारत जीवन की यात्रा का सुंदर चित्रण है, जहां हर कदम पर विश्वास, संघर्ष और उम्मीद साथ चलते हैं। जब इंसान किसी अनजान राह पर होता है तो सबसे बड़ा सहारा उसके संस्कार और ईश्वर पर उसकी आस्था होते हैं। ईश्वर का स्मरण मन को वैसी ही शीतलता देता है जैसी तपती दोपहर में किसी घने तरुवर की छांव। यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है कि एक दिन सुखों की गागर भी हमारे द्वार पर दस्तक देगी। धन्यवाद आपका। जी हाँ, आस्था की बात तो है ही, लेकिन साथ ही आज के गानों की एक और विशेषता है जो आपने समझ ली है। हम दोनों फिल्म का गाना सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं। लता जी की आवाज़ है इसमें, सही लुधियानवी के बोल हैं और संगीत जयदेव का। जी हाँ, आज संगीतकार जयदेव को हम याद कर रहे हैं।

एक हमारे साथी की ये बात है कि सावन का पहला सोमवार देवों के देव महादेव की जय और इधर सुरीले सफर में जयदेव की सुरीली धुनों से सजे गीतों का आगमन, क्या संयोग बना है। आज तो कार्यक्रम में जयदेव का उद्घोष रहेगा। एक साथी लिख रहे हैं कि सच्ची भक्ति और इंसानियत इंसान को ऊंचा उठाती है। भगवान किसी से मिलावट या दिखावा नहीं मांगते, बल्कि वे हमेशा सच्चे और ईमानदार भक्त के साथ रहते हैं। सच्ची भक्ति विश्वास इंसान के दिल से अहंकार, ईर्ष्या और नफरत को मिटाकर दया, प्रेम और इंसानियत जगाती है। ये मनुष्य को नैतिक और अच्छा इंसान बनाती है, जिससे समाज में उसका और दूसरों का जीवन सुधरता है। एक हमारे साथी की ये बात कि आज श्रावण मास के पहली सोमवारी है, इसलिए भोलेनाथ के मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे हैं, इसलिए सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊंगा। विविध भारती के तमाम मित्रों पर बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, यही मेरी जो है शुभकामना है, ऐसा इन्होंने लिखा है। और एक हमारे साथी की बात कि भक्ति की शक्ति से पूर्ण सुक्ति चित्रित करती इबारत की पंक्ति है, आसक्ति की युक्तियों में भटकते व्यक्ति के विभिन्न उक्तियों को युक्ति युक्त तरीके से ईश्वर सम्मुख समर्पण का मार्ग दर्शाती इबारत है, संगीतमय सफर आनंदित करेगा, ये इस बात का हमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। जी धन्यवाद आपका। चलिए अब हम अपनी जो इबारत है उसके अनुसार ही हम आगे बढ़ रहे हैं। संगीतकार जयदेव के संगीतबद्ध किए गाने भी हैं और हम आपसे ये भी एक सवाल करना चाहेंगे कि जो ईश्वर की भक्ति है या ईश्वर का नाम है

या यूं कहें कि उनके ऊपर जो विश्वास है वो कब कब कौन सी परिस्थितियों में आपको बहुत संबल देता है, कब आपको लगा कि बस उनके सहारे ने हमें बहुत बड़ा संबल दिया, ये आप हमें बता सकते हैं। घरोंदा फिल्म का गाना भूपिंदर सिंह की आवाज़ में, अमोल पालेकर पर फिल्माया गया है, बोल किसके हैं ये आप बताइए हमें।

आपने सुना हमारे एक साथी की ये बात है कि जब कोई अनजान शहर में अकेला अपनों से दूर जिंदगी की तलाश में निकलता है तो यही गाना याद आता है, एक अकेला इस शहर में रात में है, रात में और दोपहर में। और जब अपनों की याद सताती है तो सीने में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है, तब सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, ये गीत हमें याद आता है। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि दिग्गज संगीतकार जयदेव, उनकी जन्म जयंती पर उन्हें विनम्र अभिवादन। बेहतरीन काव्य के साथ मेलोडी, मुश्किल फिर भी मनमोहक भावना प्रधान धुनों से सजे उनके गीत धीरे धीरे हमारे नस नस में समा जाते हैं। उनका संगीत शास्त्रीय रागों से परे, बुद्धि को चकरा देने वाला परंतु मन को संतोष और आनंद देने वाला। उनकी बहुत सारी अनुपम सुंदर रचनाएं आज हम सुन रहे हैं। एक साथी ने यह भी लिखा है कि आज की इबारत संगीतकार जयदेव की यादों के फूलों से बुनी जाने वाली है, बुनी जा रही है, तब हम यही कहेंगे उनके संगीत से रचे गीत सुनकर जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे आपके मन को मिलेगा। और विविध भारती के लिए भी कहेंगे कि तुम्हें देखते हैं सुनते हैं तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानते हैं सुनते आए हैं, अगर तुम हो संगीत सागर हम प्यासी नदी समान श्रोता हैं। ये हमारे श्रोताओं की बातें हैं, बहुत धन्यवाद आपका। एक अकेला इस शहर में ये गाना हमने सुना, आप ऐसी कोई याद हो आपकी कि आप किसी शहर में, नए शहर में गए हों, जहाँ रहते हैं उस शहर को छोड़ करके किसी नए शहर में गए हों और वहाँ आपने बहुत अकेलापन महसूस किया, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपके साथी बनते गए, मिलते गए, कारवां बनता गया और फिर वो शहर अच्छा लगने लगा, ये बात आप हमें बता सकते हैं। चलिए, प्रेम पर्वत फिल्म का ये गाना आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत आप जानते ही हैं जयदेव का है, गीतकार कौन है ये आप बताइए।

प्रेम पर्वत फिल्म का ये गाना आपने सुना, जानिस और अख्तर का लिखा हुआ ये गाना है। एक हमारे साथी की बात है कि एक अकेला इस शहर में, जो गीत हमने कुछ देर पहले आपको सुनवाया था, इसके बारे में लिखा है कि गीतकार गुलजार ने शहरी अकेलेपन को बेहद सारे लेकिन दिल को चीर देने वाले शब्दों में ढाला है। इन उम्र से लंबी सड़कों को हमने तो ठहरते देखा नहीं, जैसी पंक्तियां शहर की रफ्तार और इंसान की बेबसी को बेहतरीन तरीके से बयां करती है। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, महानगरों के उस मानसिक तनाव और खालीपन को दिखाता है। एक साथी ये लिखते हैं कि हमारा तो सफर ऐसे ही विविध भारती के संग कटता रहता है, काफी अच्छा लगता है सुनते हुए विविध भारती, दिन निकल जाता है। एक साथी ने ये भी लिखा है कि जिंदगी उतार चढ़ाव से भरा हुआ, बहुत बार परिस्थितियां डगमगाती है, खासकर जब लोगों का नहीं भगवान के भरोसे पर रहता है, पर कुछ ऐसी होनी होती है कि जिससे विश्वास मजबूत ही हुआ है। कठिन समय में भगवान पर विश्वास और अधिक मजबूत होता चला जाता है। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है, देखिए अब वो जो हम पढ़ रहे थे वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए कुछ देर बाद और आपके जो कमेंट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। दूरियां फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, अनुराधा पौडवाल और भूपिंदर सिंह की इसमें आवाज़ें हैं, सुदर्शन फाकीर के बोल हैं, संगीत जयदेव का। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि एक नई सुबह देखने को मिली। अपने मन की व्यथा को पूरे मन से समर्पित करते हैं और आत्मविश्वास से भर उठता है मन और शांति का एहसास होता है। सुख में भी ईश्वर को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। एक हमारे साथी की ये बात, जो प्रेम पर्वत फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि बहुत मधुर, दिल को स्पर्श करने वाली देशी धुन पर आधारित प्रेम पर्वत का गीत मानो प्रकृति के घेरे में खड़े होकर सुन रहे हैं, मेरे सर्वकालिक पसंदीदा गानों में से एक है। और एक साथी लिख रहे हैं कि संगीतकार जयदेव का संगीत शोर नहीं बल्कि आत्मा की धीमी सी धुन था। उन्होंने कम फिल्मों में संगीत दिया लेकिन जो भी रचनाएं दी वे समय के साथ और भी अमर होती चली गई। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी कि ईश्वर पर मेरा अटूट विश्वास है, जब भी मुश्किल में होती हूँ तो सहारा ज़रूर देते हैं, हर मुश्किल से वही तो हमें बाहर निकालते हैं। और बाकी जो साथी हैं हमारे, उन्होंने ये बात लिखी है कि आज सावन का पहला सोमवार है तो हम ईश्वर की आराधना में लगे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद आपका। और अब मुझे जीने दो इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, सही लुधियानवी के बोल। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

वहीदा रहमान और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना। हमारे एक साथी की बात है कि जिंदगी मेरे घर आना ये केवल एक गीत नहीं बल्कि जीवन का स्नेहिल निमंत्रण है। ये याद दिलाता है कि खुशियां अक्सर दस्तक देती है। इस गीत की हर लाइन इतनी प्यारी है कि इस गीत को पूरा सुने बिना तक कान वहीं पर लगे रहते हैं। और हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि धीर गंभीर स्वर में खूबसूरत अंदाज में गाया हुआ दूरियां फिल्म का जो गाना है ये बहुत ही अर्थपूर्ण गाना है। और एक साथी ने ये बात लिखी कि दूरियां फिल्म का ये जो गाना है ये मेरी लिस्ट में भी शामिल था और उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है। और एक साथी की ये बात है कि प्रसिद्ध संगीतकार जयदेव जी की जयंती है। जयदेव जी के संगीत में दैनिक जीवन में आने वाले विभिन्न पायदानों परिस्थितियों को संगीत में ढाला है। उनके गीत हमें सुकून मिलता है। उनके गीत कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। जब हमें इश्क सताता है तो हंस लेता हूँ। चले आ रहे हैं किनारे किनारे ये उनके जो गीत हैं उनकी कुछ कुछ लाइनें उन्होंने लिखी है। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे मैं एक शाम चुरा लूँ गर बुरा ना लगे। मंजू जी हमें तो मुंबई आकर ऐसा ही लगा बिल्कुल भी हमें अजनबी नहीं लगा। जी हाँ ये दूसरे शहर से जब मुंबई आए तो मुंबई के बारे में इन्होंने ये बात लिखी। और एक साथी ने ये बात लिखी कि आज की इबारत में सुकून और आश्वासन की ये जो बातें हैं ये हमें बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद आपका। चलिए अगला गाना सुनवाते हैं। रेशमा और शेरा इस फिल्म का ये गाना है और लता मंगेशकर की इसमें आवाज़ है। वहीदा रहमान और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना। गाना काफ़ी लंबा है शायद हम ये गाना आपको पूरा तो नहीं सुनवा पाएंगे लेकिन जितना भी हम सुनवा पाएंगे आप सुनिए।

रेशमा और शेरा, इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, वहीदा रहमान सुनील दत्त पर फिल्माया गया। एक हमारी जो साथी हैं वो लिख रही हैं कि लिखते हैं कि जयदेव जी के गानों में शर्मा बंधुओं का एक भजन नुमा जो गाना है, जैसे सूरज की गर्मी में तपते हुए मन को मिल जाए तरुवर की छाया। इस गाने में इतनी कशिश है कि कोई भी व्यक्ति 3 मिनट के लिए रुक कर इसे सुनता ही है। जयदेव जी ने सरल लेकिन आकर्षक धुन बनाई है और सभी की तरह मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है और आज के कार्यक्रम में ये जो गाना है ये बजने वाला है। जी हाँ, अगला गीत है ये और भजन नुमा ये गीत आप ज़रूर सुनेंगे। एक हमारे साथी की बात है कि अपना स्थान कभी नहीं भूलता, मेरी बेटी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मुंबई आई, फिर वहाँ ही उसकी जॉब भी लग गई, फिर शादी भी मुंबई में हो गई, लेकिन अभी भी उसका मन नहीं लगता। मुंबई की भागम भाग वाली लाइफ और फ्लैट वाली लाइफ में वो बहुत मायूस रहती है। हमारे यहाँ पंजाब में बड़े घर और ज़्यादा भागम भाग नहीं है तो यहाँ उसे पसंद आता है। जी हाँ, ये तो सही बात है कि पूरा जीवन या फिर यूँ कहें कि शुरुआती जीवन जहाँ हमने बिताया है वही जगह और वही कल्चर, वही बातें हमें बड़ी पसंद आती है। तो आप कोशिश करें अपनी बेटी को या तो एडजस्ट करने के लिए या फिर से पंजाब लाने के लिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। और एक बात हमारे साथी की ये है कि आज के जो गाने हैं वो शांति से सुनने लायक है और वही मैं कर रहा हूँ, इसलिए एकदम शांति से सुरीला सफ़र ये कार्यक्रम मैं सुन रहा हूँ। और एक साथी की ये बात कि मुझे जीने दो फिल्म का जो गाना आपने सुनाया वो मेरी लिस्ट का 5वां गीत था जो आपने शामिल कर लिया है, बहुत धन्यवाद आपका। जी आपका भी धन्यवाद कि आप ये बातें लिखते हैं हमें और इनकी जानकारी देते हैं। चलिए, परिणय फिल्म से ये रचना शर्मा बंधु की आवाज़ें हैं।

0: ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया।
1: एक साथी की ये बात है कि जयदेव जी चले गए, लेकिन उनके सुर आज भी हवा में घुली उस प्रार्थना की तरह है जो हर सुनने वाले के दिल को एक अनकही शांति से भर देते हैं। उन्होंने कभी भी लोकप्रियता की चमक के पीछे अपने संगीत की आत्मा को नहीं खोया। उनके लिए हर धुन एक साधना थी, हर गीत एक प्रार्थना और हर स्वर ईश्वर को समर्पित एक दीपक। इसके लिए उनके गीत आज भी समय की धूल से अछूते हैं और हर पीढ़ी के मन में उसी ताजगी और पवित्रता के साथ गूंजते हैं। और एक साथी की ये बात है, रेशमा और शेरा फिल्म का जो गीत हमने आपको सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि जयदेव जी का संगीत में क्लासिक टच इसमें साफ झलकता है और लता जी की आवाज़ का तो क्या ही कहना, और मेरे लिस्ट का ये छठा गीत था जो शामिल हो गया। और लिखा है कि बाल कवि बैरागी की रचना, जयदेव जी का संगीत, लता जी की मधुर आवाज़ और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया गाना, ये बड़ा ही एक अद्भुत एक संयोग है। और एक हमारे साथी की ये बात है कि मुझे मेरे स्कूल की जो प्रेयर थी यानी कि प्रार्थना बहुत अच्छी लगती थी, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, और इस तरह ये जो प्रार्थना थी ये हमें बड़ी ही प्रिय लगी। और एक साथी लिख रहे हैं कि अपनी निरंतर नई विषय वस्तु पर संचालन के कारण सुरीला सफ़र कार्यक्रम सबसे आकर्षक लगने वाला कार्यक्रम है और VBS का सबसे सफल लोकप्रिय कार्यक्रम अब ये बन गया है। नज़र ना लगे इसकी गरिमा बरकरार रहे। और एक साथी लिख रहे हैं, जयदेव जी का संगीत मनमोहक हृदय स्पर्शी होता है, संभावित चयन का जो ये गीत है ये आपने शामिल किया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, दो बूंद पानी इस फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। दो आवाज़ें, मुख्य आवाज़ें इसमें हैं, वो किसकी है ये आप हमें बताइए, सिमी गरेवाल और मधु चंदा पर फिल्माया गया ये गाना।

मीनू पुरुषोत्तम, परवीन सुल्ताना और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि ये जो इबारत है ये केवल ईश्वर प्रार्थना का वर्णन नहीं करती बल्कि मनुष्य के भीतर बसे उस अटूट विश्वास की कथा कहती है जो सबसे कठिन राहों में भी उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ता। अजनबी शहर, भीगी रात, उफनती धाराएं और चांदनी की कसक जीवन के उन क्षणों के प्रतीक है जब हर दिशा मौन हो जाती है। ऐसे समय में प्रार्थना शब्दों से अधिक आत्मा का संवाद बन जाती है जो भय को धैर्य और प्रतीक्षा को विश्वास में बदल देती है। यही आस्था अंततः मन को यह अनुभूति कराती है कि हर अंधेरी रात के नेति उजाला है और हर अधूरी यात्रा के अंत में एक ऐसा सवेरा प्रतीक्षा करता है जहां पीड़ा स्मृति बन जाती है और जीवन फिर से मधुर संगीत की तरह बहने लगता है। और हमारे साथियों ने ये बातें लिखी कि परिणय का जो शर्मा बंधु का गाना भी है, भजन भी है और निर्गुण भी है, वाकई सुनते ही मानसिक ऊर्जा जागृत हो जाती है। संशय मन को शक्ति और सुकून देने वाली सर्वश्रेष्ठ रचना है ये। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जैसे सूरज की गर्मी से भजन प्रफुल्लित हो गया, खूब खूब आभार, मन को बहुत ठंडक हो गई इस भजन को सुन करके। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि सूरज की गर्मी से शर्मा बंधु द्वारा गाया गया, ये एक प्रोग्राम में इनसे मिली थी और जितनी मधुर आवाज है उतना ही तेज इनके चेहरे पर भी है, ऐसी बात इन्होंने लिखी है। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। गमन फिल्म से ये अगली जो है ये रचना है, बोल इसमें शहरयार के हैं और संगीत जयदेव का है, फारूक शेख पर ये फिल्माया गया है।

दो बूंद पानी फिल्म का जो गाना सुना उसके बारे में हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि वो गीत सुनकर अपने गांव का पनघट मुझे याद आ गया। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि बचपन में इस गीत पर हमने बहुत डांस किया था। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण में ही निहित है, जब आत्मा अपने अहंकार को त्याग कर परमात्मा की शरण में जाती है तभी उसे असीम शांति और मुक्ति का मार्ग मिलता है। चलिए अगला और अंतिम गाना, आलाप फिल्म का ये गाना यशोदास की आवाज़ में। पर्दे पर कौन गाता है आप बताइए।

आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक। आपने कार्यक्रम को ध्यान से सुना, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें दी, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आज की त्रिवेणी भंवरे पर आधारित है। सुबह की पहली किरण के साथ जब ओस से भीगे फूल मुस्कुराते हैं, तब सबसे पहले उनका हाल पूछने भंवरा ही आता है। वो फूल को तोड़ता नहीं, ना ही चोट पहुंचाता है, केवल उसके पास बैठकर उसकी सुगंध को महसूस करता है और अपनी मधुर गुनगुनाहट से उसका अभिवादन करता है। ये उसका अपनापन है। भंवरे की गुंजन हमें सिखाती है कि जीवन में कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, उसमें मधुरता बनी रहनी चाहिए। वो कभी शिकायत नहीं करता कि उस फूल में रस कम है और उसमें अधिक रस है। भेदभाव नहीं करता, वो हर फूल को समान प्यार करता है। प्रकृति का वो अनूठा संगीतकार है जो बगिया में गुनगुनाकर जीवन का राग छेड़ देता है।

भंवरा जब उड़ता है तो लगता मानो हवा ने कोई धुन ओढ़ ली हो। उसकी गुनगुनाहट केवल एक स्वर नहीं बल्कि प्रकृति के हृदय से

निकली प्रेम वीणा का मधुर आलाप है। भंवरा जब कलियों पर मंडराता है तो लगता है वो कवि है, फूलों की पंखुड़ियों पर कविता लिखता फिर रहा है। उसकी हर उड़ान एक गीत है और हर ठहराव एक कविता है और हर गुनगुनाहट प्रकृति की अनकही भावनाओं का अनुवाद। भंवरों से अगर हम सीख लें तो रिश्ते और भी सुंदर हो जाएंगे। हम लोगों के जीवन में मुस्कान, प्रेम और अपनापन देकर हम उन्हें खुश रख सकते हैं। हम किसी का मन महका सकते हैं, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। फूलों में सौंदर्य है, कांटों को देखोगे तो फूलों के सौंदर्य की सुगंध से वंचित रह जाओगे। हमेशा अच्छाई की खोज करो, बुराई की नहीं।

0: भंवरा पंखुड़ियों को छूता है, खुशबुओं से बातें करता है और रंगों की दुनिया में प्रेम संदेश लिख जाता है। भंवरा शायद जानता है फूलों की उम्र बहुत छोटी होती है, वो पूरी आत्मीयता से इनके संग जीता है। हमें पता है हमारी जिंदगी की गाड़ी कब तक चलेगी, रुकेगी, लेकिन हम अपनों से आत्मीयता नहीं रखते। कल किसने देखा है, जो आज है उसी में अपनों संग प्रेम से जी लें। भंवरे की छोटी छोटी उड़ाने, चाहे वो गुलाब पर हो या चमेली सरसों के पीले खेतों में हो, वो जीवन का सत्य सिखाती हैं। जहां प्रेम होता है वहां शोर नहीं होता और न दिखावा, एक व्यवहार के मीठे बोलों की मिठास होती है जो बिना कहे भी दिल तक पहुंच जाती है। काश हम भंवरे की तरह रिश्तों की खुशबू पहचानना सीख पाते।
1: बकियन का मेहमान है।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत 30 स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका।

0: अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखाभाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
2: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
2: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
0: ये समाचार हमारे newsonair ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रम

0: भ्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
1: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
0: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने 1 साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारम्भ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
2: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटका में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा GS पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के

0: लिए आप हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धान और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्योहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांति वार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजें, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है SD बर्मन का।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए ये रास्ते हैं प्यार के। इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है रवि का।

ये दिल किसको दूं, ये फिल्म का नाम है। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, कमर जलाल आबादी के बोल, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: शकील बदायूनी का लिखा और रवि का संगीत बद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम मुलजिम।

0: हाय ये पकड़, हाय हाय हाय तुम हो हसी कहाँ के,
1: हम चांद हाय तुम आके,
0: हाय हाय गुरूर।

0: या हा
1: हा हा हाय। एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो, 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय,
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। अगला गाना रुस्तम सोहराब, इस फिल्म से सुरैया की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है सज्जाद हुसैन का।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय,
3: ये है सेहरा, फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ें, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत रामलाल का।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, सुशीला फिल्म का गाना, मुबारक बेगम की आवाज में, जानेसार अख्तर के बोल, संगीत सी अर्जुन का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को, सभी बहनों को और सखा भाइयों को, सभी श्रोताओं को नमस्कार। दीपा जी, आपको भी नमस्कार।
2: हमारे सुनने वाले सभी सखियों, सहेलियों, श्रोता भाइयों को और चंचल वर्मा आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: मैं इंतजार कर रही थी आपके हेल्दी नमस्कार का। और भाई, बात हेल्थ की होने वाली है तो आज जो हम रेसिपी बताने वाले हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है और प्रादेशिक व्यंजन की चर्चा इस दिन की जाती है, तो नया महीना शुरू हुआ है और नए महीने से हम नए प्रांत को लेकर कुछ रेसिपीज लेकर आए हैं। अभी हम चल पड़े हैं पश्चिम बंगाल की ओर, तो वहां का एक हेल्दी स्नैक्स, मतलब हल्की फुल्की भूख के लिए जो खाया जाता है ना, जो आपको लगे बस कुछ हल्का फुल्का सा ही खाना है ताकि पेट पर भार ना हो।
2: तो भाई, ये जो खास तौर पे शाम का वक्त रहता है
1: जी,
2: जब हम मन कर जाता है एकदम चाय पकौड़ी या समोसे, तो उसके बदले में एक विकल्प देंगे,
1: हाँ,
2: वो भी हेल्दी।
1: बिल्कुल, और वो हेल्दी विकल्प है झालमुरी, जिसके बारे में बहुत सारे व्यंजन आने शुरू हो चुके हैं कि अलग अलग प्रांतों में क्या नाम है। हमारे श्रोता ये भी लिखकर भेज रहे हैं, किस किस तरह के मसाले डालकर उसको थोड़ा सा बदलाव किया जाता है वो भी लिखकर भेज रहे हैं, और पूरी रेसिपी उसकी जो बनाने की विधि है वो भी श्रोताओं ने हम तक पहुंचाई है।
2: यानी कि हमेशा नया कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए।
1: हाँ, तो भाई आपके प्रांत में जिस तरह बनाई जाती है, लेकिन उसे नए तरीके से कैसे बनाना है आप ये भी सीख सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं जो रूटीन से हटकर हम नया सीखते हैं हर दिन में
2: जी,
1: उसके बारे में भी हमारे श्रोता हमें लिखकर जरूर बताएं। और बात जब सेहत की चली है, तो एक शिशु नवजात जब जन्म लेता है तो उसकी सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज है माँ का दूध।
2: बिल्कुल सही कहा।
1: और अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है, 1 तारीख से लेकर 8 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं।
2: और जब छोटा बच्चा होता है तो उसको सुलाया जाता है कहानी सुनाकर, लेकिन बात सिर्फ छोटों की नहीं हो रही, यहाँ तो हम सब बड़े बड़ा मन लगा के कहानी सुनते हैं, है ना।
1: तो आपका इशारा कथा सुधा की ओर है।
2: बिल्कुल।
1: तो आज अशिक्षित हृदय कथा का दूसरा भाग हमारे श्रोता सुनेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं सेहत की, यानी कि एक शिशु के स्तनपान को लेकर, जो उसके लिए बहुत जरूरी है। एक शिशु के लिए सबसे ज्यादा सेहतमंद चीज होती है माँ का दूध, और माँ का दूध शिशु को पलने के लिए, उसे बड़े होने के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्वों का एक बेमिसाल मिश्रण होता है। साथ ही इसमें बहुत बड़ी तादाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, तो शिशु में बीमारियों से लड़ने के लिए वो मदद करती है और एक शिशु को स्वस्थ भी रखता है माँ का दूध।
2: बिल्कुल सही कहा चंचल आपने। और जन्म देने के बाद माँ की शुरुआती दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं,
1: हाँ,
2: और इस दूध में जो जैसे आपने बताया रोग प्रतिकारक और पोषक तत्वों की भरमार होती है, इसलिए इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। तो दो नाम अब आप लोगों ने सीख लिए, कोलेस्ट्रम और लिक्विड गोल्ड।
1: हाँ,
2: और ये इस शिशु के लिए बहुत आवश्यक है, नवजात शिशु के लिए।
1: बिल्कुल, आप नया क्या क्या सीख रही हैं इसके बारे में ही बता रही हैं।
2: बताते चलेंगे और याद दिलाते चलेंगे, देखिए आज हमने क्या क्या सीखा।
1: तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जो शुरुआती 3 से 5 दिन तक माँ के स्तन में जो दूध आता है उसमें थोड़ा सा बदलाव होता रहता है, और ये जो दूध आता है बाद में, 3 से 5 दिन की बात कर रहे हैं शुरू के 3 दिन को छोड़कर, तो ये कोलेस्ट्रम की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा सफेद भी होता है और पतला होता है, और इस दूध में मिठास, पानी, प्रोटीन, वसा, ये तमाम तरह की चीजें होती हैं जो कि एक शिशु को बढ़ने के लिए यानी उसके विकास के लिए सभी जरूरी चीजें होती हैं।
2: बिल्कुल, और ये कई तरह के संक्रमण जो बच्चे में खतरा हो सकता है,
1: हाँ,
2: कम करने का काम करता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। लेकिन स्तनपान के बारे में सही ज्ञान का भी बहुत अभाव है।
1: बिल्कुल,
2: उसका कारण कई हो सकते हैं। ये भी देखा जाता है कि छोटे बच्चे पोषक को या किसी और संक्रमण का शिकार कई बार हो जाते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं
2: जी,
1: वो।
2: और खास तौर पर वे महिलाएं जो पहली बार माँ बनी है और उनके पास परिवार को, उसके परिवार में कोई बड़े नहीं है या कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें समझा सके, तब भी ये जो समस्या है सामने आ जाती है।

0: इतने बड़े जहां में तुझको अकेला छोड़ूं कैसे, और एक माँ की भावना भी यही रहती होगी ना, जब एक नया शिशु जन्म लेता है तो माँ उसे सबसे बचा कर रखती है, उसे पूरा पोषण देना चाहती है, पूरा संरक्षण देना चाहती है। और शायद यही वजह है कि हर माँ भी चाहती है कि उसकी शुरुआत स्तनपान से हो उस बच्चे की, और वो बहुत स्वस्थ रहे। और चिकित्सक भी यही कहते हैं कि शुरुआती जो 6 महीने होते हैं उसमें बच्चे को सिर्फ माँ के दूध पर ही निर्भर रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, और जुड़ाव भी देखो वहीं से शुरू होता है।
0: हाँ।
1: जो बिल्कुल जन्म जन्म तक चलता है शायद।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: और आगे जो हम बात कर रहे थे स्तनपान के बारे में, कि ये प्रक्रिया, स्तनपान की जो प्रक्रिया है, शिशु के लिए संरक्षण और संवर्धन का काम करती है। ये दूध शिशु के लिए केवल पोषण नहीं बल्कि अमृत के समान है। शिशु के लिए स्तनपान एक रक्षा सूत्र की तरह काम करता है। नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक शक्ति जन्म से नहीं होती बल्कि माँ के दूध से ये ताकत शक्ति बच्चों को मिलती है। माँ के दूध में लैक्टोफॉर्मिन नाम का एक तत्व होता है जो बच्चों की आंतों में लौह तत्व को बांध लेता है, जिसके कारण आंतों में रोगाणु फिर पनप नहीं पाते हैं। और माँ के दूध में सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं, जैसे एंटीबॉडीज, हार्मोन्स और एंटीफंगल और रोग प्रतिरोधक शक्ति, और साथ में कई अलग अलग तरह के तत्व मौजूद होते हैं जो नवजात के बेहतर विकास और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए एक शिशु के लिए सर्वोत्तम ये आहार है। स्तनपान से शिशु के बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होती है, साथ ही माँ और शिशु के लिए एक इमोशनल बॉन्ड यानी कि भावनात्मक रिश्ता भी प्रगाढ़ होता है।
0: और जैसे कि

0: हमने पहले बताया कि इस दूध में वसा है, प्रोटीन है, मिठास है, ये सभी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग को ये लगता होगा, और कई बार जो बच्चियां हैं जो पहली बार गर्भ धारण करती हैं, माँ बनती हैं, तो उन्हें भी मन में शायद ये लगता होगा कि भाई सिर्फ दूध पीने से ही बच्चे को पूरा पोषण कैसे मिलेगा, और
1: जी
0: कई बार पानी पिलाएं या कुछ और खिलाएं ऐसी कोशिश की जाती है, लेकिन माँ का दूध अपने आप में पूर्ण संपूर्ण आहार होता है।
1: जी, बिल्कुल सही कहा आपने चंचल। और माँ के दूध की अहमियत से

0: का दूध अपने आप में संपूर्ण आहार होता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने चंचल। और माँ के दूध की अहमियत से लगभग सभी लोग भली भांति परिचित तो रहते हैं, फिर भी देखा गया है कि कुछ महिलाओं में ये भ्रांति घर कर जाती है कि स्तनपान की वजह से उनके शरीर की सुडौलता पर विपरीत असर होगा या उनका फिगर बिगड़ जाएगा। ऐसे सोच जो नई लड़कियां होती हैं उनके मन में आता है और इसी वजह से वे स्तनपान से परहेज करने लगती हैं। माताओं के इसी भ्रम को दूर करने के लिए, स्तनपान के प्रति जागरूकता लाने और स्तनपान के महत्व को समझने के लिए, इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत 1991 में हुई और अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है।
0: और दीपा, माँ का दूध केवल पोषण नहीं, हम कह सकते हैं कि जीवन धारा है। जैसे आपने कहा ना कि उसे लिक्विड गोल्ड कहते हैं, तो ये जीवन धारा भी है। इससे न केवल एक शिशु बल्कि माँ के स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। और चिकित्सक भी सलाह देते हैं कि माँ को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बच्चे को सेहत नहीं चाहिए, एक गर्भवती स्त्री जिसने 9 महीने तक उस शिशु को पेट में रखा है और बाद में बहुत सारी चीज़ों की जब कमियां आती हैं तो वो स्तनपान कराना ही चाहिए, इससे उनको स्वास्थ्य में बेहतरी होती है। प्रसव के बाद बहुत सारी शिकायतें होती हैं एक स्त्री को, इससे भी मुक्ति मिल जाती है उन्हें। और ये कहते हैं कि एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक का भी काम करता है।
1: और सबसे बड़ी बात तो ये है ना चंचल कि माँ और शिशु के बीच का ये जो भावनात्मक संबंध है ये मजबूत करने का एक बहुत सुलभ साधन है।
0: तो चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले एक गाना सुन लेते हैं।
1: चलिए।

0: से गीत के बाद में मुझे लगता है कि अब हमें कहानी सुननी चाहिए, और एक वो कहानी जो इस समय अधूरी है। इसका पहला भाग हमारे श्रोता पहले सुन चुके हैं, आज इसका दूसरा भाग हम सुनवा रहे हैं। सुनते हैं कहानी अशिक्षित कर हृदय का दूसरा भाग।
1: चलिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अशिक्षित का हृदय। आइए आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। अशिक्षित का हृदय। इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना, 55 वर्षीय मनोहर सिंह फौज की सेवा से निवृत्त होकर गांव में अब अकेला रहता है। टूटे फूटे मकान में रहने वाले मनोहर ने कुछ समय पहले खेती कराने के लिए जमीन ली थी, जिसमें उसे नुकसान हो गया और समय पर लगान न दे सकने के कारण उसे अपने घर के द्वार पर लगे नीम के वृक्ष को ठाकुर शिवपाल सिंह के पास गिरवी रखना पड़ा। समय सीमा के बाद शिवपाल सिंह उस पेड़ को कटवाने का हुक्म देता है और मनोहर उस नीम के पेड़ को अपनी जान से भी अधिक चाहता है और उसे बचाने का हर संभव प्रयास करता है। गांव का एक बालक तेजा उसकी भावना को समझता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। मनोहर पेड़ को बचाने के लिए ठाकुर से 8 दिन की और मोहलत लेता है, परंतु पैसे की व्यवस्था वो नहीं कर पाता है। आज मियाद खत्म होने वाली है, क्या मनोहर सिंह नीम का पेड़ बचा पाएगा जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है? आइए सुनते हैं आगे।
4: एक सप्ताह बीत गया, आज 8वां दिन है। मनोहर सिंह रुपयों का प्रबंध नहीं कर सका। वो समझ गया कि अब पेड़ का बचना कठिन है, पर साथ ही वो ये भी निश्चय कर चुका था कि उसके जीते जी कोई उसको काट नहीं सकता। उसने अपनी तलवार भी निकाल ली और साफ करके रख ली थी। अब वो हर समय पेड़ के नीचे ही पड़ा रहता था और तलवार सिरहाने रखी रहती थी। 8वें दिन दोपहर के समय शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को बुलवाया। मनोहर सिंह तलवार बगल में दाबे अकड़ता हुआ ठाकुर साहब के सामने पहुंचा। शिवपाल सिंह और उसके आसपास बैठे हुए लोग बुढ़े की सज धज पर मुस्कुराए। शिवपाल सिंह ने कहा,
5: सुनते हो मनोहर सिंह, एक सप्ताह बीत गया, अब पेड़ हमारा हो गया, आज हम उसकी कटाई शुरू कराते हैं।
6: जी आपको अधिकार है, मुझे रुपया मिलता तो दे ही देता, और अब भी यदि मिल जाएगा तो दे दूंगा। मेरी नीयत में बेईमानी नहीं है, मैं फौज में रहा हूँ, बेईमानी का नाम नहीं जानता।
5: अब हम उसे कटवा लेना।
6: ये मैं कैसे कहूँ, आपका जो जी चाहे कीजिए।
4: ये कहकर मनोहर सिंह उसी प्रकार अकड़ता हुआ ठाकुर शिवपाल सिंह के सामने से चला आया और अपने पेड़ के नीचे चारपाई पर आकर बैठ गया। दोपहर ढलने पर 4-5 आदमी कुल्हाड़ियां लेकर आते दिखाई पड़े। मनोहर सिंह झट म्यान से तलवार निकालकर डट कर खड़ा हो गया और ललकार कर बोला,
6: रुको, संभल कर आगे बढ़ना, जो किसी ने भी पेड़ में कुल्हाड़ी लगाई तो उसकी और अपनी जान एक कर दूंगा।
4: मजदूर बुढ़े की ललकार सुनकर और तलवार देखकर भाग खड़े हुए। जब शिवपाल सिंह को ये बात मालूम हुई तब पहले तो वो बहुत हंसे, परंतु पीछे कुछ सोचकर उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और बोले,

0: इस बुड्ढे की शामत आई है। हमारा माल है, हम चाहे काटें चाहे रखें, वो कौन होता है? चलो तो मेरे साथ, देखो वो क्या करता है। क्यों मनोहर
1: जी,
0: ये क्या बात है?
1: बात केवल इतनी है कि मेरे रहते इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मैं जानता हूं कि अब ये पेड़ आपका है, मगर ये होने पर भी मैं इसे कटता हुआ नहीं देख सकता।
0: पर हम तो इसे कटवाए बिना न मानेंगे।
1: ठाकुर साहब, जो आप सच्चे ठाकुर हैं तो इस पेड़ को कटवा लें, और जब मैं असली ठाकुर होऊंगा तो इसे कटने न दूंगा।
0: देखते क्या हो, इस बुड्ढे को पकड़ लो और पेड़ काटना शुरू करो।
2: ठीक उसी समय तेजा सिंह दौड़ता हुआ आया और मनोहर सिंह को कुछ रुपए देकर बोला,
3: लो चाचा ये रुपए लो, अब तुम्हारा पेड़ बच गया।
1: कहिए ठाकुर साहब, रुपए लेना हो तो ये हाजिर हैं, और जो पेड़ कटवाना हो तो आगे बढ़िए।
0: रुपए तो अब हम ले नहीं सकते, रुपए देने की मियाद बीत गई, अब तो पेड़ कटेगा।
1: ठीक है, अब मालूम हुआ कि आप केवल मुझे दुख पहुंचाने के लिए पेड़ कटवा रहे हैं। अच्छा कटवाइए, मुझे भी देखना है आप किस तरह पेड़ कटवाते हैं।
2: इतनी ही देर में गांव भर में ये खबर फैल गई कि शिवपाल सिंह मनोहर सिंह का पेड़ कटवा रहे हैं। और मनोहर सिंह तलवार खींचे खड़ा है, किसी को पेड़ के पास जाने नहीं देता। ये खबर फैलते ही गांव भर के लोग जमा हो गए। गांव के दो चार प्रतिष्ठित आदमियों ने मनोहर सिंह से पूछा,
0: क्या बात है मनोहर सिंह?
1: मैं रुपए देता हूँ, ठाकुर लेते नहीं, कहते हैं कल तक मियाद थी, अब तो पेड़ कटेगा।
0: कल तक ये रुपए दे देता तो पेड़ पर हमारा कोई अधिकार ना होता, अब हमारा उस पर पूरा अधिकार है, हम पेड़ अवश्य कटवाएंगे।
2: भीड़ में खड़े हुए लोगों के बीच में से एक व्यक्ति बोला, जब कल इसके पास रुपए नहीं थे तो आज कहां से आ गए? तभी शिवपाल सिंह का एक आदमी बोला, तेजा ने अभी लाकर दिए हैं। भीड़ में गांव वालों के साथ तेजा का पिता भी था, उसने ये सुनकर तेजा को पकड़ा और कहा,
4: क्यों रे तू नहीं रुपए चुराए थे? मैंने दोपहर को पूछा तो 3 तेरा बकने लगा था। मनोहर, ये रुपया तेजा मेरी संदूक से चुरा लाया है, ये रुपए मेरे हैं।
1: तेरे हैं तो ले जा, मैंने तेरे लड़के से रुपए नहीं मांगे थे। तेजा बेटा, तूने ये बुरा काम किया, चोरी की। राम राम राम, बुढ़ापे में मेरी नाक कटाने का काम किया, ये लोग समझेंगे मैंने ही चुराने के लिए तुझसे कहा होगा।
3: चाचा, मैं गंगा उठाकर कह सकता हूं कि तुमने मुझसे रुपए मांगे तक नहीं, चुराने के लिए कहना तो बड़ी दूर की बात है।
0: क्यों मनोहर, अब रुपए कहाँ हैं? लाओ लाओ, रुपए ही लाओ, मैं रुपए लेने को तैयार हूं। अब या तो रुपए दे दो या सामने से हट जाओ, झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं होगा।
1: ठाकुर साहब, इन तानों से क्या फायदा? रुपए मेरे पास नहीं है, लेकिन पेड़ मैं कटने नहीं दूंगा।
0: आप लोग इस बात को देखिए और न्याय कीजिए, मियाद कल तक की थी, मैं आज भी रुपए लेने को तैयार हूं, अब मेरा अपराध नहीं है, ये बुड्ढा व्यर्थ में झगड़ा कर रहा है।
2: तेजा सिंह ये सुनते ही आगे बढ़ा और अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतार कर शिवपाल सिंह से बोला,
3: ठाकुर साहब ये अंगूठी 1 तोले की है, आपके रुपए इससे निकल आवेंगे, आप यह अंगूठी ले जाइए, इस अंगूठी पर मेरे बापू का कोई अधिकार नहीं, यह अंगूठी मुझे मेरे नानी ने दी थी।
2: सब लोग लड़के की बात सुनकर दंग हो गए। ये देखकर तेजा सिंह के पिता ने आगे बढ़कर कहा,
4: ठाकुर साहब लीजिए ये 25 रुपए और अब इस पेड़ को छोड़ दीजिए, आप अभी कह चुके हैं कि रुपए मिल जाएं तो पेड़ छोड़ देंगे, अपने वचन का पालन कीजिए, पेड़ छोड़ दीजिए।
2: ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ गया, उन्हें विश्वास हो गया था कि अब मनोहर सिंह को रुपए मिलना असंभव है।

0: इसी से उन्होंने केवल अपनी उदारता दिखाने के लिए रुपए लेना स्वीकार किया था। अब वो कुछ न कह सके, कारण कि उन्होंने 25-30 आदमियों के सामने रुपए लेना स्वीकार कर लिया था। वो रुपए लेकर चुपचाप चले गए। ठाकुर साहब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा सिंह को बुलाकर छाती से लगाया और कहा,
1: तेजा बेटा, इस पेड़ को तूने ही बचाया, मैं तुझी को ये पेड़ देता हूं। मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पीछे तू इस पेड़ की पूरी रक्षा कर सकेगा। भाइयों, मैं तुम सबके सामने ये पेड़ तेजा सिंह को देता हूं। तेजा को छोड़कर इस पर किसी का कोई अधिकार न रहेगा। पर मेरे जीते जी कोई पेड़ में हाथ नहीं लगा सकता था, अपनी और उसकी जान एक कर देता। मैंने फौज में नौकरी की है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं, ये बेचारे हैं क्या चीज।
2: अशिक्षित का हृदय। अभी आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। लेखक थे विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह जी श्याम, तेजा सिंह सोहिल पात्रीकर, तेजा सिंह के पिता दीपक केसावलेकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
3: अभी हम सुन रहे थे कहानी अशिक्षित का हृदय, इसका दूसरा भाग। और इस कहानी को लेकर हमारे श्रोताओं को भी इंतजार था, क्योंकि ये दूसरा भाग था। एक श्रोता का ने जो संदेश लिखकर भेजा है कि अशिक्षित का हृदय, जब मैं पहली बार इस कहानी को मैंने सुना तो मैं भावुक हो गई, और आज इसके दूसरी और अंतिम भाग का बहुत बेसब्री से इंतजार है, और ये बहुत भावुक कर देने वाली प्यारी कहानी है, तो इनका इंतजार आज पूरा हो गया।
4: बिल्कुल। और इसी तरह एक और हमारे सखी ने लिख भेजा है कि एक तो जी श्याम जी की दमदार आवाज, ऊपर से जयंत जी का बेहतरीन अभिनय, तो उन्हें कहानी बहुत ही सुंदर लगी। बेशक हमें भी कहानी बहुत अच्छी लगी, और जब कहानी सुनते हैं तो उनकी जो कहानी में जो पात्र चल रहे हैं और कहानी किस चीज के इर्द गिर्द घूम रही है, हम भी खो जाते हैं, है ना चंचल।
3: और कई बार जो चित्रण है बिल्कुल हमारे सामने होता है, वो जो नीम का पेड़ है, जो उस का व्यक्ति का दर्द है जिसका पेड़ काटा जा रहा है, वो सब चीजें, और एक इंसान जो बहुत सख्त है तो उसका चेहरा छवि कैसी होगी, ये हम अपनी कल्पनाओं में कहीं ना कहीं एक छवि बना लेते हैं।
4: बिल्कुल।
3: और इसी तरह से स्तनपान की जब हम बात कर रहे थे, इस पर भी एक बड़ा सुंदर संदेश आया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि एक व्यक्ति पैदा होने के बाद से ही सीखना प्रारंभ कर देता है, शिशु अवस्था में से ही वो पास में खपलता, पास रखी चीजों को छूने की पकड़ने की कोशिश करता है। ये इन्होंने सीखने को लेकर बातें लिखी हैं, जो हमारा अगला विषय होने
4: विषय है वो है। और एक संदेश इसके जो स्तनपान के बारे में है, एक संदेश आया है हमारे एक सखा लिखते हैं कि दूध को आधा भोजन भी कहा जाता है, क्योंकि शिशु के लिए तो वो सर्वोपरि है, और माँ के दूध का सेवन क्योंकि उसमें मिलने वाला पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल शुरुआत के दिनों में सर्वाधिक हुआ करता है।
3: और यही बात करते करते जब मेरी नजर गई घड़ी पर तो पता लगा कि अंतराल का वक्त हो गया है।
4: तो चलिए

विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और अंतराल के बाद हम वापस आ गए हैं, लेकिन अब सुनते हैं एक प्यारा सा और बहुत मीठा सा गीत।

0: जाने क्या क्या बना, और इसी तरह से हम जाने क्या क्या सीखते भी हैं।
1: बिल्कुल, बचपन से लेके आज तक का कभी लिस्ट लेके बैठे ना तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी
0: क्या क्या
1: कि क्या
0: सीखा
1: क्या
0: है।
1: सीखा, क्या क्या चीज सीख के छोड़ दी और क्या क्या चीजों की सीखने की अभी भी इच्छाएं बाकी हैं।
0: बिल्कुल, लेकिन ये बात तय है कि नया कुछ ना कुछ सीखते रहना ही चाहिए, तो हमारे जो कहते हैं ना कि मस्तिष्क का विकास भी बढ़ते रहता है। कई बार लगता है ना कि अरे बहुत सीख लिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको जहाँ से कुछ भी सीखने का मौका मिले वो सीख लीजिए, ना ये सोचना है कि अरे ये हमसे छोटा है, ये हमें क्या सिखाएगा।
1: सही बात
0: कई
1: है,
0: बार छोटों से भी सीखने मिल जाता है हमें, है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: सही कहा। और कई बार ऐसा जो सोचा नहीं हो वहां से भी सीखने मिल जाता है।
0: बिल्कुल, दिमाग को चुस्त दुरुस्त अगर बनाए रखना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि सीखते रहें। और बहुत सारी जो रिसर्च होती है ना इन चीज़ों को
1: जी
0: लेकर, वो भी ये बताती हैं कि कोई भी नई चीज़ या नया शौक जब हम सीखते हैं तो ये हमारी याददाश्त को भी मजबूत बनाने के लिए बहुत मददगार होता है, और इसके बहुत सारे फायदे भी हमें हो सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम अपने रोज के कामों की सूची बनाएं तो पाएंगे कि उसमें कुछ नया नहीं है, बल्कि हम रोजाना एक जैसा काम करके ही अपना दिन व्यतीत करते रहते हैं। दरअसल अपनी जो बिजी शेड्यूल है, यानी व्यस्तता है या भाग दौड़ भरी जीवन शैली है, इसके चलते कई नई चीजें सीखने के लिए समय निकालना कुछ हद तक एक चुनौतीपूर्ण काम भी हो जाता है। चंचल,
0: ये तो
1: है
0: आप
1: ना।
0: बहुत सही कह रही हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं कि भाई हमें इतना ही करना है, यही करना है, और उसे छोड़कर कुछ भी नई चीज़ वो आजमाना ही नहीं चाहते, नया सीखना भी नहीं चाहते, और नए सीखने वो क्या करते हैं, टाल देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन नया सीखने के बारे में क्या फ़ायदे होते हैं ये जब उनको पता लगेगा तो उनको भी लगेगा कि भाई जो रूटीन की चीज़ें हैं उनसे बंध कर हम अपने दिमाग या शरीर को थोड़ा सा नुकसान तो पहुंचा रहे हैं। इसीलिए टालमटोल, जब वो जानेंगे ना फायदे, तो टालमटोल करना छोड़ेंगे और नया सीखने की मुमकिन कोशिश भी जरूर करेंगे।
1: बिल्कुल, टालमटोल से याद आया कि हम ये जानते हैं कि ये सारी बातें, लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि हमने हाल ही में एक नया सीखने का मजा कब उठाया था। अगर ये सोचें, और बहुत पहले या फिर कभी नहीं, या ये भी कुछ हद तक संभव है कि

0: हम ये भूल भी चुके हों कि कुछ नया सीखने का हमने आनंद लिया या इसका
1: हाँ,
0: आनंद होता क्या है,
1: बिल्कुल
0: ये भी
1: बिल्कुल
0: कभी कभी हम भूल जाते हैं। और सच मानिए, ये अनुभव हमारे यानी बड़ों के लिए भी ठीक वैसा ही होगा जैसे किसी बच्चे को किसी एक चॉकलेट के स्टोर पे, दुकान पे ले जाएं जहाँ पे
1: हाँ
0: इस तरह की कैंडीज वगैरह खूब मिलती हैं, या कोई पसंदीदा खिलौने को पा करके जैसे उसे खुशी मिलती है ना, शायद वैसी खुशी वैसा आनंद हम बड़े हम लोगों को भी आए।
1: और दीपा, विज्ञान भी यही कहता है कि जब कोई नया अनुभव हमारे दिमाग को ऐसी खुराक देता है तो वो चीज़ हमारे मूड को बहुत बेहतर बनाती है और तनाव को भी दूर करती है, यानी कि तनाव छू मंतर। और नया सीखकर हम संपूर्णता और गर्व भी महसूस करते हैं। साथ ही दूसरा काम जो कोई नहीं कर सकता वो भी हमें आ जाता है, और हमारा आत्मविश्वास, हमारे निर्णय लेने की क्षमता, इन चीज़ों में भी विकास होता है।
0: बिल्कुल। और जब नया सीखते हैं तो देखो खुशी की एक बात ही अलग होती है, वो दिन सारा दिन एकदम ऊर्जा में हमारा बीतता है। और जब हम ये नया सीखने की शुरुआत करेंगे तो पहले से ज्यादा समय मिलेगा हमें, सुनने में अजीब जरूर लगेगा
1: हाँ
0: लेकिन ये सही है। दरअसल में हम जब अपने रूटीन से हटकर कुछ करते हैं और अपनी रोजाना या जो अपना जो साप्ताहिक सारणी होती है ना, एक टाइम
1: हाँ
0: वीकली टाइम टेबल कह लीजिए उसे, उसमें कुछ नया जोड़ते हैं तो होता ये है कि हम अपना पूरा जो शेड्यूल है वो बदल देते हैं और उसी समय में से थोड़ा समय इसके लिए हम निकाल लेते हैं।
1: बिल्कुल, जहाँ एक बार लगता है ना कि नहीं हमें तो समय ही नहीं मिलता, हम कहाँ से समय निकालें, लेकिन वो चीज़ जब हमें रुचि देने लगती है और मज़ा आने लगता है उसमें, तो हमारा जो पूरा शेड्यूल है या टाइम टेबल है उसे हम बदल देते हैं और फिर वहीं उस चीज़ के लिए वक्त मिल जाता है। तो क्या इरादा है, गाना सुन के आगे बढ़े?
0: बिल्कुल उसी का वक्त हो रहा है।

0: आए हैं दूर से, यानी कि संदेश बड़ी दूर दूर से आए हैं भाई हमारे श्रोताओं के, और बड़ी दूर दूर से जो श्रोता बैठे सुन रहे हैं उन्हीं के संदेश हम पढ़कर सुनाते हैं। नया सीखने को लेकर हम जो बातें कर रहे थे, इसके लिए हमारे श्रोता कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान का सागर इतना विशाल है कि जितना सीखें उतना ही एहसास होता है कि अभी और गहरे उतरना है, कुछ और सीखना बाकी है। हर इंसान, हर अनुभव, हर यात्रा, हर चुनौती हमें कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाती है। समय लगातार बदल रहा है, नई तकनीक, नए विचार, नए तरीके हमारे सामने हर दिन आते रहते हैं। यदि हम सीखने के लिए तैयार रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए जीवन में कभी भी ये मत सोचिए कि अब सब कुछ सीख लिया है। जिज्ञासा को जीवित रखिए, प्रश्न पूछिए, अनुभवों से सीखिए और नए दिन का स्वागत हमेशा एक विद्यार्थी की तरह कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात लिखी है
1: बिल्कुल।
0: और अंत में लिखते हैं कि जो सीखना नहीं छोड़ता वो कभी भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। ये बहुत सही बात है, जो सीखेगा वही आगे भी बढ़ेगा और नए नए अनुभव भी उन्हीं को मिलेंगे जो
1: बिल्कुल
0: नया सीख रहे हैं।
1: और ऊर्जा में भी रहते हैं, खुश रहते हैं हमेशा, जो हमेशा निरंतर नया सीखना चाहते हैं। एक संदेश और आया है, ये कहता है कि नया सीखने के लिए तैयारी जरूरी है, खासकर आजकल के मोबाइल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर युग के साथ चलना अत्यंत जरूरी होता जा रहा है। बच्चे लोग तो इस टेक्नोलॉजी को आसानी से सीख लेते हैं, वही मेरे जैसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए उतनी आसानी रहती नहीं है। फिर भी इस बदलते युग के साथ कदम मिलाना भी जरूरी है। विविध भारती के इस मंच पे से सखी सहेली कई सारी नई नई जानकारियां अक्सर मिलती रहती है उनसे, जो हम जैसे लोगों के लिए एक सहारा सा बन गया है। तो देखिए, ये परिवार ही ऐसा है, हम सब एक दूसरे का सहारा है और जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां, बाहर क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम और आप मिलकर यही कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को शिक्षित करते रहें और जानकारी से भरते रहें।
0: इसी तरह से दीपा, जब हम प्रांतीय व्यंजन लेते हैं तो कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, कोई बंगाल में है, तो हर प्रांत के व्यंजन अलग होते हैं। यहाँ बैठकर हमने ये कोशिश भी शुरू की है कि प्रांतीय व्यंजन जब हम ले रहे हैं तो एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक किस तरह से मसालों का बदलाव होता है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों का बदलाव करके एक व्यंजन को किस तरह से नया बना दिया जाता है।
1: बिल्कुल, चीजें तो वही होती हैं, चीजें वही होती है, लेकिन हम अपने घर में ही अगर सुन लिया है कहीं पे कार्यक्रम के दौरान कि भाई आज तो पश्चिम बंगाल की कोई चीज को हम कोई व्यंजन को सीख रहे हैं, तो हमारे घर में क्या क्या वो चीज है और हम कुछ ऐसे उसमें क्या चेंजेस करके एक नई कुछ रेसिपी हम बना सकते हैं।
0: तो सीखने के लिए तैयार रहने पर अगला संदेश मैं पढ़कर सुना रही हूँ आपको भी और हमारे सभी अन्य सुनने वाले।
1: चलिए।
0: बहता हुआ पानी साफ सुथरा और गतिमान होता है, मंजिल तक पहुंच जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में अंत तक हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। नया करने की चाह जीवन को उत्साह से भर देती है। आजकल मैं नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए छोटे छोटे से स्वेटर बना रही हूँ, इन्हें मैंने YouTube पर देखकर सीखा है और कुछ नए स्टाइल से पैटर्न बनाना था तो थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हुई, लेकिन अब तक वो करीब करीब आधा बनने तक आ गया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और एक ना एक दिन ये पूरा भी हो जाएगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं और बिल्कुल हमें ये विश्वास है कि आप इसे ज़रूर पूरा कर लेंगी और जब ये पूरा होगा तो आपको खुशी होगी तो होगी, जिनके लिए आपने बनाया है
1: उन्हें भी खुशी होगी। और आप संदेश के द्वारा जरूर बताइएगा कि जो आप स्वेटर बना रही हैं वो पूरा हो चुका है
0: जी,
1: है ना। एक और संदेश आया है, ये कहता है कि आदमी पैदा होने के बाद से सीखना प्रारंभ कर देता है, शिशु अवस्था में ही वो अपने पास रखी चीजों को छूने के लिए या उसे पकड़ने की कोशिश करता है और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी सीखने की ललक बढ़ती जाती है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ते वक्त वो तरह तरह के विचारों और व्याख्यानों को से बहुत कुछ सीखता है और पुस्तकों में जो अलग अलग बातें लिखी होती हैं उनसे सीखता है, प्रयोगशाला में अलग अलग आजमाते हैं, वो प्रयोग करते हैं, उनका प्रभाव जानता है। शादी ब्याह के बाद पत्नी के साथ जीवन जीने की कला सीखता है, लोगों को प्यार करना और सम्मान देना भी सीखता है। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन आदमी के जीवन में जारी रहती है।
0: इसी तरह से एक संदेश में छोटी सी है लेकिन बड़ी काम की बात है कि कोई भी नया सीखने में शर्म नहीं करनी चाहिए
1: जी।
0: नए काम बच्चे की तरह सिखा दिए जाते हैं, एक दूसरे प्रदेश के व्यंजन को भी बनाना सीखना चाहिए। यही बात अभी हम भी कर रहे थे, तो व्यंजन बनाना सीखेंगे लेकिन पहले गाना तो सुन लें।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: 4 औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक कुछ नया सीखने की बात कर रहे थे हम, है ना? तो लगातार एक जैसे रूटीन की से कभी कभी ये तनाव का कारण भी बन जाता है। तो शोधकर्ता कहते हैं कि एक अध्ययन में पाया गया कि उबाऊ जीवन जीने वाले को दिल के दौरे का 2 गुना ज्यादा जोखिम होता है। और वहीं चिकित्सक ये मानते हैं कि अपनी दिनचर्या को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम रोज एक ही तरह का काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां उसकी आदी हो जाती है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है या कम हो सकती है। दूसरी ओर जब हम कुछ

0: नया सीखते हैं या करते हैं तो अपने व्यक्तित्व को संवरने और निखरने का मौका देते हैं और जीवन के कई क्षेत्रों में खुद को अपडेट भी करते हैं, इसलिए नया तो सीखते रहना चाहिए।
1: जब तुमने बात की खुद को अपडेट करने की, तो मोबाइल ऐसी चीज है जो खुद को अपने आप अपडेट करता रहता है। हम देखते हैं कि जब नया वर्जन आता है किसी भी ऐप का या मोबाइल का, तो वो उसे अपडेट करता रहता है। वहीं जो पुराने जमाने के जो लोग हैं जिनके हाथ में छोटा सा फोन हुआ करता था, अब वो भी अपने आप को अपडेट करके एंड्रॉयड फोन चलाना सीख रहे हैं। तो एक संदेश आया है कि अब हम चलाना सीख रहे हैं एंड्रॉयड फोन, और आप सभी प्यारी सहेलियों से भी हम जुड़ते जा रहे हैं और ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो भाई, जिन्हें इस फोन को कई बार लेके हवा लगता था कि भाई इसमें इतनी सारी चीजें हैं और हाथ लगाते ही तो कुछ भी इसमें शुरू हो जाता है क्योंकि इसमें टच स्क्रीन होती है, तो वो लोग भी इसे चलाना सीख रहे हैं और इसके साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार अपना बना रहे हैं।
0: बिल्कुल। और ये देखिए, ये अब कार्यक्रम में जितने संदेश आ रहे हैं ये अपने आप ही उस चीज का उदाहरण है कि कितने सारे लोग ये जो नई चीजें हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उसे सीखते चले जा रहे हैं।
1: तो अभी झालमुरी जिन्होंने खाई है, बनाई है, वो भी हमें संदेश भेज रहे हैं। इसीलिए हमारे एक श्रोता का संदेश है कि झालमुरी हमने धनबाद में खाई थी। जब छुट्टियों में हम मामा के घर जाते थे तो शाम को इसे जरूर खाते थे।
0: क्या बात है। और एक हमारी श्रोता सखी लिखती है कि झाल का मतलब होता है मसालेदार और तीखा, और मुड़ी का मतलब होता है मुरमुरा, यानी कि कुरमुरा या परमल, अलग अलग जगह पे इस तरह से बोलते हैं। जब मुरमुरे में उबले चने, उबले आलू, बारीक कटे प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, हरा धनिया, तली हुई चने की दाल और मिक्सर में कच्चा, उसको मिलाने के लिए कच्चे सरसों का तेल या अचार के सरसों का तेल डालकर बनाया जाता है, तो उसे झाल मुरी कहते हैं। और उड़ीसा में जब इसे बनाते हैं तो इसमें आमा हल्दी, जिसे कच्चे आम का स्वाद होता है, जिसमें वो भी डालते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़िया हो जाता है।
1: हमारे श्रोता ने पूरी की पूरी इसके व्यंजन की विधि बनाकर बताई है हमें। तो इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो है मुरमुरे, यानी कि आधार सामग्री जो है इसकी, वो 2 से 3 कप लेनी है। सब्जियां बारीक कटी हुई लेनी, जिसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, खीरा, उबले हुए आलू और हरी मिर्च। तो अपने स्वाद या अपनी ज़रूरत के अनुसार आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। और कुछ क्रंची यानी कुरकुरी चीज़ें लेनी है, उसमें भुनी हुई मूँगफली, जो चना होता है जिसे हम चना जोर गर्म भी कहते हैं, वो लेना है, थोड़े से सेव लेने हैं या कोई भी मिक्स नमकीन आप ले सकते हैं, और कच्चा सरसों का तेल लेना है क्योंकि यही इसकी खास स्वाद की पहचान होती है, थोड़ा सा नींबू का रस लेना है और आम का अचार भी, जो मसाला है
0: उसका जो मसाला है
1: वो लेना है। इसे बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में जो सारी सामग्री, यानी कि मुरमुरे और कटी हुई सब्जियां, उबले आलू, मूंगफली, नमकीन, सेवे, सभी चीजें डाल दीजिए। ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल, नींबू का रस, अचार का मसाला और थोड़ा सा नमक अपने स्वाद अनुसार डालकर इसे मिला लेना है और झालमुरी बनकर तैयार है। और हमारे पास अब एक गाना भी तैयार है।

0: एक संदेश कहता है,
1: हाँ
0: आप कुछ कहना चाह रही हैं?
1: भाई हाँ, एक संदेश ये कहता है कि झालपुरी को बेलपुरी की सगी बहन कह सकते हैं।
0: अच्छा, हमने जो संदेश चुना है वो ये कहता है कि झालमुड़ी हमारे बिहार में खाते हैं, जिसे भुजा बोलते हैं, उसमें उबले आलू नहीं डाले जाते, चार भुने अनाज यानी चना, मूंगफली, मटर, मटका ये डाले जाते हैं, और सरसों के तेल और कुछ अचार के मसालों के साथ ये बिहार का बेहद लोकप्रिय स्नैक्स है।
1: तो भाई अब ये जो टाइम है ये स्नैक्स का भी हो गया है और कार्यक्रम का भी समय पूरा हो चला है, तो इसके बाद टी टाइम में किसको क्या स्नैक्स खाने हैं वो सब अपनी पसंद से चुन सकते हैं। लेकिन फिलहाल लेते हैं विदा चंचल वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी का।
1: नमस्कार सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेहतनामा।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष को और आज आंखों के बारे में बहुत विस्तार से हम बात करने वाले हैं और साथ में इन बातों के बीच होंगे कुछ दिलचस्प गाने। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष का।
3: नमस्कार।
2: नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर और रेडियो का स्टूडियो दो अलग अलग जगह।

0: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार पहले भी आपके स्टूडियोज में चर्च गेट पे गया था,
1: जी जी
0: काफी साल पहले, वो लाइव रिकॉर्डिंग थी। लेकिन जो आपका यहाँ का स्टूडियो है और जो आपने मुझे चीजें जहाँ पे बताई हैं, गजब है। ऐसे लगता है कि एक पुराने जमाने में हम गए हैं, गुजरे हैं। जो आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पे आके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आर्टिस्ट जो हमने अपने मुझे सब बताए, मैं सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ शायद कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद, मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है।
1: जी
0: तो अगर मैं ऐसी जगह पे सिर्फ आ जाऊं और
1: जी
0: देखूं तो भी काफी है। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी शुभ चीज मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
1: क्या बात है
0: शुक्रिया एक बार
1: जी
0: और।
1: डॉक्टर साहब, ये जो आपने
0: जी
1: कहा कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कई बार जब आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है तो लोगों के चश्मे उतर जाते हैं,
0: जी
1: ये मोतियाबिंद क्या है, कैसे होता है और किस उम्र में मिनिमम ये आजकल देखा जा रहा है?
0: तो मोतियाबिंद जो है, जो आपके आंख के अंदर, जैसे हमने पहले बात की कॉर्निया की, जो सामने की
1: जी
0: कांच की,
1: जी
0: उसके पीछे जो रहता है अपनी पुतली रहती है, जो आप काला, ब्राउन, ब्लू जो भी दिखते हैं, उसके
1: जी
0: पीछे लेंस रहती है। हाँ, जो भिंग रहता है आंख का, जो पारदर्शक रहता है, जिसके वजह से हमको दिखाई देता है। तो आंख में देखने के लिए सिस्टम जो है वो तीन चार चीजें हैं। सामने की कांच है, उसके बाद हमारी लेंस है,
1: जी
0: उसके बाद पीछे का पर्दा है
1: जी
0: जिसको रेटिना कहते हैं, और उसके बाद ऑप्टिक नर्व है जो नस
1: जी
0: है। जब ये सब संक्रमण बराबर चलता है तो जो रोशनी रहती है दिमाग तक बिल्कुल सही जाती है।
1: बिल्कुल
0: तो हमने कॉर्निया की बात कर ली, ग्लॉकोमा की भी हमने आपको बता
1: जी
0: दिया। अब ये जो है, जो लेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पारदर्शक होता है और ये ज्यादातर जिंदगी भर पारदर्शक रहता है। लेकिन जब ये सफेद होता है, जैसे अपने बाल सफेद होते हैं,
1: जी
0: सेम प्रक्रिया है। तो पहले कम उम्र में जो नए फाइबर्स आते हैं, क्योंकि बॉडी में नए सेल्स, नए फाइबर्स तो नॉन स्टॉप चलते रहते हैं
1: जी
0: जब
1: जी
0: तक कि अपनी जिंदगी है। तो जो नए फाइबर्स आते हैं वो क्लियर यानी पारदर्शक की जगह ओपेक आते हैं, सफेद आते हैं या भूरे आते हैं। तो उसके वजह से लाइट जो है वो पीछे के पर्दे तक नहीं जा रहा और दिमाग को नहीं दिखाई दे रहा
1: जी
0: है। एक
1: जी
0: सिंपल चीज है, आपके घर में एक खिड़की है, उसके अंदर एक आप थोड़ा हल्का मट्टी डालिए, रंग डालिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके आपको दूर की चीजें दिखाई देना बंद हो जाएगी। मोतियाबिंद में ऐसे ही होता है।
1: जी
0: मोतियाबिंद कोई भी उम्र में हो सकता है, बच्चों में भी हम देखते हैं, जिसको कंजेनाइटल ग्लॉकोमा कहते हैं, जो
1: अच्छा
0: पैदाशी होता है, बहुत कम रहता है लेकिन होता है। उसको भी ऑपरेशन होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है जिसको डेवलपमेंटल ग्लॉकोमा बोलते हैं, कि बचपन में उसका एक कण रहता है लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ता है, 25-30 साल में आ जाता है।
1: जी
0: सभी के लिए अभी ऑपरेशन है और सभी के अच्छे उसके
1: और ये
0: रिजल्ट
1: सभी
0: आते हैं,
1: जांच में पता चल जाता है
0: जांच में
1: कि
0: पता
1: हो
0: चल
1: रहा
0: जा
1: है।
0: जा ज्यादातर जो होता है वो एज रिलेटेड रहता है, उम्र की वजह से होता है। जो ज्यादातर पहले जमाने में 70-80 के बाद दिखाई देता था, आजकल काफी जल्दी दिखाई दे रहा है। 40, 45, 50 में भी कैटरैक्स हमको दिखाई दे रहे
1: इसकी क्या वजह हो सकती है?
0: हैं। आई थिंक ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो
1: अच्छा
0: आया है हमारे आंख के सामने, जो पहले नहीं था, ये जो आया है मेरे हिसाब से, तो और कोई कारण मैं सोच नहीं सकता। हाँ, दूसरे कारण, कोई इंजरी हो तो जल्दी हो सकता है, कोई मार लग
1: जी
0: जाए किसी को,
1: जी
0: या डायबिटीज में जल्दी आता है। लेकिन अगर आप ऑलमोस्ट 90% जो है उनको ये सब चीजें नहीं रहती है, और 80% तो जो 80% हैं जो नॉर्मल, जो जिनको और कोई बीमारी नहीं है, उनमें उम्र के वजह से ही आता है। तो धीरे धीरे करके दूर की दृष्टि कम होती है, फिर नजदीक का भी कम होता है। तो उसके अंदर काफी टाइम पेशेंट को पता भी नहीं चलता, क्योंकि अपने आंख पुतली तो अपनी 2.5-3 मिलीमीटर की है, पीछे की लेंस ऑलमोस्ट 8 मिलीमीटर की है। तो मोतिया अगर साइड से शुरू हो जाए और बीच में आने शुरू हो जाए, जब तक के बीच के दृष्टि में नहीं आता, पेशेंट को पता नहीं चलता। या तो काफी मोतिया रहते हैं जो बीच में ही शुरू होते हैं और वहां से फैलते हैं, तो काफी अलग अलग टाइप के हैं। चेकिंग में पता चल जाता है अगर अब पेशेंट की आंख की रोशनी ठीक हो और चश्मे से अगर उनको सुधार हो जाए, तो हम लोग कहते हैं चश्मा यूज करो, आप 6 महीने 1 साल में आके चेकअप करा लो। या तो, क्योंकि कह नहीं सकते कि कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा,
1: जी
0: काफी टाइम हमने पेशेंट देखे हैं जो 1-2 साल बाद आए हैं और उतना ही है, और काफी टाइम तो 6 महीने में वापस आ जाएंगे कि अभी मुझे दिखाई नहीं दिखाई, मोतिया बढ़ गया है।
1: जी
0: तो इसका कारण कहना, जैसे कहने मेरे कितने बाल कब जल्दी सफेद होंगे मुझे नहीं पता, तो वैसे ही होता है। और अभी तो ऑपरेशन सरल है, 10-15 मिनट के हैं, ऑपरेशन करके लेंस डाली जाती है, वो परमानेंट रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, वो किसी भी
1: जी
0: उम्र में कर सकते हैं।
1: तो ये पक्का नहीं है कि एक बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद दोबारा नहीं होगा?
0: पक्का है,
1: जी
0: दोबारा नहीं होगा, एक ही टाइम कर सकते हैं।

0: एक चीज जो होती है, जो यहाँ पे हम लोग लेंस डालते हैं उसके पीछे नए सेल्स तैयार होते हैं काफी टाइम जल्दी, काफी टाइम का सालों बाद, बिकॉज अपने बॉडी में नए सेल्स आ रहे हैं, जिसको हम लोग जो लेंस बिठाते हैं उसको पोस्टीरियर कैप्सूल, पीछे के कैप्सूल पे हम लोग लेंस बिठाते हैं, उसका ओपेसिफिकेशन होता है, उसको आफ्टर कैटरैक्ट कहते हैं, लेकिन वो मोतिया नहीं रहता, वो नए सेल्स रहते हैं लेकिन वो क्लीन नहीं रहते, तो उसकी वजह से आंख की रोशनी थोड़ी कम होती है। उसके लिए हम लोग लेजर से उसको 30 सेकंड में क्लियर कर देते हैं, कोई ऑपरेशन की वगैरह जरूरत नहीं रहती
1: जी, जी।
0: लेकिन अगर आपके किसी के आंख का मोतिया का ऑपरेशन हो जाए तो दोबारा तो जिंदगी में या तो फिर बाबा किसी को कहीं दुर्भाग्य से कहीं दुर्घटना हो जाए और फिर वो लेंस निकालने पड़े या चेंज करने पड़े या कोई इन्फेक्शन हो जाए, दूसरी चीज हो, वरना तो
1: पूरी जिंदगी
0: 99% पेशेंट में तो पूरी जिंदगी वही लेंस चलती है किसी भी उम्र में। अभी जैसे मैंने कहा मुझे 35 साल हो गए, अभी ये हफ्ते मैंने एक पेशेंट देखी, मेरे दोस्त की मदर इन लॉ, जो आई थिंक 98 या 99 में मैंने ऑपरेशन किया था, शी इज 91 ईयर्स ऑफ एज, अब इतने साल हो गए, शी इज फाइन, दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। तो वॉट मोर कैन यू से, अभी ऑपरेशन होके भी 30 साल हो गए बट शी इज ओके,
1: जी
0: शी इज 91 ईयर्स हो गया, 91 ईयर्स हो गए उनकी उम्र है उनकी और उनको अच्छा दिखाई दे रहा है, तो लेंस तो अच्छी चली रही है ना।
1: जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब इसमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, ये जो मोतिया होता है इसको एक समय तक बढ़ने के बाद ही ऑपरेशन होता है?
0: बहुत अच्छा सवाल। पहले जमाने में हम लोग को रुकने पड़ता था,
1: अच्छा
0: मोतिया जब तक के पूरा पकता नहीं था हम लोग उसको हाथ नहीं लगाते थे।
1: आजकल ऐसा नहीं है?
0: आजकल ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि मोतिया कोई भी स्टेज पे उसको आप उसका ऑपरेशन करके कर सकते हैं।
1: पर नेसेसरी कब है उसका ऑपरेशन?
0: नेसेसरी पेशेंट को पता चलता है कम दिखाई दे रहा है।
1: जी
0: पेशेंट को पता चल जाता है कि कम दिखाई दे रहा है। अच्छा काफी टाइम पेशेंट ये भी कहते हैं नहीं नहीं चलने दो चलने दो, स्पेशली जो बुजुर्ग रहते हैं, लेकिन मैं उनसे फिर कहता हूं कि इतना भी नहीं रुकना कि आपकी आंख की रोशनी बंद हो जाए। दो चीजें होती हैं कि मोतिया जब पक जाता है तो बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो ऑपरेशन के टाइम भी हमको टाइम लगता है, रिजल्ट्स भी काफी टाइम, सामने की कीकी में सूजन आने के चांसेस है, क्योंकि हम जो यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं फेको इमल्सिफिकेशन, मोतिया तोड़ने के लिए वो पावर यूज कर रहे हैं आंख के अंदर, उसको तोड़ के
1: तो
0: निकाल के उसको साफ करने के लिए, तो उसका प्रेशर की वजह से। और मैं ऑलवेज कहता हूं आपकी आंखों की उम्र आपकी उम्र की तरह, हम सब चाहते हैं हमारी आंखें 18 हो, लेकिन नहीं, अगर आप 60 साल के तो आपकी आंखें भी 60 साल की है, तो इट हैज ऑल्सो एज्ड। तो अगर मोतिया हो और आपके आंख के दृष्टि में आपको तकलीफ हो रही हो तो कोई भी स्टेज पे आप ऑपरेट करा सकते हैं। अभी सर्जरीज बहुत ही सरल हो गए हैं और रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है, आजकल काला चश्मा वगैरह भी निकल गया, टाके वगैरह तो है नहीं इस ऑपरेशन में, 1.8 या 2 मिलीमीटर की इंसिजन रहती है, तो कुछ रिकवरी बहुत फास्ट होता है। पेशेंट को हम तो कहते हैं पहले दिन से आप आंख खोल के सब देखो, जितना जल्दी आप देखोगे उतनी जल्दी आपकी आंख ठीक हो जाएगी, ड्रॉप्स डालने। जैसे दूसरी बात भी है, पहले अगर आपका पैर फ्रैक्चर होता तो प्लास्टर में लगा देते थे, 6 हफ्ते टांग ऊपर करके, अभी कौन करता है? ऑपरेशन करके आपको बोलेंगे हफ्ते 10-15 दिन में आप चलने शुरू कीजिए।
1: जी जी।
0: आंख का भी वही है कि आप जितने जल्दी उसका इस्तेमाल करेंगे, हम कर क्यों रहे हैं ऑपरेशन आपका, आपको दृष्टि देने के लिए,
1: करेक्ट।
0: और उसके बाद भी अगर आप बोलेंगे नहीं मैं काला चश्मा पहन के बैठूंगा, मैं बाहर नहीं देखूंगा, टीवी नहीं देखूंगा, तो फिर आपको ही तकलीफ होनी है ना।
1: एक बात बताइए डॉक्टर साहब कि जो लोग ज्यादा अवेयर नहीं है, जिनके मोतिया का पता देर से चलता है या नहीं चलता और वो उसी तरह से कैरी ऑन करते चले जाते हैं, तो ये पुराना मोतिया किस तरह बिगड़ सकता है और आंखों को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है?
0: देखिए जब ये मोतिया जो है ना एक हद तक ही आंख में झेल सकता है
1: जी,
0: क्योंकि क्या होता है वो एक पके हुए फल की तरह, पका हुआ फल पेड़ से क्यों गिरता है, क्योंकि आजू बाजू से वो मॉइस्चर, उसका जो कवरिंग रहता है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं
1: जी,
0: वो मॉइस्चर बाहर का जो वातावरण रहता है वहां से पानी खींचता है और वो गिर जाता है, सही, अगर आप उसने तोड़ेंगे नहीं तो।
1: बिल्कुल।
0: आंख में वही होता है कि अगर एक हद के बाद अगर आपने वो नहीं किया, जिसको हम लोग हाइपर मैच्योर यानी नॉर्मल से भी आगे निकल गई है केस, मैच्योर का ट्रैक तो मैच्योर हो गया
1: जी, बिल्कुल
0: हाइपर मैच्योर हो गया, ज्यादा बुजुर्ग हो गया
1: जी,
0: तो वहां पे क्या होता है कि यही होता है कि जो लेंस की जो कवरिंग है वो धीरे धीरे करके पिघलने चालू होती है, आंख का जो बीच में का पानी है वो अंदर जाता है और वो फूल जाता है। अगर हम कहें कि पेड़ पे से तो फल नीचे गिर सकता है, आंख में कहां गिरेगा, आंख में जगह कहां है,
1: बिल्कुल,
0: तो अगर आंख में फट गया तो आंख का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा
1: जी,
0: आंख के अंदर बम फोड़ दिया आपने, क्या होगा आंख का, इमरजेंसी में ऑपरेशन करने पड़ती है,

0: उसके बाद भी दृष्टि आएगी नहीं आएगी, कि जैसे हमने पहले कहा, अगर पीछे की नस, मेन चीज पीछे की नस है, प्रेशर ज्यादा हो गया, आप पत्थर रख दो आपके हाथ के ऊपर, कब तक सहलेगा?
1: जी
0: उसके बाद बड़ा वाला पत्थर रखो तो वो पीछे की नस खत्म हो गई, तो गई दृष्टि, फिर ऑपरेशन करने के बाद भी नहीं आएगी। तो
1: जी
0: सही टाइम पे इसका, कोई भी बीमारी में सही टाइम पे इलाज करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक जरूरी बात की तरफ अब मुड़ते हैं और वो है नेत्रदान।
0: जी
1: हम सभी को नेत्रदान के लिए एक फॉर्म भरना होता है।
0: जी
1: किसी की मृत्यु हो जाती है तो कितने देर तक आंखें दान की जा सकती हैं और कैसे कहां जल्दी से संपर्क करके प्रोसेस किया जाए?
0: जी बहुत जरूरी है,
1: जी
0: सिर्फ नेत्रदान नहीं, अगर बाकी के भी जो भी ऑर्गन्स अगर काम कर रहे हैं तो काफी लोगों को जिंदगी दे सकते हैं।
1: जी जी
0: नेत्रदान में एक बात समझनी जरूरी है कि आंख का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है। नेत्रदान में पूरा आंख नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ सामने की कांच जो कॉर्निया है

0: के भी जो भी ऑर्गन्स अगर काम कर रहे हैं तो काफी लोगों को जिंदगी दे सकते हैं।
1: जी
0: नेत्रदान में एक बात समझनी जरूरी है कि आंख का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है। नेत्रदान में पूरा आंख नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ सामने की कांच जो कॉर्निया है वो इस्तेमाल होती है। तो एक किसको फायदा होगा?
1: जी
0: जिन लोगों की आंख की दृष्टि अगर कम हो गई है सामने की कांच की किसी बीमारी के वजह से या दुर्घटना के वजह से या किसी और कारण वजह से, तो उनमें ही ये काम आएगा नेत्रदान जो हम करते हैं। और वो बहुत लोग हैं जिनको फायदा हमने देखा हुआ है वो ऑपरेशन करके। काफी सेंटर्स हैं आजकल, तो ऑनलाइन आप आपके नजदीक में जो भी हो आप सिर्फ डाल दो, गूगल कर दो, तो आपको वो आके जितने जल्दी करें वो आप टाइम तो रहेगा, आप बोलो 10 घंटे 12 घंटे, सवाल वो नहीं है। अगर सामने की कांच सूख गई, इसलिए आंख बंद कर देते हैं ना
1: जी
0: आंख
1: जी
0: देहांत होने के बाद, तो भी वो तो आंसू की प्रक्रिया तो बंद हो जाएगी, और सामने की कांच अगर सूख गई तो गई। तो जितने जल्द हो सके, अगर आप पूछे तो टेक्निकली आवर्स बियर्स में बात करना कोई अर्थ ही नहीं है।
1: जी
0: जितने जल्द हो सके कांटेक्ट करने नियरेस्ट आई बैंक को, 24 आवर्स चालू रहते हैं वो, सभी जगह पे हैं, तो तुरंत आके वो लेके जाते हैं। और तुरंत वेटिंग लिस्ट बहुत होती है, तो इमीडिएटली उसका ऑपरेशन हो जाता है, और आपके वजह से किसी ना किसी को आपकी दृष्टि आ सकती है।
1: जी वही मैं उसी बात पर आना चाहता था कि
0: जी
1: ये एक छोटा सा कदम
0: जी
1: किस तरह से लोगों का भला कर सकता है, क्योंकि कई लोग अवेयर नहीं होते और नेत्रदान की जो प्रक्रिया है वो उतनी फास्ट नहीं है हमारे देश में,
0: सही
1: लोग
0: है,
1: उस तरह से इस बारे में सोचते नहीं है।
0: नहीं बहुत जरूरी है करना, क्योंकि अगर जितने जल्द करेंगे, मैं भी जानता हूं कोई किसी का देहांत हो तो ये काफी टाइम तो ये सोचा भी नहीं जाता, क्योंकि
1: जी
0: सबको दुख रहता है, पता नहीं क्या सिचुएशन में किसी की मृत्यु हो गई है। लेकिन अगर पहले से कुछ सोचा गया है कि किसी को करना है, या किसी ने कहा है कि मेरे जाने के बाद आप मेरे नेत्र दान करो या मेरे शरीर के बाकी ऑर्गन्स का दान करो, तो उनकी इच्छा सोच के अगर एटलीस्ट फैमिली के एक मेंबर ने अगर इनिशिएटिव ले ले तो बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। आप सोच भी नहीं सकते कितना फर्क पड़ेगा, कितनों को फर्क पड़ेगा। अगर किसी इंसान की दोनों आंखें खराब हो गई, एक आंख से भी दृष्टि दे तो जिंदगी निकल जाती है ना।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: एक हाथ एक पैर निकल जाए तो भी चलता है, लेकिन दृष्टि निकल जाए तो आप सोचिए कितनी
1: जी
0: दिक्कत होती है।
1: जी तो
0: उनके
1: इससे
0: लिए
1: बहुत
0: भी
1: लोगों की मदद हो सकती है।
0: बहुत लोगों की मदद हो सकती है, लाखों की।
1: जी डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं,
0: जी
1: आंखों में किस तरह की स्पोर्ट्स इंजरी आप देखते हैं, छोटे बच्चों से लेकर फिर आगे बढ़ती उम्र तक?
0: ये नॉर्मल है, आई
1: जी
0: मीन कोई भी इंजरी हो, हम आजकल नया नाम आ गया है स्पोर्ट्स इंजरी,
1: जी
0: लेकिन कोई भी इंजरी आंख के लिए इंजुरियस है। क्रिकेट बॉल हो, कुछ भी हो, हमारे टाइम गिल्ली डंडा हुआ करता था विच वॉज परफेक्ट, जो आंख में जाके बैठ जाता था, अभी है नहीं।
1: जी जी
0: लेकिन क्रिकेट बॉल हो, कोई भी, इवन अ स्मॉल प्लास्टिक बॉल हमने देखा हुआ है वो खेलते टाइम, घर में खेलते टाइम, टेबल टेनिस खेलते टाइम। प्रॉब्लम यह है कि आंख में कहां पे लगे और कैसे लगे, ये बहुत जरूरी है। काफी टाइम हमने बड़े बड़े इंजुरीज देखे हैं लेकिन आंख बच गई है,
1: जी
0: काफी टाइम हमने एकदम छोटी सी इंजरी देखी और आंख में भयानक चीज हो गई है। तुरंत किसी को बताना बहुत जरूरी हो
1: जी
0: कि आंख में अगर किसी को लग जाए तो तुरंत चेकअप, कहीं भी नजदीक अस्पताल सभी जगह तुरंत जाके जांच करवा लीजिए, उसको डिले ना करना,
1: क्योंकि ये कुछ भी खतरनाक हो सकता
0: बहुत
1: है।
0: खतरनाक होता है। और एक और इंजरीज हम बहुत देखते हैं, इंडस्ट्रियल इंजरीज। ये बॉम्बे में
1: जी
0: तो स्पेशली जो भी लेट से जहां पे ये
1: फैक्ट्रियां हैं
0: फैक्ट्रियां हैं या छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी हैं जहां पे ग्राइंडर का काम करते हैं, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, उसके
1: जी
0: आंख में वो छींटे उड़ जाते हैं ग्राइंडर के,
1: जी
0: वो ग्राइंडर पे करते टाइम वो मेटल के छींटे उड़ते हैं। मैं 1000 टाइम उनसे कहता हूं आप कोई प्रोटेक्टिव ग्लास यूज कीजिए, ₹50 का आता है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन वो
1: बिल्कुल
0: हमारा सेट नहीं देता, सेट नहीं देगा। अपने देश में लाइफ इज वेरी चीप, सेट नहीं देगा। आप ₹50, आप जाके कहीं पे भी ₹50 उड़ा देते हो, आंख के लिए एक प्रोटेक्टिव
1: खुद
0: ग्लास
1: नहीं
0: यूज
1: कर
0: करो।
1: सकते
0: और
1: लोग।
0: एक और चीज मैं देखता हूं कि ज्यादातर होते कि ये मैं अभी तक समझा नहीं हूं कि कोई वेल्डिंग कर रहा है, आपने देखा रहेगा वो गॉगल पहनता है, उसके बाजू में एक बंदा खड़ा रहता है बगैर गॉगल के उसको देखते हुए
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने
0: ज्यादातर
1: ये।
0: उसकी आंखों में उड़ता है
1: हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स
0: बिकॉज ही इज थिंकिंग मैं काम नहीं कर रहा तो मेरे आंख में नहीं उड़ेगा।
1: हाँ हाँ
0: तो
1: बिल्कुल
0: ये कहीं पे भी वेल्डिंग इंजरीज बहुत ज्यादा है, एंड पीपल हैव
1: जी
0: लॉस्ट देयर आईज। तो बहुत, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग के प्रोटेक्टिव ग्लासेस, सेफ्टी अपने देश में अभी तक ये कंसेप्ट
1: छोटे बड़े वर्कशॉप ये इंडस्ट्रीज यहाँ कोई सेफ्टी मेजर्स आंखों के खास तौर
0: आंखों के वो रखना बहुत अभी तो एटलीस्ट हम देखते हैं कि हेलमेट्स आ गए हैं
1: जी।

0: बाकी चीजें आ रही हैं, लेकिन आंखों के बारे में बहुत कम मैं देखता हूं कोई सेफ्टी गॉगल्स पहन के काम कर रहा है। न कारपेंटर्स काम करते हैं, न इलेक्ट्रिशियंस काम करते हैं, न ग्राइंडर्स काम करते हैं, कोई सेफ्टी गॉगल्स यूज नहीं करता।
1: जी
0: ₹50 का मिल जाता है, हाउ मच इज इट?
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब आपने गॉगल की बात की तो मैं उस सवाल पर भी आना चाहता हूं कि ये जो रोड साइड तरह तरह के चश्मे मिलते हैं करामाती, ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं फैशन के चक्कर में? जो
0: नहीं, फैशन है उसके आगे गया है, टोपी खरीद लो ऐसी, उसी को खरीदो,
1: लेकिन ये आंखों को नुकसान पहुंचा सकते
0: हैं? ना ना ना, नो नो नो, नहीं, वो दैट इज, वो कलर ग्लासेस है
1: जी,
0: प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस नहीं है। देखिए, जब हम नंबर देते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस होते हैं, वो आप कहीं से भी खरीदो तो प्रॉब्लम है गलत वाले
1: जी।
0: ये जो रोड साइड वाले हैं, इट्स लाइक बाइंग अ हैट ऑन द साइड ऑफ द, आप टोपी खरीद रहे हो उसके साथ आप एक पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का आप खरीद लो, फैशन के लिए है
1: जी जी,
0: कोई पूरे दिन पहन के घूमने नहीं वाला है, गया है पिकनिक के लिए तो दे विल वेयर इट फॉर दैट टाइम एंड इट विल बी डिस्कार्डेड, उसके आगे कुछ नहीं। उसके वजह से कोई नुकसान तो नहीं होगा, वो फैशन है, उसके आगे कुछ नहीं है
1: जी। बिल्कुल। इंडस्ट्रियल इंजरी की स्थिति में क्या ऐसा हुआ है कि कोई मरीज पहुंचने में पहुंचाने में देर कर दी गई हो और उसके लिए वो घातक हो गया?
0: हाँ, काफी टाइम होता है, काफी टाइम होता है। आंखों में जितने जल्दी आप उसकी ट्रीट, सपोज लेट्स कहिए कि किसी को आंख में इंजरी हो गई और सामने की कांच फट गई या उसके अंदर कुछ चले गया, ये बहुत जो घातक इंजरी होती है आंख की, जो मार लगता है, जितने जल्दी उसको क्लीन करके उसका ऑपरेशन हो आंख बचा सकते हैं। अगर थोड़ी भी देर हो जाए, एक दिन निकल जाए, तो कुछ नहीं कर सकते और इतना बुरा लगता है कि यार इसकी आंख हम बचा सकते थे
1: जी,
0: लेकिन अभी बहुत लेट हो गया। उसके बाद फिर सारे डायलॉग सुनाई देते हैं कि ये करना चाहिए था, वो करने चाहिए था, हमने इतना खर्चा किया लेकिन आंख तो चली गई। कोई आके बताता नहीं है कि आप टाइम पे पहुंचे नहीं वहां पे, कि आपने तुरंत ये नहीं करना था, आप कोई जाके केमिस्ट से कोई दवाई लेके डाल दी आंख में, दो तीन दिन तक आपने वैसे, ठीक है मजबूरी भी होगी, मैं ना नहीं कह रहा हूं, सबकी गलती नहीं रहती, कहीं पहुंच नहीं सकते या पैसे का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन सभी जगह तो चिकित्सालय है, मुफ्त भी है ना अपने देश में तो।
1: बिल्कुल, जल्दी से मेडिकल हेल्प लेनी
0: लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहां एक गाना सुनते हैं जरूर से जुड़ा हुआ और उसके बाद आगे की बात करते हैं।

डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम में हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं और बारिश के मौसम से जुड़ी हुई आंखों की एक समस्या है, आंखों का आना। ये क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है?

0: ये इसका क्या उपाय है?
1: जी, ये ज्यादातर जिसको हम लोग कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, या कंजंक्टिवाइटिस है ना, हमने जो कंजंक्टिवा है, जो आंख के साइड के जो एरिया है उसके अंदर सूजन आना,
0: जी
1: तो टिपिकल बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो हम सबको बचपन में हुई है, आजकल दिखाई नहीं देती। जैसे वो होता था कि आंख में से बहुत कीचड़ आ रहा है, सूजन
0: जी
1: आ रही
0: जी
1: है,
0: जी
1: आजकल ज्यादातर बंबई में कंजंक्टिवाइटिस पूरे साल में रहता है।
0: जी जी
1: ये एनवायरमेंटल हो गया है,
0: हाँ
1: और वायरल टाइप ज्यादा आता है, जो आंख लाल आती है, सीजन चेंज होता है जिसको,
0: तब होता है
1: तब वहां आता है। एलर्जीज भी बहुत आ गए हैं।
0: क्या? ये जो लगातार रीडेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज की वजह से जो डस्ट उड़ती है
1: सबसे
0: उसका भी
1: ज्यादा,
0: आंखों को नुकसान?
1: सबसे ज्यादा,
0: ओहो,
1: सबसे ज्यादा। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। एक आदत हम सब में हमने देखी है, हम आंख खोल के पानी मारते हैं।
0: हाँ,
1: मेहरबानी करके बंद कीजिए।
0: ओहो,
1: अपने आंसू और बाहर का पानी एक नहीं है, अपने आंसू और गंगा जल भी एक नहीं है। अपने आंसू एक दवाई है जो प्रकृति ने अपने आंखों को स्वच्छ रखने के लिए रख दी है, अपने आंखों को निरोगी रखने के लिए दिए। इसके अंदर एंटीमाइक्रोबियल्स रहते हैं आंख के अंदर, और वो अपने आंख को प्रोटेक्शन देता है। अपने आंसू सबसे ज्यादा कीमती चीज है।
0: जी
1: तो हर टाइम जब हमारी आंख खोल के, जैसे हमने अब कंप्यूटर विजुअल के बारे में, हम आंख खोल के बंद करते हैं, ये अपना एक वाइपर है जो अपनी
0: जी
1: आंख को साफ कर रहा है। तो
0: जी
1: जब कभी हम दवाई डालते हैं तो अपने नाक से हलक में आती है, बाहर से तो नहीं आती।
0: जी
1: तो हर टाइम जब भी हम आंख झपकते हैं तो एक नया आंख का पर्दा तैयार हो रहा है, आंख अपने आप से साफ कर रहे हैं। आप पानी क्यों मार रहे हैं? पानी मारने में क्या होता है, कोई गर्म पानी तो नहीं मारेगा,
0: हाँ,
1: ठंडा पानी मारेगा,
0: और वो तेज तेज
1: तेज
0: चीते।
1: मारेगा। उसके वजह से क्या होगा, आपने भी किया होगा, आपकी आंख में और जलन होगी और आंसू बाहर आएंगे। जलन क्यों होती है? क्योंकि जो सामने की जो आंसू का पर्दा है वो टूट गया, सामने की कांच पे जाके पानी लग गया है, तो दिमाग को बहुत तकलीफ हो गया
0: तो
1: है,
0: ये किसी भी परिस्थिति में आंखों के
1: किसी
0: ऊपर?
1: भी परिस्थिति में। हाँ, और गर्म आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि दिमाग गर्म आंसू भेज रहा है ठंडा बाहर फेंकने के लिए। तकलीफ हो रही है
0: जी जी जी
1: आंख
0: जी
1: को पानी
0: जी
1: मारने में। आंख में कचरा जाए और पानी मारे तो ठीक है, लेकिन वो कचरा वो पानी की वजह से नहीं निकलता, जो ज्यादा आंसू तैयार होते हैं वो उसको बहा देते हैं।
0: जी
1: जब हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आंख में से थोड़ा सा मैल निकलता है।
0: जी
1: अब आप सोचिए, सभी लोग स्वच्छ वातावरण में सो रहे हैं, शहरों में पंखा है, एसी है, धूल नहीं है, घर के अंदर तो नहीं है, बाहर है लेकिन अंदर नहीं है, फिर सुबह क्यों मैल आनी चाहिए? हम रास्ते पे चल रहे, थोड़ी मैल आ रही है आंख में से। क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो अपने आंसू का प्रभाव 70% से कम हो जाता है,
0: जी
1: इसीलिए सुबह थोड़ी मैल निकलती है जमा हुई,
0: दिन में नहीं
1: दिन में
0: निकलती।
1: नहीं निकलती, उल्टा होनी चाहिए ना। आप धूल में चल रहे हैं तो आपको तभी होनी चाहिए।
0: जी
1: तो मेन चीज मैं सारे पेशेंट्स को कहता हूं, मेरे आंख को अकेले छोड़िए, आंख को तकलीफ नहीं देना, आंख आपको
0: हाँ,
1: उससे भी ज्यादा तकलीफ देगी। जितना
0: ओके,
1: हो दवाई अवॉइड कीजिए,
0: हाँ,
1: जरूरत हो तो जरूर दवाई डालिए। काफी पेशेंट, नहीं, आंख लाल हो गई है, वायरल है, देख लेते हैं। हम नेचुरली इसको फाइट करेंगे, मत कीजिए आंखों में, प्लीज मत कीजिए, क्योंकि आंखों में कहीं इन्फेक्शन बैठ गया तो
0: जी
1: लेने के देने पड़ जाएंगे,
0: तुरंत डॉक्टर के पास
1: तुरंत
0: जाइए।
1: जाइए। लेकिन बाकी जो है, जो आजकल जैसे मैंने कहा है, जो 500 PhD जो कह रहे हैं कि आप में आप ये डालिए वो डालिए,
0: हाँ
1: ये सुरमा डालिए वो डालिए, जितना हो आंख को अकेले छोड़िए। अगर
0: जी
1: आपको लेडीज आईलाइनर यूज करती हैं, पहले काजल यूज किया जाता था, अंदर से लगाते थे, वो बहुत जलता था।
0: जी जी
1: हमारे माओ ने सबको किया, हम छोटे थे
0: हाँ,
1: तभी।
0: लड़कों को
1: हाँ,
0: भी
1: लड़कों को भी, हमको भी हुआ है, और
0: जलता
1: बहुत जलता था, मुझे याद है। आईलाइनर आ गए हैं जो काफी
0: जी
1: सेफ है लेडीज के
0: जी
1: लिए,
0: जी
1: जो बाहर से लगते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन,
0: यस
1: वहां पे लगा दिए। जितना हो आंख को अकेले छोड़िए,
0: हाँ
1: ये सबसे मेरी विनती है, जितना हो अपने आंख को अकेले छोड़िए।
0: जी
1: हाँ, भगवान ने बहुत प्रोटेक्शन दिया है आंख को।
0: जी
1: सोचिए, आपके खुद के आंख में आप उंगली डाल सकते हैं?
0: नहीं
1: क्यों? नाक में तो डाल सकते हैं, कान में, मुंह में डाल सकते हैं, हाँ, आंख में क्यों नहीं डाल सकते आप?
0: क्योंकि सबसे नाजुक पार्ट
1: सबसे
0: है।
1: नाजुक चीज है। बहुत
0: जी
1: बढ़िया, सबसे नाजुक चीज है, उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है। आप सोचिए, आपके खुद के आंख के अंदर आप उंगली नहीं डाल सकते।
0: जी
1: हाँ, आपको अगर पागलपन करना हो, आपको इंजरी करना हो तो दूसरी बात है, नॉर्मल कोई भी अपनी आंख के अंदर उंगली डाल नहीं सकता।
0: जी
1: वेरी सिंपल,
0: जी
1: सो लीव योर आइज अलोन, अकेले छोड़िए।
0: बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि आंखों में पानी के छींटे नहीं डालने चाहिए। मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग ये करते आए हैं
1: जी,
0: और
1: और
0: ये
1: मुझसे
0: हमें
1: कहा
0: पता नहीं
1: गया है
0: था कि ये
1: कि
0: खतरनाक।
1: योग में ये करते हैं। मैं, आई टोल्ड हिम, आपको अगर थकावट हो रही है आंख बंद करके ठंडे

0: पानी मारी है,
1: इफेक्ट वही है।
2: हाँ,
1: अब रुमाल ठंडे पानी में डाल के आंख के ऊपर रखिए, इफेक्ट वही है।
2: लेकिन खुली आंखों के ऊपर,
1: खुली आंखों की वजह से नहीं। हाँ, और वो क्या करते हैं, अब वो स्पा में जाइए कागड़ी रखते हैं, सेम चीज है क्या, आंख बंद कर रहे हैं, जब आंख बंद करेंगे तो ये सिस्टम बंद हो रही है, आंख को आराम आ रहा है
2: जी।
1: काकड़ी ठंडी रखेंगे, कोई गरम नहीं रखेंगे, कांदा तो कोई रखता नहीं है, ठंडी वाली रखेंगे।
2: सही है।
1: तो ठंडा क्या होता है, तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं ना
2: जी,
1: जब ठंड होता है, जैसे स्पोर्ट्स इंजरी की बात कर रहे थे, पहली चीज क्या लगाते हैं, बर्फ लगाते हैं ना
2: जी,
1: गरम थोड़ी लगाते हैं, वहां पे हॉट वाटर बैग नहीं लगाएंगे ना, आपको लग गया
2: तो
1: गिर गए तो पहला खेलते टाइम तो पहला बर्फ लगाएंगे ना
2: जी।
1: बर्फ क्यों लगाते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स को हम कंस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ना
2: जी, जी
1: उसको हम कम करना चाहते हैं। सेम चीज है आंख के लिए, आप आंख बंद रख के कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंह धोते टाइम नहाते टाइम थोड़ा जाता है, वो तो नॉर्मल है
2: जी।
1: ओके, नहाते टाइम तो हम आंख बंद करते हैं लेकिन थोड़ा तो पानी जाएगा ही, वो तो ठीक है। इसलिए तो आंख शावर के बाहर आने के बाद आंख लाल होती है, क्यों हो रही है?
2: बिल्कुल, क्योंकि वो पानी
1: सेम पानी आंख को अकेले छोड़िए, बेस्ट ट्रीटमेंट
2: जी। बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई है। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, खामोशी फिल्म का गाना, हमने देखी है इन आंखों की बहती खुशबू, गुलजार साहब का गाना जी। है।

0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी जरूरी बातें हमने की। चूंकि ये जमाना जो है ये आधुनिकता का जमाना है, बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां इन दिनों में देखी जा रही हैं। आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस कौन सी हैं जिनकी आप चर्चा करना चाहेंगे?
1: आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस बहुत कम है
0: जी,
1: और अनफॉर्चुनेटली वो डायग्नोज भी नहीं होती। काफी टाइम ट्यूमर्स रहते हैं, आंख के अंदर भी ट्यूमर्स रहते हैं, या पीछे की पर्दे की अलग अलग बीमारियां रहती है, पैदाइशी बीमारियां रहती है पीछे के पर्दे की। एक बीमारी है जिसको हम लोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। आपके लास्ट AIR में एक लिसनर ने मुझे फोन करके पूछा भी था, जिसके वजह से पीछे के पर्दे को जो खून आता है वो खून पेशियां सूख जाती है।
0: ओके,
1: तो वो जो है और वो प्रोग्रेसिव है, बचपन में शुरू हो जाती है और काफी टाइम पेशेंट 25-30 तक अंधे भी हो सकते हैं, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता। तो ऐसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ये है, तो काफी रेयर डिजीज है। लेकिन एक चीज हमारे कन्वर्सेशन में रह गया, वो बहुत बहुत जरूरी आजकल के जमाने में, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं।
0: जी जी हाँ, उसका जिक्र हुआ था और हाँ, उसकी बात करनी जरूरी
1: वो बहुत, बिकॉज रेयर तो ठीक है
0: जी,
1: ये कॉमन, मेरे हिसाब से रेयर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेटिनोपैथी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज बहुत बढ़ रहा है, मधुमेह बहुत बढ़ रहा है अपने देश में। आई थिंक वी आर द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज का।
0: जी, जी।
1: एक और कारण होगा, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी है
0: जी,
1: तो ऑब्वियसली उतने ज्यादा लोग होंगे। तो डायबिटीज, अभी आप भी सभी जानते हैं कि डायबिटीज की वजह से क्या क्या बीमारियां होती है। सरल मैं आपको बता देता हूं, आंखों में डायबिटीज में मोतिया जल्दी आ सकता है, ग्लोकोमा काजबिंदु में बढ़ावत हो सकती है, और सबसे खतरनाक है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी क्या? रेटिना यानी अपना पर्दा, पर्दे में आने वाली सूजन। तो हमारे बॉडी में लाखों अनगिनत करोड़ों सेल्स हैं
0: जी,
1: ये सेल्स जो हैं वो हमारे बिल्कुल जैसे एक दीवार में जो ईंटें रहती हैं और उसके बीच में सीमेंट रहता है, वैसे ये सेल्स हैं। तो जब कभी अपने बॉडी में डायबिटीज, बीमारी क्या है, हम कहते हैं डायबिटीज शुगर बढ़ने की बीमारी है, डायबिटीज बॉडी में

0: गोली आई नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो उनको इंसुलिन लेना पड़ता है उसको संतुलित में लाने के लिए। अच्छा ठीक है, मेरी शुगर बढ़ रही है, क्या फर्क पड़ता है मुझे, बढ़ने दो। प्रॉब्लम क्या होता है कि अपना शरीर जो है उसका प्रोसेसिंग एक लेवल है, जैसे हमने देखा है अभी बहुत बारिश गिर गई तो क्या हो गया, बांध के ऊपर से पानी आ गया
1: जी,
0: ठीक है। अपना बॉडी का भी एक बांध है जिसको रीनल या किडनी का थ्रेशोल्ड कहते हैं। जैसे एक पानी बढ़ता है तो हम छोड़ देते हैं उसको पानी, अपने बॉडी में 180 या 200 के ऊपर शुगर जब होती है तो बॉडी उसको पेशाब में से निकाल देती है
1: जी।
0: इसीलिए पेशेंट का पेशाब चेक किया जाता है डायबिटीज का।
1: हाँ,
0: पेशेंट पूछते हैं हमको खून की बीमारी या पेशाब क्यों चेक कर रहे हैं, सही है, लेकिन ये इसकी वजह से चेकिंग होता है क्योंकि वहां से वो निकलते जाता है। तो इसलिए आप देखें डायबिटिक्स में यूरिन +2 +3 आती है हाई डायबिटिक्स में
1: जी।
0: अच्छा पेशाब से निकल जाए अच्छा है ना, बाहर निकल रहा है तो क्या, नहीं नॉन डायबिटिक्स में तो नहीं जा रहा, डायबिटिक्स में जा रहा है तो इसके लिए डायबिटिक्स को किडनीज की बीमारी ज्यादा होती है
1: जी जी
0: ठीक है। इंसुलिन जो है वो हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा रहेगा आपके कोई रिलेटिव का कोई बड़ा सर्जरी हो गया, वो ही और शी वाज वो डायबिटिक है, उनको इंसुलिन पे रखा जाता है थोड़े दिन तक, फिर बाद में टैबलेट्स पे वापस लाते हैं। क्यों लाते हैं, क्योंकि बॉडी के हीलिंग के लिए इंसुलिन सब जरूरी है
1: जी जी
0: ओके। आंखों में क्या होता है, आंखों में पीछे के पर्दे में बहुत बहुत ज्यादा सेल्स है
1: जी
0: ठीक है। वो सेल्स के बीच में का, अभी सिंपल चीज है, बॉम्बे में एक शब्द सबको पता है, ये शायद अपने देश में सभी में भी हुआ, मतलब मुंबई में एक शब्द सबको पता है, लीकेज, सभी के घर में लीकेज है
1: जी,
0: बड़े बड़े टावर से लेके झुग्गी झोपड़ी में सबके घर में बारिश जब होती है या तो किसी कारणवश ऊपर वाले के यहां से लीकेज आता है
1: जी जी।
0: ये लीकेज जो रहता है आंखों में किस चीज का लीकेज होगा, डायबिटीज में क्या होता है कि ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी जो सेल्स के बाहर का एरिया एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया वो इंट्रा सेलुलर शिफ्ट करता है। जब शुगर नॉर्मल होती है तो ये दोबारा वापस जाता है ठीक है, लेकिन जब तक कि ये यहां हो ये तकलीफ देने वाला है। ऑलराइट, तो आंखों में सेल्स जो है उसके बीच में का सीमेंट जो है वो निकल जाता है। अभी आपके घर में पानी की पाइपलाइन जा रही है, अगर आपका सीमेंट पुखर जाए तो आपको पानी का लीकेज होगा, आंखों में खून पेशी जा रही है तो लीकेज किस चीज का, ब्लड निकल आता है
1: जी।
0: तो ब्लड के छींटे आते हैं पीछे के पर्दे में, उसकी वजह से पीछे के नस में सूजन आती है जिसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और जो सेंट्रल एरिया मैक्यूला जहां पे लाइट जाके लगता है और जहां से दिमाग तक जाता है वो एरिया में एक भी खून पेशी नहीं है। वरना हमको सारी खून अभी तो दिखाई नहीं देता ना, कुछ भी क्लियर दिखता है क्योंकि वहां कुछ कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो एरिया में खून पेशियां आए या खून आए और सूजन आए तो आंख की दृष्टि तो कम हो ही है आपकी
1: बिल्कुल,
0: और ज्यादा कहीं खून पेशी फट जाए जिसको हम लोग विट्रियस हेमरेज कहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर ऑपरेशन इंजेक्शन ये सब चीजें होती है। और 8 या 10 साल जिसका भी डायबिटीज जिनको है आंख का चेकअप कराना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पता नहीं चलता। हमारे पास पेशेंट आते हैं जब आंख में पीछे में ऑलरेडी खून जमा हो गया है
1: जी,
0: उनको पता है सडनली आंख में एक दिन रोशनी कम होती है, चेकअप के लिए आते हैं देखते हैं कि खून आ गया है, पूछते हैं शुगर कितना है, सर 300 350 चल रहा है, तो शुगर जो है आपको कुछ भी करो लेकिन खाना खाने के बाद 200 के नीचे रखो और रेगुलर चेकअप करना। आजकल हमारा बाकी भी चेकअप्स है जो आपको 3 महीने का ये सब आपको देते हैं वो लोग, लेकिन चेकअप करना बहुत जरूरी है डायबिटिक्स को। शुगर कंट्रोल, डायबिटीज सबसे खतरनाक बीमारी है सर
1: जी,
0: डायबिटीज की दो ही चीजें है, या तो आपके साथ ऊपर जाती है आपको ऊपर लेके जाती है, तीसरा नहीं है
1: जी।
0: डायबिटीज ब्लड प्रेशर ये शरीर की कमजोरियां हैं, ये सर्दी बुखार नहीं है कि आप क्रोसिन लो डोलो लो एंटीबायोटिक लो चले जाने वाली है,
1: इनके साथ सावधानी से जीना पड़ता है,
0: इनको कंट्रोल करना पड़ता है
1: जी,
0: ये क्योर नहीं होती अनफॉर्चुनेटली
1: बिल्कुल।

0: डॉक्टर साहब, ये हमने डायबिटीज की बात की, आपने कहा कि ये एक बहुत जरूरी मुद्दा था जो एक जीवन शैली से जुड़ी समस्या बन गई है। डायबिटीज में असर आंखों पर सीधे पड़ता ही पड़ता है। कुछ और समस्याएं जिनकी अब यहां पर बात की जाए।
1: जी, ब्लड प्रेशर है उसमें से एक।
0: हाँ,
1: हमारे आंखों में सबसे ज्यादा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है।
0: जी,
1: ब्लड प्रेशर में भी वही होता है। अगर ब्लड प्रेशर, सपोज आपका बीपी बढ़ते जाएगा तो क्या हो सकता है? दिमाग में नस फट सकती है, स्ट्रोक होता है आदमी को, अर्धांग हो सकता है या तो गुजर सकता है। तो आंखों में भी काफी टाइम, अगर आंख के जो अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर बढ़े, कि शरीर का ही हिस्सा है। देखिए, आंखों को बहुत ही बचाया गया है। देयर इज समथिंग जो हम लोग, एक ब्लड ब्रेन बैरियर भी है और ब्लड रेटिनल बैरियर भी है।
0: जी जी,
1: तो दिमाग अपने को बचाएगा, और क्योंकि रेटिना दिमाग का हिस्सा है, वो अपने को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक हद के बाद वो बचा नहीं सकता। तो वहां पे जो है ब्लड प्रेशर भी बहुत प्रॉब्लम देता है। तो आंखों में काफी टाइम जो पीछे की नस फटने का जो है, पीछे के पर्दे में, वो जो मैंने

0: आपका डायबिटिक के वजह से विट्रियस हेमरेज होता है वो होता है। तो ये चीजें जो है, हाँ एक और चीज जो लोगों को दे, काफी टाइम पेशेंट हमको कहते हैं कि हमारे आंख के सामने कुछ घूम रहा है, काले डॉट दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग फ्लोटर्स कहते हैं। ये बहुत कॉमन है, ये
1: जी
0: थकावट के बाद आपको भी दिखाई देंगे, अगर ये लाइट देखो और व्हाइट बैकग्राउंड देखो आपको दिखाई
1: तो
0: देंगे, सभी में
1: दिखेगा
0: है।
1: जी जी
0: फ्लोटर्स आर नॉर्मल, ये अभी हम कहते हैं, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे देखेंगे तो नीचे जाएगा, ओके। लेकिन अगर ये फ्लोटर्स ज्यादा आ जाए, बड़े साइज के होने चालू हो, ये छोटे वाले रहते हैं जैसे मच्छर मक्खी की तरह दिखते रहते हैं, लेकिन अगर वो मोटे दिखाई दे, गोल दिखाई दे, काले दिखाई दे, लाल दिखाई दे, तो तुरंत आंख के डॉक्टर को आपको बताना है। इसका ये मतलब है कि दो चीजें, या तो कहीं पे खून आ गया है, या पर्दे में, या विट्रियस में, पीछे के जली में, या तो काफी लोग कहते हैं कि हमको आंख में ऐसे लगता है कि जैसे कोई बिजली चमक रही है एक साइड से। ये बिजली क्यों चमकती है? क्योंकि जो पीछे का पर्दा है, जैसे मैंने कहा, वो आंख का हिस्सा नहीं, वो आंखें वहां पे चिपका हुआ है, तो जहां पे वो चिपका है काफी टाइम, वहां से वो सटक भी सकता है, जिसको
1: ओके,
0: रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं।
1: ये प्रेशर की वजह से होता है।
0: काफी चीजों की वजह से होता है, स्पॉन्टेनियस भी होता है।
1: अच्छा
0: स्पॉन्टेनियस हार्ट अटैक आता है ना आदमी को,
1: जी
0: सेम चीज है, डिटैचमेंट भी
1: जी
0: स्पॉन्टेनियस हो सकती है
1: जी
0: अनफॉर्चुनेटली,
1: जी जी
0: और पीछे का पर्दा सरक जाए तो दिस इज वेरी डेंजरस, तुरंत ऑपरेशन करने पड़ता है उसको दोबारा बिठाने के लिए। अब उसका भी कितना एक्सटेंट है, उसके भी बहुत टाइप्स है, लेकिन कितने उसका भाग निकल गया है, नहीं निकल गया है, ये सब चीज में जितना जल्दी करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा, किसी की उंगली कट जाए, अब जितने जल्दी जाके जोड़ो उतने जल्दी वो नॉर्मल हो ना हो, लेकिन रहेगा तो।
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: बिल्कुल
0: अगर किसी ने कटी हुई उंगली लेके आप एक दिन या दो दिन घूम लो, तो क्या होने वाला है? वो
1: बाकायदा उसमें तो फिर नुकसान होना
0: जान ही
1: शुरू
0: नहीं
1: हो
0: आएगा
1: जाता
0: ना,
1: है।
0: उसमें
1: जी
0: जान निकल
1: जी
0: जाती है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे बुजुर्गों में हमने ये देखा है कि उनको नियमित रूप से आंखों में डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए बोलते हैं। वो कौन सी बीमारी है जिस पे
0: ये
1: ये सब होता
0: डायबिटिक
1: है?
0: रेटिनोपैथी में होता है एक,
1: जी
0: जिसके अंदर अगर पीछे के पर्दे में सूजन हो। एक और चीज है बुजुर्गों में, जिसको हम लोग एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन कहते हैं।
1: ये क्या होता है?
0: मैक्युला जो मेन एरिया है, सेंट्रल एरिया जहां पे लाइट जाता है,
1: जी
0: उसको और हिंदी में शब्द है ही नहीं, उसको मैक्युला ही कहते हैं
1: जी
0: अनफॉर्चुनेटली, या तो मुझे पता नहीं है। एज रिलेटेड हम सब समझते हैं, उम्र के वजह से मैक्युला में डिजेनरेशन, यानी वो कमजोर हो जाता है। उसके
1: जी
0: दो टाइप है, एक जिसको ड्राई कहते हैं, सूखा हुआ, या वेट, गीला हुआ।
1: अच्छा
0: हाँ, ज्यादातर उम्र के वजह से, क्योंकि जैसे अपने बॉडी का कोई भी हिस्सा झिरने चालू होता है, नीज खराब हो जाती हैं, हिप हो जाता है, हार्ट हो जाता है, तो वैसे ही वो जो भाग है वो धीरे धीरे करके उसकी ताकत उसकी निकल जाती है। तो ऑब्वियसली जो लाइट वहां पे जा रहा है, वहां से दिमाग तक नहीं पहुंच रहा, तो उसके लिए दवाइयां हैं आजकल जो हम लोग गोलियां जो देते हैं, लेकिन काफी टाइम क्या होता है कि वो इतना झिर जाता है कि उसके अंदर पीछे सूजन या पानी आने चालू होता है, जिसको हम लोग वेट टाइप कहते हैं। तो उसके लिए ये पिछले 10 सालों में ही आए हैं, इंजेक्शन आए हैं, काफी अच्छे हैं, जिससे वो सूजन कम की जा सकती है।
1: जी
0: उसके लिए पहले स्कैन करते हैं हम लोग, जिसको ओसीटी कहते हैं, इट्स लाइक अ सीटी स्कैन ऑफ द आई, तो उसके वजह से पता चलता है कि कितनी सूजन है।
1: इसके
0: ये
1: लक्षण क्या होते हैं इस सूजन के?
0: लक्षण कम दिखाई देता है,
1: अच्छा
0: और कोई नहीं,
1: जी
0: कम दिखाई देता है। तो रेगुलर चेकअप्स के लिए जब बुजुर्ग आते हैं, तो पीछे का पर्दे का तो जांच तो हम लोग करते ही हैं। अगर पता चला कि बाबा ये ARMD है उनको,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ड्राई वेट टाइप देखने में तो पता चलता है, लेकिन उसका कंक्लूजन रहता है अगर हमने वो स्कैन करें तो स्कैन करने को, बिकॉज वो स्कैन इट्स लिटरली लाइक अ सीटी स्कैन ऑफ द रेटिना, तो
1: जी
0: हमको बराबर वो स्लाइसिस, उसका बराबर शेप दिखाई देता है, वहां पे सूजन दिखाई देती है, तो उसके मुताबिक फिर जो हमारे रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं वो डिसाइड करते हैं कि इनको इंजेक्शन से वो सूजन कम करें। गोलियां काम नहीं करती वहां पे इतनी अनफॉर्चुनेटली, या ड्रॉप्स हम लोग देते हैं, लेकिन इंजेक्शन जो वहां पे आंख में इंजेक्ट होती हैं, उससे तुरंत सूजन कम होने, बिकॉज डायरेक्ट वहां पे पहुंच सकता है,
1: जी
0: तो वो सूजन कम होने शुरू हो जाती है। लेकिन उसका भी कितने लगेंगे इंजेक्शन, ये हम बोल नहीं सकते, वो सूजन के ऊपर है। तो अगर काफी पेशेंट में हमने देखा, एक दो में भी ठीक हो जाता है, कई तो सालों उनको 4-5 लगते हैं या आते जाते रहते हैं। बहुत दुखद है, ज्यादातर बहुत बुजुर्ग लोगों में होता है,
1: जी
0: क्योंकि उस उम्र में जब उनका हालचाल बहुत कम होता है, तो आंख की रोशनी उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, कि हमको मोबाइल देखना है या टीवी देखना है, लेकिन फिर हम कुछ
1: ज्यादा
0: शरीर में
1: उसमें हो नहीं
0: देखिए
1: सकते।
0: लिमिटेशंस हैं, आप कितनी भी टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ जाए, जो हमने प्रैक्टिस शुरू की थी 35 साल से आंख के डॉक्टर हैं, अगर हमसे कोई कहता कि ये टेक्नोलॉजी आप देखोगे आप रिटायर होने के पहले, तो मैं कहता था आप झूठ बोल रहे हैं,
1: जी
0: इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है मेडिकल में, सभी चीजों में, आप भी
1: बिल्कुल
0: जानते हैं,
1: बिल्कुल।

0: मोबाइल्स हो या कोई भी चीज में, टेक्नोलॉजी हर 2-3 साल या 5 साल नई टेक्नोलॉजी आ रही है। बाकी शरीर में भी आप देखते हैं जो सर्जरीज वगैरह में इतनी मेडिकेशन में आई है, वैसे आंखों में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन सभी चीज का एक लिमिट है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और वो जो सीमा है वो अपनी ह्यूमन बॉडी है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अभी तक कोई समझ नहीं पाया चलती कैसी है।
1: ये अपने आप में एक चमत्कार है।
0: हम देखते कैसे हैं वो भी चमत्कार है। आप भी जानते हैं वर्चुअल इमेज, अभी वर्चुअल यानी क्या हो गया?
1: बिल्कुल
0: उल्टा
1: बिल्कुल।
0: इमेज यानी दुनिया उल्टी है और हमको सीधे दिखाई दे रही है।
1: ये भी कमाल की बात है।
0: आप जानते हैं ना, वापस जाइए, वापस 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स पे।
1: यस
0: वर्चुअल इमेज है। अरे वर्चुअल कैसे हो
1: जो
0: गया?
1: हमारी आंखों में सीधी
0: हम आप एक दूसरे को देख रहे हैं क्या, हम उल्टे हैं? अच्छा वहां पे जाके इमेज उल्टी हो जाती है क्या यार? ये सवाल का प्रश्न मैं अभी तक खुद नहीं
1: कर सका बचपन से। मामला फिलोसफी की तरफ।
0: हाँ, बिकॉज एक हद के बाद तो शायद जो भी हो, नेचर हो, भगवान हो, जो भी हो, दे हैव केप्ट समथिंग विद देम एंड में, कि आप वहां तक उस हद तक हम नहीं जा सकते।
1: यस डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है और वो ये है कि बड़ी अजीब बात है कि कई लोग अपनी हैबिट में ये रखते हैं कि रात को सोने से पहले एक ड्रॉप डाल दें, टीयर ड्रॉप जैसी कोई चीज, या कोई एक रेगुलर ड्रॉप डालते हैं ताकि आंखें ठीक रहें। ये क्या है और ये क्या नुकसान पहुंचा सकता है?
0: दोबारा कहता हूं, जरूरत हो तो जरूर डालना।
1: ना हो डॉक्टर दें तब डालना।
0: हाँ, अगर आपके डॉक्टर ने कहा हो रात को सोते टाइम डालिए तो जरूर।
1: सेल्फ मेडिकेशन इज डेंजरस।
0: सेल्फ मेडिकेशन प्लीज कृपया करके ना करें। जितना सेल्फ देखिए, ज्यादातर तो ये डालते हैं वो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स रहते हैं।
1: जी जी,
0: हार्मलेस रहते हैं। वो अपने आंसू मिमिकिंग, अपने आंसू को ही मिमिक करते हैं,
1: रिप्लेस करें
0: वैसे ही रहते हैं, तो उनकी हानि नहीं होती। लेकिन अंत में केमिकल है ना
1: जी।
0: अगर नेचुरल है, और हम बड़ी आजकल सारी बातें नेचुरलोपैथी पे करते हैं, तो आप नेचुरल रहिए ना, नेचुरल प्रोडक्ट्स मत डालिए, बहुत फर्क है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: नेचुरल प्रोडक्ट्स मत डालिए, वो बहुत फर्क है।
1: सही कह रहे हैं,
0: वो एक अलग ही टॉक है, मैं वहां पे जाना भी नहीं चाहता
1: जी।
0: ओके, लेकिन मेरा इतना ही है कि जो जरूरी हो वो जरूर कीजिए
1: जी,
0: जितना हो नॉर्मल रहेगा वही अच्छा रहेगा आपके लिए।
1: बिल्कुल, ऑफकोर्स बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब, यहां तक आते आते अब आपसे एक ही बात पूछनी है, और वो ये कि पूरे देश और दुनिया में जो लोग हमें सुन रहे हैं, एक बहुत ही अनुभवी आई सर्जन के तौर पर आप क्या बात कहेंगे उन लोगों से? बॉटम लाइन।
0: बॉटम लाइन, एक तो शुक्रिया सुनने के लिए
1: जी।
0: काफी टाइम आप लोगों ने झेल लिया मुझे,
1: बहुत तो जरूरी बात है,
0: उसके लिए शुक्रिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि आंखें जो है वो बहुत ही कीमती हैं, बचपन से लेके अपना साथ देते हैं मरने तक। शरीर का कोई भी आपको हिस्सा साथ नहीं देखे, आंखें आपको जरूर साथ देगी। तो आप कृपा करके बहुत ही सावधानी से इनका ध्यान रखिए। इतनी सुंदर दृष्टि जो प्रकृति है, हम जो भी देखना चाहते हैं वो सिर्फ आंखों के जैसे तो दिखाई दे रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ, अगर आप आंख से नहीं देखेंगे तो बाकी और क्या रह गया है?
1: बिल्कुल,
0: आप महसूस नहीं करेंगे। टच भी इम्पॉर्टेंट है, फील भी इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर रोशनी नहीं रही तो बहुत ही मुश्किल रहती है। तो बॉटम लाइन यही है कि आंखों की प्लीज प्लीज प्लीज बहुत ख्याल रखिए, इसके साथ खिलवाड़ ना करें। ये मेरा बॉटम लाइन सभी चीज के लिए है कि मेहरबानी करके खिलवाड़ ना करें। किसी ने कर लिया तो मैंने ट्राई कर लिया, प्लीज ना करें
1: जी।
0: सोचिए इसके बारे में, हम सभी चीज के बारे में 10 चीजें सोचते हैं, कोई भी चीज के बारे में हम तुरंत गूगल कर लेंगे, ये कर लेंगे, देख लेंगे। फिर आंख में कुछ डालने के पहले सोचिए ना कि मुझे जरूरी है या नहीं।
1: क्या
0: कि किसी ने कह दिया कि मैंने डाल दिया मेरा नंबर निकल गया, मैंने ये डाल दिया तो ये हो गया, ऐसे होता नहीं है कोई शॉर्टकट। वापस बॉटम लाइन आप जानना चाहते हैं, देर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ।
1: नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, बहुत सही ये बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतने विस्तार से आंखों की देखभाल के बारे में, आंखों की बीमारियों के बारे में आपने बातें की।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम क्या कहता हूं, सॉरी ये हिंदी में शायद शब्द ना, बट आई एम ओवरवेल्म्ड एंड ऑनर्ड के आपने मुझे बुलाया और इतने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं और इस जगह पे बुलाया जहाँ पे पता नहीं कौन कौन दिग्गज आके गए हैं। तो इन अ वे जीवन सार्थक है मेरे लिए ये। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, रिकॉर्डिंग इंजीनियर

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। कितनी विराट है ये दुनिया, जाने कहां तक फैला है इस ब्रह्मांड का विस्तार। आसमान पर है तारों से जड़ी विशाल छतरी, दुनिया के इस असीम विस्तार के बाद भी अकेलेपन की धुंध घिरी है चारों तरफ। तन्हाई के इस शॉल को लपेटकर जाने कितने ठंडे मौसम बिता देते हैं अकेले लोग। अकेलेपन की दुनिया में नहीं होते शब्द, वहां नहीं होती मुस्काने, वहां तो शायद सुर भी नहीं होते, वहां होता है बस सर्द सन्नाटा।

सन्नाटे की दुशाला में हम एक रात बुनते हैं। इस रात को बुना जाता है खामोशी के तागे से। इस रात में अपने सपनों के मोती टांग दिए जाते हैं। वक्त के करघे पर कोई बुन रहा है अपने हिस्से की एक रात। वो रात जिसमें यादों की मोमबत्ती जल जल कर पिघलती है पर मुस्कान बिखेरती रहती है। बुन रहे हैं हम रात, हमारे हिस्से की रात।

समय एक लगातार बहता धारा है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है और इसका कहीं कोई आखिरी सिरा नहीं है। समय के इस विशाल प्रवाह में हम एक छोटा सा रेशा ही तय होता है कि कौन, कब, किसका हम सफर बनेगा, कैसे हम चलेंगे जिंदगी की राहों में साथ साथ।

0: समंदर के किनारे बैठी तो लगता है कितना विराट है ये समंदर और कितने छोटे से हम। लहरें आती हैं और अचानक भिगोकर चली जाती हैं। समंदर की चहल पहल के बीच भी होता है एक अजीब सा खालीपन। समंदर कितना कुछ सिखाता है हमें। समंदर सबसे ज्यादा ये सिखाता है कि टूटकर कैसे प्यार किया जाता है। किनारे के प्यार में समंदर सदियों से बार बार लौटता है किनारों की तरफ। इस तरह लौटना दुनिया की सबसे प्यारी बात है। प्यार करने वाले बार बार लौटते हैं एक दूसरे की तरफ।
1: दो दीवाने शहर में

0: छाया गीत में आज थे संगीतकार जयदेव की चंद नगमें, फिल्मों के नाम।
1: जिंदगी में जब
0: फिल्म दूरियां,
1: आपकी
0: फिल्म कमन, फिल्म रेशमा और शीरा,
2: दो दीवाने शहर में,
0: फिल्म घरोंदा। आज का चाहे गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।

कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनने वाले सभी नए पुराने दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए अलका याग्निक और मनहर उदास की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम है त्रिदेव।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: जावेद अख्तर का लिखा गीत सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। संगीत है अनु मलिक का, फिल्म का नाम है मैं हूं ना।

0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मन्ना डे की आवाज में। नगमा निगार है हसरत जयपुरी, तर्ज है शंकर जय किशन की, फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर।

और प्यारे, दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी, खड़े को भी छोटे को भी, दुबले को भी मोटे को भी, नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, कर कर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

ऊपर ही नहीं नीचे भी निभा। ए भाई दर देख के चल।

0: वफादार है। हप हप आता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक के करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

आइए सुनते हैं अगला गीत अभिजीत, अनु मलिक और अनुराधा श्रीराम की आवाजों में। शब्द रचना समीर की, संगीत रचना अनु मलिक की। फिल्म का नाम है बीवी नंबर 1।

0: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मंजलपुर विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच में था। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने लोगों को धन्यवाद दिया और कहा की जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट जीत ली है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। उधर बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है, जहां जनसुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा से 31वें चरण की मतगणना के बाद लगभग 19,000 वोटों से आगे हैं। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग

0: को लेकर सदन में हंगामा करने लगे। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया है कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 544 अंक बढ़कर 78,639 पर, जबकि निफ्टी 391 अंक की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। साथियों, एक बार फिर तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म का नाम है हम जोली।

0: जाने मुझे ऐसे देखा तूने कैसे जब होने लगे दिल में
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हाय हाय।
4: कार्यक्रम में अगली आवाजें हैं सुदेश भोसले, कुमार सानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत है बप्पी लहरी का, फिल्म का नाम है आंखें।

दिल के लिए दिल का कोई पैगाम तो बता। आशिक का तेरे क्या होगा अंजाम तो बता। ओ लाल दुपट्टा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों, कार्यक्रम की अगली पेशकश है किशोर कुमार की आवाज में। नखमनिगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

कार्यक्रम की अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं अनुराधा श्रीराम की आवाज में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं अनु मलिक। फिल्म का नाम है मुझे कुछ कहना है।

0: साथियों, कार्यक्रम तराने नए पुराने अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

राष्ट्रीय सेवा विविध भारती से लीजिए सुनिए झरोखा के अंतर्गत हमारे आज के शेष कार्यक्रम और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से बस कुछ ही देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन, 6:45 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनिए संगीत सरिता, और शाम 7 कार्यक्रम होगा जय माला। सात 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आज सुनिए एक ही फिल्म से, आज आपको सुनवाएंगे म्यूजिकल हिट रोमांटिक फिल्म जवानी दीवानी के कुछ गीत। रात्रि 8 हवा महल में आज आप सुनेंगे हास्य नाटिका कैसे कैसे दोस्त। 9:30 पर आज के फनकार जो केंद्रित है शायर और गीतकार शकील बदायूनी पर, और रात 10 छाया गीत में आज सुनिए सलमा सैयद को। कल सुबह 6:05 पर वंदन वार और चिंतन, 6:35 पर श्री रामचरितमानस गान का भाग सुनिए 270, 270। संगीत सरिता इस कार्यक्रम में कल सुबह 6:45 पर सुनिए श्रृंखला वर्षा चौमासा के चौथे भाग में गायिका शुभा मुद्गल को, प्रस्तुत करता है कांचन प्रकाश संगीत। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं शाम 6:45 पर। कलाकार हैं गायिका शुभा मुद्गल। भूले बिसरे गीत आपको सुनवाएंगे सुबह 7 और 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम हम है राही प्यार की। तिरवणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 8:15 पर। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं दोपहर 2, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 और रात 8:15 पर सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है महान गायक संगीतकार फिल्मकार अभिनेता किशोर कुमार पर, प्रस्तुत करता है रमेश गोखले। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं रात 9:30 पर। कल दिन में 10 पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा में सुनिए नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष से की गई यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। संपादन सहयोग है रीमा जोशी का, प्रस्तुत करता है जुबैर खान। दिन में 11 मिश्रित संगीत का कार्यक्रम प्रसारित करेंगे रंग तरंग। 12:05 पर सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल।

आज की तरह कल भी 1 बजे हमारे साथ तय कीजिए, संगीत का सफर कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। दो बजकर 30 मिनट पर होंगे सदाबहार नखमे। दिन में 3 बजे सखियों का बेहद पसंदीदा कार्यक्रम होगा सखी सहेली। कल के विषय हैं अफवाहों से रहे सावधान। सखी विशेष में मलिका सदानी हल्की फुल्की बातों में बचपन की यादगार शरारत और मुहावरों की दुनिया में 1 से 21 होना प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। दोपहर बाद 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिए सेल्यूलाइट के सितारे में अभिनेत्री और निर्देशक तनिष्ठा चटर्जी से की गई यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। संपादन सहायक मनीषा सिंह, प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले। शाम 5 बजे छाया गीत का पुनः प्रसारण होगा और 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। कल शाम 7 बजे सुनिए कार्यक्रम जयमाला। सात बजकर 45 मिनट पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे पॉप एक्सप्रेस। कल रात्रि 8 बजे हवा महल में आप सुनेंगे झलकी ये ना थी हमारी किस्मत। लेखक हैं सत्यदेव नारायण सिन्हा, निर्देशक सीताराम यादव। रात 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए और कल रात 10 बजे छाया गीत में सुनिए ममता सिंह को, प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी। कल रात 10:30 पर कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11 बजे कार्यक्रम होगा रंग तरंग। देश विदेश की ताजा तरीन खबरें जानने के लिए सुबह व शाम 6 बजे, मध्यान्ह 12 बजे, सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 2:15 पर दोपहर समाचार और रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या सुनिए। कल सुबह और शाम 6:30 पर आप सुनेंगे झरोखा। तो ये थी जानकारी आज के शेष और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। संध्या रंजन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। लीजिए सुनिए आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजें। रचना है आनंद बख्शी की, संगीत है राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है जूली।

लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में संत मीराबाई के बोल। संगीत है वसंत देसाई का, फिल्म का नाम है झनक झनक पायल बाजी।

0: श्रोता मित्रों नमस्कार। श्रृंखला वर्षा चौमासा की आज की यह है तीसरी कड़ी। शुभा मुद्गल हमारी जानी पहचानी प्रख्यात गायिका स्टूडियो में उपस्थित हैं और हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार। और आपने मेरी तारीफ तो कर दी पर मुझे भी ये कहना है कि संगीत सरिता एक बहुत बहुत वर्षों से मैं भी सुनती आई हूँ और बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुने, मेरे लिए विशेष उपलब्धि है कि आज मुझे इसमें प्रस्तुति करने का अवसर दिया जा रहा है।
0: जी तो बात चल रही थी मल्हार की, शुद्ध मल्हार, मेघ मल्हार, मेघ, और इसके बाद आज आपने कौन सी बंदिश चुनी है, किस राग को चुना है, सब कुछ बताइए।
1: मैंने आज के लिए राग गौड़ मल्हार चुना है
0: जी।
1: बहुत लोकप्रिय मल्हार का प्रकार है, प्राचीन भी है और इसे विभिन्न प्रकारों से गाया जाता है, यानी खूब मतभेद है इसके विषय में।
0: अच्छा अच्छा
1: के बिलावल थाट का है, खमाज थाट का है, इत्यादि इत्यादि। कोमल गंधार लगा के गाना चाहिए, कैसे गाना, दोनों निषाद लगने चाहिए कि नहीं, ये सब बहुत अलग अलग चर्चा है। लेकिन मैंने जिन दो बंदिशों को प्रस्तुत करने का मन बनाया है उनके विषय में एक और बात आपको बताना चाहूँगी। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो शास्त्रीय संगीत की बंदिशें हैं वो हमेशा ही प्राचीन होती हैं और जैसे ही किसी भी प्रकार का शास्त्रीय संगीत हो तो वो एकदम 5000 साल से कम का नहीं होता। लेकिन सत्य तो ये है कि शास्त्रीय संगीत सीखने वाले लोग तो आज भी हैं और रचना करने वाले लोग
0: भी
1: आज
0: हैं,
1: हैं, प्रस्तुत हैं हमारे बीच में।
0: मतलब वो धारा जो रचना की है वो अविरल है, बहती जा रही है और वो विस्तृत भी होती जा रही है।
1: बिल्कुल। और उसमें अपना अपना योगदान समर्पित रूप से लोग करते जाते हैं
0: जी।
1: तो ये जो दोनों रचनाएं चुनी हैं, एक मैंने झपताल की रचना चुनी है और एक मैंने तीन ताल की रचना चुनी है।
0: अर्थात ये वर्षा ऋतु इससे संबंधित ही बंदिशें होंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। गौड़ मल्हार में निबद्ध

0: और वर्षा संबंधी साहित्य की दो रचनाएं हैं, लेकिन दो बहुत ही जाने माने वाग्गेयकारों की बंदिशें हैं ये। जो पहली जो बंदिश है झपताल में जो मैं
1: गौड़
0: गाऊंगी,
1: मल्हार का जो चलन है वो भी अगर आप मतलब आरोह
0: जरूर
1: अवरोह
0: जरूर
1: और राग के बारे में थोड़ी सी पहचान जो हो।
0: जी। तो कुछ जो इसकी विशेषताएं हैं, वैसे तो मैंने बताया कि अलग अलग तरह से गाया जाता है इसे, लेकिन जो मैं प्रस्तुति कर रही हूं उसमें ये मुख्य जो इसकी स्वर संगतियां हैं वो इस प्रकार हैं। सा रे गा मा गा मा, ये गौड़ की विशेषता।

0: ये गौड़मल्हार की एक शक्ल ऐसी
1: हाँ,
0: बनती है और ये इन बंदिशों में आपको सुनाई देगी।
1: आप झपताल में जो बंदिश गाने वाली हैं वो पहले।
0: जी, जो इसके बोल हैं उनसे अगर आप पूरा स्थायंतरा सुने तो उसमें ही आपको पता चल जाएगा कि जो वाद्यकार हैं उनकी छाप उसमें आपको मिलेगी। उमड़ घुमड़ आए कारे बदरवा, अजहू पिया नहीं आए मंदरवा। रुत बरखा में सब घर आए, आए न प्रेम रंग रंगीले पियरवा।
1: अच्छा, ये इनका तखल्लुस है।
0: प्रेम रंग,
1: जी
0: लेकिन मजे की बात यह है कि प्रेम रंग के नाम से कई लोग रचना कर चुके हैं। मेरे गुरुजी पंडित रामाश्रय झा जी से पता चला कि ये बंदिश जो है ये एक बहुत जाने माने विद्वान वाग्गेयकार रहे स्वर्गीय पंडित डी टी जोशी,
1: जी
0: उनकी बंदिश है ये
1: जी
0: जो प्रस्तुत
1: जी
0: कर रही हूं मैं।
1: जी

0: शुभा जी, आप एक दूसरी भी बंदिश की बात कर रही थी कि गौड़ मल्हार में आप प्रस्तुत करने वाली हैं,
1: जी
0: तो वो रचना भी तो बताइए ना।
1: ये रचना पंडित रामाश्रय झा जी, मेरे गुरु जी, जो राम रंग के नाम से रचना करते हैं, उनकी गौड़ मल्हार की एक रचना है तीन ताल में। और इसमें वो कहते हैं कि घन घेरी आयो री माँ, गगन गरजत डर पावे, बड़ी बड़ी बूंदन बरसे, दामिनी दमके चमके कामिनी जियरा धड़के, दामिनी दमके चमके कामिनी जियरा धड़के, राम रंग मनुआ लरजे तरसे, घन घेरी आयोरी माँ।
0: जी, और घन जब इस तरह से घेर घेर लेते हैं, और कामिनी जो है अगर वो अकेली है तो उसका जियरा जरूर ही धड़केगा और लरजेगा मन,
1: जी
0: सुनते हैं।

0: श्रोता मित्रों, ये था राग गौड़ मल्हार, और गौड़ मल्हार में शुभा मुद्गल जी से हमने दो बंदिशें सुनी। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम जयमाला आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, गीतकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, संगीत है हेमंत कुमार का, फिल्म का नाम है आनंद मठ।

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर।
2: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
3: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
2: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आए हाय।
1: मदर इंडिया, इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीत है नौशाद का।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कोहे नूर, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत है नौशाद अली का।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: वाले

0: घराना इस फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार थे शकील बदायूनी, संगीतकार थे रवि। गंगा जमुना इस फिल्म का नगमा आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शब्द रचना शकील बदायूनी की, संगीत रचना नौशाद अली की।
1: लागा गोरी गुजरिया से

साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का अगला कव्वाली गीत है शमशाद बेगम, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीत है नौशाद का, फिल्म का नाम है मुगले आजम।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आइए अब सुना जाए अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीत है रवि का, फिल्म का नाम है उम्मीद।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है उमा देवी की आवाज में। गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीतकार हैं नौशाद अली, फिल्म का नाम है दर्द।

ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम इंद्रधनुष के अंतर्गत आज सुनिए एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है 1972 में रिलीज्ड म्यूजिकल हिट रोमांटिक फिल्म जवानी दीवानी। नरेंद्र बेदी के निर्देशन में बने इस फिल्म की कहानी को लिखा था इंदर राज आनंद ने, जबकि इसके संवाद लिखे थे कादर खान ने, गीतकार थे आनंद बख्शी, और इस ब्लॉकबस्टर म्यूजिकल हिट फिल्म का जो संगीत था वो राहुल देव बर्मन का था। और फ्रेश मेकओवर के साथ में ग्लैमरस इमेज में नजर आई थी जया भादुरी, और उनके साथी कलाकार थे रणधीर कपूर, बलराज सहानी, निरूपा रॉय और ए के हंगल। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार है आनंद बख्शी और धूम मचाता हुआ ये संगीत है राहुल देव बर्मन का। फिल्म का नाम हम पहले ही बता चुके हैं, जवानी दीवानी।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है जवानी दीवानी।

श्रोताओं, इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में आज आपने सुने म्यूजिकल हिट फिल्म जवानी दीवानी के कुछ गीत राष्ट्रीय सेवा विविध भारती से।

0: हवा महल में आज सुनिए सुरेंद्र कुमार तिवारी लिखित हास्य नाटिका कैसे कैसे दोस्त।
1: अरे भैया चंदन प्रसाद, घर में छुपे हो या नहीं?
2: अरे फिर आदम का कोई कमखत दोस्त, मैं तो परेशान हो गया हूँ छक्कन की माँ इन दोस्तों से।
1: अरे भैया चंदन प्रसाद, सो गए हो क्या?
2: अरे कोई उपाय करो छक्कन की माँ, कोई उपाय करो।
3: मैं क्या कर सकती हूँ?
2: अरे लोटा प्रसाद आदम का है, कल नाश्ते के वक्त आ गया तो शाम तक सिर चाटता रहा, और आज तो खाने के वक्त आया है तो रात गुजार कर ही जाएगा।
1: अरे भैया भगवान को प्यारे हो गए क्या? अब मेरा मतलब पूजा पाठ कर रहे हो क्या भैया?
2: अरे छक्कन की माँ, हाँ मैं कह देता हूँ कि छक्कन की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम बहाना करके लेट जाओ, मेरी मदद करो छक्कन की माँ, नहीं तो इस घर का दीवाला निकल जाएगा।
1: अरे भाई चोरू के गुलाम और चंदन प्रसाद पत्थर की मूरत हो गए हो क्या?
4: कौन है भाई, जरा ठहरो। अरे भाई लोटा प्रसाद जी तुम?
5: हाँ भैया।
4: अरे क्षमा करना भैया, मैं वो हाँ आरती कर रहा था।
5: अच्छा अच्छा अच्छा,
4: किवाड़ खोलने में जरा सी देर हो गई भैया।
5: कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं।
4: कहो कैसे रास्ता भूल आए? अरे तुम तो गूलर के फूल हो जाते हैं भैया। कहो चलो चलो भीतर आओ।
5: हाँ भैया ऐसा मत कहो चंदन प्रसाद, अभी कल दिन भर ही तो तुम्हारे घर पर था, भगवान कसम ऐसी मोहब्बत हो गई है भैया तुमसे कि कहीं भी जाता हूँ तो पैर खामखा तुम्हारे घर की तरफ चल पड़ते हैं।
4: वाह
5: वाह। और कहो भैया भाभी बच्चे कैसे हैं?
4: वो अरे यही तो रोना है भैया लोटा प्रसाद जी।
5: हा?
4: अरे कल रात से छक्कन की माँ की तबीयत बहुत खराब है।
5: अरे तो भैया क्या अस्पताल में भर्ती करा दिया? अरे अरे भाभी जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते,
3: नमस्ते।
5: माफ कीजिए मैंने आपको देखा नहीं, होता है ना ऐसा कभी कभी कि आप उजाले से अंधेरे की तरफ जाएं तो कुछ साफ साफ दिखाई नहीं पड़े। आप बोल क्यों नहीं रही? अरे अरे भी आप कहाँ चले भाभी? अरे भैया भैया चंदन प्रसाद जी, ये भाभी मुझसे नाराज क्यों है? अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए नहीं कि कल मैंने आपके साथ रात का खाना नहीं खाया। अरे तो इसमें नाराज होने की क्या बात है भैया, कल नहीं खाया तो आज खा लूंगा।
4: अरे क्या?
5: क्यों भैया चंदन प्रसाद, आया हूं ना सही वक्त पर।
4: वो तो ठीक है भैया लोटा प्रसाद जी, लेकिन खाना पका ही कहाँ है भैया? अब देखो मैं तो कल से इनके पीछे परेशान हूँ, और तुम तो जानते हो भैया कि मुझे तो स्टोव जलाना आता ही नहीं है।
5: फिर भी इस हालत में भाभी किचन की तरफ क्यों गई हैं? अरे भाभी भाभी जी सुनिए, देखिए मेरे लिए चाय वाय मत बनाइएगा, मैं कोई मेहमान थोड़े हूँ। अगर अपने लिए बना रही होंगी तो कोई अरज नहीं, पी लूंगा हाफ कप, नहीं तो भाभी खामखा नाराज हो जाएंगी।
4: भगवान तू ही पीछे छुड़ा।
5: अरे ये कौन करा रहा है? अरे भाभी जी हैं क्या? अरे भाभी जी आप करा क्यों रही हैं? क्या कोई तकलीफ है आपको?
3: अरे अरे क्या बताऊं भैया, अरे जाने क्या हो गया हमारी टांगों को, अरे टांगों में बड़ा दर्द है।
5: अच्छा?
3: ओ शो

0: बिल्कुल सहा नहीं जाता। अरे किसी का आना जाना भी बर्दाश्त नहीं हो पाता। बस अकेले में चुपचाप पड़ी रहने को दिल जाता है।
1: अच्छा, जाने कैसा मरे था भाभी आपको, कहो तो बैदराज को बुला रहा हूँ मैं।
0: अरे नहीं नहीं भैया, फिर बैदराज का नाम न लेना। अरे ये जनाना मर्ज है भैया, जनाना। हाँ, औरत की पीड़ा औरत ही समझ सकती है। भैया बैदराज के बस की बात नहीं।
1: हाँ भाभी, मर्ज तो मर्ज ही है, फिर जनाना मर्ज, भगवान बचाए इससे। इसमें तो बड़ा आराम चाहिए, ऊपर से समय समय पर नाश्ता और खाने पीने को भी मिलते रहना बहुत जरूरी है भाभी। मैं इसका प्रबंध करता हूँ अभी। मैं अभी घर जाता हूँ और टुनटुन की माँ को साथ ला लाता हूँ। बस भाभी, मैं अभी गया और अब आया। भैया चंद्र प्रसाद जी, मैं अभी वापस आया अपनी बटालियन के साथ।
2: अरे नहीं नहीं, सुनिए लोटा प्रसाद जी। भैया
0: आप घबराइए मत छक्कन के पापा।
2: क्यों?
0: आज मैंने लोटा प्रसाद की लुटिया न डुबो दी तो मेरा नाम भी छक्कन की माने। हाँ
2: अच्छा?
0: बस इतना ही करना कि उनके आने के बाद वैद्यराज को बुलाने के बहाने घर से बाहर निकल जाना।
2: अच्छा।
0: और लौट कर पिछवाड़ी की खिड़की से भीतर चले आना और स्टोर रूम में आराम करना, समझे? बाकी का काम मैं संभाल लूंगी।
2: अच्छा।

0: अरे कहाँ हो? अरे अरे मैं मर गई रे।
1: हम आ गए भैया।
0: अब
1: चाहो
2: आइए आइए लोटे प्रसाद जी, आइए आइए भाभी जी, आप भी आइए। बड़ी मेहरबानी की आपने मुझ पर। अरे बड़ा साहस मिला है मुझे आप लोगों को देखकर, वरना वरना मैं तो घबरा ही गया था। अरे इनकी चिल्लाहट सुने नहीं जा रही मुझसे। आप लोग तब तक इन्हें संभालिए, मैं वैद्यराज को बुलाकर लाता हूँ। अच्छा
1: आप बेफिक्र रहे भैया,
2: मैं वैद्यराज को ला रहा हूँ।
1: आप इत्मीनान से जाइए भैया, इत्मीनान के साथ जाइए, हमको ये गैर थोड़ा ही है। अरे टुनटुन की माँ, जाओ भाई जाओ, जरा भाभी का हालचाल पूछो, कैसे करा रही है बेचारी, जनाना मर्ज है नहीं।
3: धीरज रखो बहन, धीरज रखो, देखो हम लोग आ गए हैं, आप बिल्कुल मत घबराइए। बोलो बहन क्या खाओगी? खीर, रायता, रबड़ी, हलवा। टुनटुन के पापा को भी भूख लगी है।
0: जीती रहे बहन, जीती रहे। अरे तू आ गई तो बस मेरा सारा रोग दोष मिट गया। हाँ बस यही पैर कटा जा रहा है। सुना है तू बड़ा अच्छा मालिश करती है, जरा सी मेरे पैर में भी।
3: क्यों नहीं बहन, अब मालिश कर देने से कट थोड़े ही जाऊंगी। लाओ लाओ बहन लाओ, अब पैर इधर लाओ, मैं मालिश किए देती हूँ। ला
0: ये लो,
3: ला ला।
0: वाह रे बहन वाह, अरे वाकई तू तो बड़ी अच्छी मालिश करती है। हाँ यहाँ ऊपर घुटने पर भी, हाँ थोड़ा सा यहाँ कमर पे भी, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हाथ भी दबा दे, वापिस पाँव पे, पाँव पे। हाँ ठीक है। अरे हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे दो चार दिन रह जा तो मेरी तो सारी बीमारी छूमंतर हो जाए। बस ठीक है ना? हाँ थोड़ा सा और दबा दे बहन। क्यों थक गई? रहने दे, तेरे हाथ भी दर्द करने लग गए होंगे ना, पहले पहल यूं ही दर्द करता है। घबराना मत, दो चार दिनों में आदत पड़ जाएगी। अरे हाँ तू कुछ पकाने खाने की बात कर रही थी ना? हाँ तू जा किचन में चली जा, और हाँ सुन जरा संभाल के जाना। ओह पूरा किचन गंदा पड़ा है, जरा बर्तन भी मांज लीजियो, पोछा भी लगा दीजियो, और सुन सबसे बाद में रसोई को धो दीजियो। अरे हम मैं तो कल से उठ ही नहीं पाई। जा जा किचन में चली जा, जा जा, अरे तेरा ही घर है। हाँ जा अब। अरे भैया लोटा प्रसाद।
1: हाँ भाभी आया। क्या बात है भाभी?
0: अरे बात क्या होती, क्या बताऊं भैया, तुम्हारे भैया अभी तक नहीं आए।
1: हाँ भाभी पता नहीं भैया चंदन प्रसाद अभी तक आए क्यों नहीं।

0: अरे नहीं आए तो आ जाएंगे शाम तक। शाम तक नहीं आए तो कोई बात नहीं, कल आ जाएंगे। कल नहीं तो परसों आ
1: अब
0: जाएंगे, और परसों नहीं तो नरसों, और नरसों नहीं तो हफ्ते भर में तो आ ही जाएंगे।
1: हफ्ते भर में,
0: हाँ
1: लेकिन वैद्यराज का क्या होगा भाभी?
0: वैद्यराज, अरे वैद्यराज की क्या जरूरत है अब। और फिर टुन टुन की माँ से बढ़कर कौन वैद्यराज मेरा दर्द हरेगा। अरे कितनी अच्छी मालिश करती है मेरी बहन।
1: हाँ वो तो
0: थक गई होगी बेचारी। सुनो जरा किचन में जाकर उसकी मदद कर दो ना भैया।
1: हाँ भाभी, अभी लो,
0: हाँ
1: अभी लो।
0: हाँ
1: अरे
0: बड़ी अच्छी है।
1: अरे सुन रही हो टुनटुन की माँ, भाभी तुम्हारी कितनी तारीफ कर रही है।
2: क्या आप मुझे इसीलिए यहाँ लाए हैं? मैं कोई नौकरानी थोड़ी ही हूँ कि सिर दबाऊं, पैर की मालिश करूं, खाना पकाऊं, झाड़ू पोछा करूं। अपने घर की रानी, दूसरे के घर भरे पानी। मुझको तो इस जनाना मरज में भी कोई चाल लगती है।
1: चाल
2: हाँ किचन में देखो तो सारे डिब्बे खाली पड़े हैं।
1: चालाकी
2: ऊपर से मेम साहब लेटी लेटी हुक्म चला रही हैं।
1: हाँ वो
0: अरे टुनटुन की माँ, अरे हलवा बन गया, अरे बड़ी जोर की भूख लगी है।
1: अरे बस भाभी, बस अभी आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। असल भाभी बात यह है कि किचन बिल्कुल खाली पड़ा है, शक्कर वगैरह कुछ भी नहीं है, बाजार जाकर लाना होगा।
0: बाजार जाओ और खरीद लाओ हफ्ते भर का सामान।
1: हफ्ते
0: हाँ और आते समय जरा पावर कत्था और पावर सुपाड़ी भी लेते आना, थोक खरीदने में सस्ता पड़ता है। हाँ
1: हाँ भाभी वाह,
0: अरे
1: हफ्ते भर का सामान पूरा सामान खरीद के लाना होगा। हे भगवान, कहाँ फंसे टुनटुन की माँ? हम लोग तो इनका दिवाला निकालने आए थे,
0: हाँ
1: लेकिन
0: नहीं तो
1: लगता है अब
0: क्या।
1: तो अपना ही दिवाला निकल जाएगा।
0: हाँ
1: अरे अब मुझे क्या करना चाहिए, बाजार सामान खरीदने जाऊं या सीधे
2: देखो
1: घर?
2: मेरी बात मानो तो चुपचाप घर चले जाओ, और सुनो मैं भी मौका पाती फूट लूंगी यहां
1: हाँ
2: से।
1: ठीक है, ऐसा ही करता
2: हाँ ऐसे
1: हूँ।
2: ही कर।
1: अच्छा भाभी, मैं बाजार जा रहा हूँ सामान खरीदने, और वैसे ही भैया चंदन प्रसाद की भी खोज करता हूँगा, कभी न कभी कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। अभी नहीं तो शाम तक, शाम तक नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, हफ्ते भर में तो मिल ही जाएंगे भाभी।
0: अरे अरे टुनटुन की माँ, अरे इधर आ जा बहिन। अरे तब तक यहीं आ जा, अकेली मत बैठे उधर। हाँ आओ इधर बैठ। हाँ अरे राम, बस एक मेहरबानी और कर दे मेरे ऊपर, मेरी साड़ियों से पसीने की बदबू आ रही है, और छक्कन ने भी कल से सारे कपड़े गंदे कर रखे हैं। अरे बहन मुझसे तो उठा नहीं जा रहा, जरा सा उन्हें
2: बहन
0: भी।
2: इन्हें साफ करने
0: हाँ
2: में कोई हरज नहीं, मगर
0: हाँ
2: मेरी आदत नहीं है, घर पर मेरे कपड़े धोबी ले जाता है। अब बुरा मत मानना बहन, पसीने की बदबू मुझसे सही नहीं जाती, जाने कैसा कैसा लगने लगता है। और फिर करूं भी तो कैसे करूं, यहाँ तो साबुन भी नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं। अब मतलब वो मेरा पर्स टुनटुन के पापा की जीब में रह गया। अब कपड़ा साफ करना तो जरूरी है, और फिर साबुन के लिए पैसे, पैसे के लिए पर्स, और पर्स के लिए टुनटुन के पापा को खोजने निकलना ही पड़ेगा। क्या कहती हो बहन, निकल पड़ूं मैं भी खोजने टुनटुन के पापा को?
0: भगवान तुम्हें भी सद्बुद्धि दे बहन, अरे जैसा उचित समझो करो। पर सुनो, अरे लौटोगी कब
2: अभी अभी
0: तक?
2: अभी नहीं तो शाम तक,
0: हाँ
2: शाम तक नहीं तो कल तक, अब
0: हाँ
2: कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। अरे नर हफ्ते भर में लौट ही आऊंगी बहन।
0: चली गई बेचारी। अरे निकल आओ छक्कन के पापा, निकल आओ, लाइन क्लियर है।
1: मैं आ गया छक्कन की माँ, मैं आ गया। सुना तुमने, तुम्हारी बहन क्या कह रही थी जाते जाते?
0: क्या कह रही थी?
1: अरे वो कह रही थी, जान बची तो लाखों पाए, कौन लौट इस घर में आए।
0: हे भगवान, कैसे कैसे दोस्त पड़े हैं तेरी दुनिया में।

कैसे कैसे दोस्त। हवा महल में अभी आपने सुरेंद्र कुमार तिवारी लिखित यह हास्य नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता गंगा प्रसाद माथुर।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था -10 मेरे पास।

0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन, हर लम्हा हर पल आपके साथ। कार्यक्रम चित्रलोक बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं बाबुल सुप्रियो और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं इब्राहिम अश्क, संगीत है राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए सुनिए सुनिधि चौहान और गायक संगीतकार हिमेश रेशमिया की आवाजें। गीतकार हैं समीर, फिल्म का नाम है कजरारी।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल, बने रहिए हमारे साथ।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुनें अगला गीत शंकर महादेवन की आवाज में। गीतकार हैं गुलजार, संगीत है शंकर एहसान लॉय का और फिल्म का नाम है झूम बराबर झूम।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
4: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
3: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
3: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
3: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
3: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
3: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
5: कार्यक्रम का अगला गीत है आनंद राज आनंद और श्वेता की आवाजों में। गीत को लिखा है अनजान सागरी ने, संगीत है आनंद राज आनंद का और फिल्म का नाम है वेलकम।

इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होता है। सुनिए, सुनाइए और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत ये विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कर बही साक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
3: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
0: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
4: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर

0: को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत FIR बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
0: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
2: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
3: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में SS मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
5: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन

0: फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
0: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित तो उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
2: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने

19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए मैं सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है जानिसार अख्तर, संगीतकार है जय देव, फिल्म का नाम है प्रेम पर्वत।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: विचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाए अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी का लिखा गीत। तर्ज है शंकर जयकिशन की, फिल्म का नाम है राजकुमार।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं हसरत जयपुरी का लिखा गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है लव मैरिज।

0: चले तो दिल पे चले कटारी।
1: है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी।
0: तू झूमके चले तो दिल पे चले कटारी।
1: है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं जयदेव, फिल्म का नाम है लैला मजनू।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है श्री 420।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। शकील दिल का हूँ तर्जुमा कि मोहब्बतों का हूँ राजदां, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। इस बेमिसाल शेर के शायर शकील बदायूनी के नाम है आज के फनकार कार्यक्रम।

किसी ने क्या खूब कहा है कि शायर की दास्तान उसकी पैदाइश से शुरू तो जरूर होती है पर उसकी मौत पर खत्म नहीं होती। उसके अशार वक्त और जमाने की हदों के पार जाकर उसकी याद को जिंदा रखते हैं। शायर पैदा तो होते हैं लेकिन कभी मरते नहीं हैं। और ऐसे ही अमर शायर और गीतकार हैं शकील बदायूनी।

शकील शायरी की दुनिया से फिल्मों में आए थे, यानी फिल्मों में आने से पहले वो शायरी के आसमान का एक चमकता हुआ सितारा बन चुके थे। वो मुशायरों की जान हुआ करते थे। उस दौर में तरक्की पसंद शायरी पूरे उफान पर थी। जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही थी। गरीबों और लाचारों को जगाने के लिए शायरी की जा रही थी। ऐसे तूफानी दौर में भी शकील बदायूनी उर्दू शायरी की गहरी रवायत को पकड़े रहे और मोहब्बतों के शायर बने रहे। वो मुशायरों को लगातार लूटते चले गए। गृहस्थी चलाने के लिए शकील बदायूनी ने दिल्ली राज्य सरकार के सप्लाई विभाग में नौकरी कर ली। सन 1942 से 1946 तक दिल्ली में नौकरी करते हुए उन्होंने खूब शायरी की और खूब नाम कमाया। बात सन 1946 की है। एक मुशायरे में शिरकत करने के लिए शकील बदायूनी को मुंबई आना पड़ा। वो पढ़ने लिखने का जमाना था। फिल्म निर्माता भी मुशायरे सुनने के लिए जाते थे। नामचीन निर्माता निर्देशक A.R. कारदार ने जब शकील बदायूनी को मुशायरे में सुना तो उस वक्त बन रही अपनी फिल्म दर्द के गाने लिखने का मौका दिया। बस फिर क्या था, मुनव्वर सुल्ताना, श्याम और सुरैया की अदायगी से सजी इस फिल्म के जरिए शुरू हुआ एक सुरीला अफसाना। जी हाँ, उमा देवी ने गाया, शकील बदायूनी का लिखा ये गाना।

जी, शकील बदायूनी के शुरुआती हिट गानों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि शायरी की दुनिया से आने के बावजूद शकील ने फिल्मी गीतों के व्याकरण को अच्छी तरह से समझ लिया था। उनकी पहली फिल्म के गाने एक तरफ तो सरल और सीधे सादे हैं, तो दूसरी तरफ उनमें शायरी की ऊंचाई भी है। 1946 से सीधे छलांग लगाते हैं और आ पहुंचते हैं सन 1949 में। एक बार फिर AR कारदार की फिल्म जिसका नाम दुलारी, नौशाद की धुन और एक बार फिर शकील का इंतजार की कशिश से लबरेज नगमा। इस गाने को नौशाद ने राग पहाड़ी में क्या खूब बनाया है। इस गाने में नौशाद ने वाद्य यंत्रों के मामले में बड़ी कंजूसी दिखाई है और इस कंजूसी ने बनाया आला दर्जे का ये गाना सुहानी रात ढल चुकी।

अलग नजर आते हैं। भक्ति की पावन ऊंचाई पर पहुंचकर शकील ने जो कुछ लिखा उसे दुनिया आज तक गुनगुना रही है। बैजू बावरा फिल्म का वो ऐतिहासिक गीत जो शकील, नौशाद और मोहम्मद रफी का संगम है। लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिक सद्भाव की एक अनूठी मिसाल है। इस गाने के बोल हैं मन तरपत हरि दर्शन को आज।

दिलचस्प बात यह है कि शकील के रचना संसार में कुछ ठेठ शास्त्रीय संगीत पर आधारित रचनाएं भी हैं, जैसे मुगले आजम फिल्म का ये गीत जिसे गाया उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने।

आपको ये जानकर हैरत होगी कि शकील बदायूनी ऐसे एकमात्र गीतकार हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सुपर हिट होली गीत दिए हैं और तीनों की लोकप्रियता कमाल की। सन 1952, फिल्म आज।

इन तीनों गानों को सुने तो जिस दिन सुने उस दिन मन की होली मन जाती है। आपको याद होगा साहिर लुधियानवी ने ताजमहल के बारे में लिखा था, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। दरअसल ये शकील बदायूनी के एक नायाब नगमे का बेमिसाल जवाब है। फिल्म लीडर के लिए शकील ने ताजमहल पर आधारित ये रचना लिखी थी।

0: शकील बदायूनी की अनगिनत गजलें हैं जिन्हें कई नामचीन कलाकारों ने गाया है। बेगम अख्तर की गजलों की दुनिया में शकील बदायूनी की शायरी चमकती हुई नजर आती है, जैसे ये गजल।
1: आ

नौशाद के साथ शकील बदायूनी का सबसे ज्यादा काम है, लेकिन अगर सिर्फ नौशाद के साथ की बात की जाए तो शकील बदायूनी की ये दास्तान अधूरी रहेगी।

उस दौर के सिनेमाई गीत हैं जब नायक पियानो पर गाकर अपना दिल टूटने का ऐलान करता था। और इस फहरिस्त में एक से बढ़कर एक गाने शामिल रहे हैं जिनमें से कुछ शकील बदायूनी के हैं। गमजदा गाने लिखने में शकील का कोई जोड़ नहीं था। बहरहाल 20 साल बाद फिल्म का ये गाना सुना जाए।

फिल्म साहब बीवी और गुलाम के एक गाने में तो जैसे शकील बदायूनी ने तिलस्म रच दिया है। इस गाने की विकलता के कहने ही क्या हैं? बस मीना कुमारी का चेहरा आंखों के आगे तैरता है और गूंजती है ये आवाज।

शकील शायरी की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा है और उनकी शायरी हमारे दिलों में उतरती है। और एक शेर मुलाहिजा फरमाइए कि मेरा अज्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, कहीं ये चमन को जला न दे। शकील की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि वो फिल्मों में भी सक्रिय रहे और शायरी की दुनिया में भी सक्रिय रहे, यानी उन्होंने एक साथ दो नावों की सवारी की और दोनों में कामयाब रहे।

20 अप्रैल 1970 को शायरी की दुनिया का ये बेमिसाल सितारा बुझ गया। शकील ने इस फानी दुनिया को अलविदा किया।

लेकिन शकील बदायूनी के जाने के बाद भी शकील की ये दास्तान जारी है। जब जब हम उनके गाने सुनते हैं, हमें उनकी याद आती है, उनकी शायरी हमारी आंखों के आगे तैरती है और हम उन्हें सलाम करते हैं इस गाने के जरिए।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने शायर और गीतकार शकील बदायूनी को। शोध आलेख स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसी बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

तमाम सुनने वालों को नमस्कार। और मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मेरी जिंदगी के राज में एक राज तुम भी हो, मेरी बंदगी की आस में एक आस तुम भी हो। तुम क्या हो मेरे, कुछ हो या कुछ भी नहीं, मगर जिंदगी के काश में एक काश तुम भी हो। मैं दिन हूँ, मेरी शाम हो तुम, मैं नींद हूँ, मेरा ख्वाब हो तुम, मैं लब हूँ, मेरी बात हो तुम, मैं तब हूँ जब मेरे

शाम की दहलीज पर बैठे हैं तेरे इंतजार में, एक दिया जलता है बुझता है तेरे इंतजार में, पूछती है मुझसे अक्सर ये हवाएं तेरा हाल, रास्ते भी थक गए हैं तेरे इंतजार में, आओ आ भी जाओ कि हमने तो जिंदगी लिख दी तेरे इंतजार में, आंखों से मेरी इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती, हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी, तुमसे तो कोई राह निकाली नहीं जाती।

पलकों की मुडेरों पे उतर आते हैं चुपचाप। गम ऐसे परिंदे हैं जो पाले नहीं जाते। जब तक तो था उससे बहुत गहरा था रिश्ता, टूटा है तो अब टुकड़े संभाले नहीं जाते। कुछ लोगों की हर दौर में पड़ती है जरूरत, कुछ लोग कभी दिल से निकाले नहीं जाते।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। दिल के दर्द को छुपाना कितना मुश्किल होता है, टूट कर फिर मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है।

0: जब दूर तक चलो किसी के साथ, तो फिर अकेले लौटकर आना कितना मुश्किल होता है। टूटा हुआ आईना भी किसी ने जोड़ा है क्या? मोहब्बत ने आज तक किसी को छोड़ा है क्या? ये जो सुन रहे हो तुम इतने गौर से मेरी बातें फरियादे, तुम्हारा दिल भी किसी ने तोड़ा है क्या?
1: तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे

कभी ये दुआ कि वो मेरा है, फकत मेरा, कभी ये डर कि वो मुझसे, कि वो मुझसे जुदा तो नहीं, कभी ये इल्तिजा के उसे मिल जाएं सारे जहां की खुशियां, कभी ये खौफ के वो खुश मेरे बिना तो नहीं, कभी ये तमन्ना के बस जाऊं उसकी निगाहों में, कभी ये डर के उसकी निगाहों को किसी ने देखा तो नहीं, कभी ये ख्वाहिश के जमाना हो मुंतजिर उसका, कभी ये वहम के वो किसी से मिला तो नहीं, कभी ये आरजू के वो जो मांगे मिल जाए, कभी ये वसवसा के उसने मेरे सिवा कुछ मांगा तो नहीं।

मुझे ये खुशगुमानी थी कि तुम मेरी सदाओं पर किसी लम्हा पलट कर किसी पल तो मुड़कर देखोगे, बिल आखिर लौट आओगे। मगर कुछ इस तरह तुमने हुनर सीखा नजर अंदाज करने का, मुझसे किनारा करने का, मुझे मायूस करने का। मगर जाने दो, छोड़ो भी, अपनी किस्मत में चाहत नहीं शायद, फकत इतना बता दो कि मोहब्बत हमने की थी ना।

साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: लेट्स स्टार्ट द फन।
1: 3 अक्टूबर 1957 वो सुनहरा दिन जब शुरू हुआ था सुरों और शब्दों का सुनहरा कारवां। 3 अक्टूबर हम मना रहे हैं विविध भारती की सालगिरह।
2: जियो हजारों साल साल के दिन 50,000
1: हवा महल की सुनहरी कहानियाँ, छाया गीत में सजे नरमो नाजुक गीत, सुरों की सरिता, संगीत सरिता, सखी सहेली, दिलों को छूती विविध आवाजें,
3: साज हो तुम आवाज़ों।
1: किसी के लिए विविध भारती यादों का खजाना, किसी के लिए दोस्ती की पहचान, किसी के लिए है विविध भारती परिवार के सदस्य। तो बताइए आपके लिए क्या है विविध भारती? विविध भारती के कौन से कार्यक्रम आपके हमसफर बने? विविध भारती ने आपको क्या सिखाया? विविध भारती से आप कब और कैसे जुड़े? बताइए हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग में। सखियां बताएं अपने दिल की बात, साझा करें विविध भारती से जुड़ी सुनहरी यादें। रिकॉर्डिंग मंगलवार दिन में 11 बजे से। टेलीफोन नंबर 400-24662, एसटीडी कोड 022। प्रसारण 3 अक्टूबर दिन में 3 बजे।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले हरिओम शरण की आवाज में ये भजन आप देते हैं।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों में इशारा हो गया।
3: पंकज उदास की आवाज, शब्दकार मोहम्मद अलवी, संगीत पंकज उदास का, एल्बम मुस्कान।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाजें, आरएस हरियाणवी रतन के बोल हैं, संगीत अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन का, एल्बम तस्वीर।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। वसुंधरा दास की आवाज में समीर का लिखा हुआ गाना, संजीव दर्शन का संगीत, एल्बम तलाश।

काले वस्त्र पर मिलने के सवाल, मिलने की जब रिक्वेस्ट की, डेट मांगी कि लेट्स मीट समवेयर, सवाल वस्त्र पर उनको उदू, उदू है आपका राइवल जो है, कंपटीटर, हर फिल्म में एक जो विलन होता है वो उदू होता है, दुश्मन को भी कहते हैं उदू, सवाल वस्त्र पर उनको उदू का खौफ है इतना।

जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल आपने सुनी, शायर अमीर मिनाई, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम खामोशी। और अब अनुराधा पौडवाल।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

रंग तरंग कार्यक्रम में लीजिए। अब सुनिए कमाल खान की आवाज, संगीत भी इन्हीं का है, बोल महबूब के और एल्बम कल रात।

पहला नशा इस एल्बम का गाना सुनिधि की आवाज में, नक्शलायलपुरी के बोल, संगीत है ललित का। ये है आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार शकील बदायूनी के लिखे हुए गाने। पहला जो गीत है ये 14वीं का चांद फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, संगीत रवि का।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हुए हैं यादों की महफिल इस कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। लीजिए अब सुनिए गृहस्थी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजें, शकील बदायूं के बोल, संगीत है रवि का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं, 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: गीतकार शकील बदायूनी के लिखे हुए गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। फूल और पत्थर इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, संगीत है रवि का।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों की आँखों में इशारा हो गया।
3: दो बदन फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में।

0: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए उड़न खटोला फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत नौशाद का।
1: चले आज तुम जहां से,

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: गीतकार शकील बदायूनी के लिखे गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में, संघर्ष फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में।

बिन बादल बरसात, ये उस फिल्म का नाम है जिसका गीत अब आप सुनेंगे हेमंत कुमार की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल, संगीत हेमंत कुमार का।

गीतकार शकील बदायूनी के लिखे गाने आप सुन रहे हैं यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत रवि का।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सुरीला सफर कार्यक्रम में। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज फेसबुक पर जो

टेक्स्ट जो इबारत हमने पोस्ट की है वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। हमारे संस्कारों ने हमें ये सिखाया है कि किसी भी काम की शुरुआत ईश्वर का नाम लेकर की जाती है। किसी अनजान शहर में जब कोई अकेला व्यक्ति अपने दिल और निगाहों को चौकन्ना रखकर जिंदगी की तलाश करता है और उससे घर आने की गुजारिश करता है, तब कई बार परिस्थितियां बहुत विपरीत होती हैं। रात भीगी भीगी हो, नदी नारे उफान पर हो, चंदा की चांदनी भी सीने में जलन पैदा करती हो, तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना से हमें ऐसा सुकून मिलता है जैसे तपती गर्मी में तरुवर की छांव हो। साथ ही ये आश्वासन भी मिलता है कि एक दिन सुखों की गागर हमारा स्वागत जरूर करेगी। तब सीने की जलन शांत होकर कोई गाता सा प्रतीत होता है और मन ख्वाबों के गलियारों में सो जाता है। ये आज की इबारत है, आपने पढ़ी और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी, प्रार्थना से संबंधित बातें लिखी और आज के गानों की क्या खासियत है ये भी उन्होंने बातें लिख करके भेजी। हमारे एक साथी की बात है कि आज की इबारत भारतीय जीवन दर्शन को चिन्हित करता आदर्शों का समागम है। ये सत्य को उजागर करता है कि भारतीय मानस में हर यात्रा चाहे वह भौतिक हो या जीवंत आस्था के सहारे ही शुरू होती है। विपरीत परिस्थितियों में जब प्रकृति भी बैरी लगने लगे तब प्रार्थना इंसान के लिए अंतिम और सबसे सशक्त सहारा बनती है। ये इबारत अकेलेपन के दर्द, आस्था की शक्ति और उम्मीद के सूर्योदय की एक भावपूर्ण यात्रा है। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि आज की इबारत जीवन की यात्रा का सुंदर चित्रण है, जहां हर कदम पर विश्वास, संघर्ष और उम्मीद साथ चलते हैं। जब इंसान किसी अनजान राह पर होता है तो सबसे बड़ा सहारा उसके संस्कार और ईश्वर पर उसकी आस्था होते हैं। ईश्वर का स्मरण मन को वैसी ही शीतलता देता है जैसी तपती दोपहर में किसी घने तरुवर की छांव। यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है कि एक दिन सुखों की गागर भी हमारे द्वार पर दस्तक देगी। धन्यवाद आपका। जी हां, आस्था की बात तो है ही, लेकिन साथ ही आज के गानों की एक और विशेषता है जो आपने समझ ली है। हम दोनों फिल्म का गाना सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं। लता जी की आवाज है इसमें, सही लुधियानवी के बोल हैं और संगीत जयदेव का। जी हां, आज संगीतकार जयदेव को हम याद कर रहे हैं।

एक हमारे साथी की ये बात है कि सावन का पहला सोमवार देवों के देव महादेव की जय और इधर सुरीले सफर में जयदेव की सुरीली धुनों से सजे गीतों का आगमन, क्या संयोग बना है। आज तो कार्यक्रम में जयदेव का उद्घोष रहेगा। एक साथी लिख रहे हैं कि सच्ची भक्ति और इंसानियत इंसान को ऊंचा उठाती है। भगवान किसी से मिलावट या दिखावा नहीं मांगते, बल्कि वे हमेशा सच्चे और ईमानदार भक्त के साथ रहते हैं। सच्ची भक्ति विश्वास इंसान के दिल से अहंकार, ईर्ष्या और नफरत को मिटाकर दया, प्रेम और इंसानियत जगाती है। ये मनुष्य को नैतिक और अच्छा इंसान बनाती है, जिससे समाज में उसका और दूसरों का जीवन सुधरता है। एक हमारे साथी की ये बात कि आज श्रावण मास के पहली सोमवारी है, इसलिए भोलेनाथ के मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे हैं, इसलिए सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊंगा। विविध भारती के तमाम मित्रों पर बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, यही मेरी जो है शुभकामना है, ऐसा इन्होंने लिखा है। और एक हमारे साथी की बात कि भक्ति की शक्ति से पूर्ण सुक्ति चित्रित करती इबारत की पंक्ति है, आसक्ति की युक्तियों में भटकते व्यक्ति के विभिन्न उक्तियों को युक्ति युक्त तरीके से ईश्वर सम्मुख समर्पण का मार्ग दर्शाती इबारत है, संगीतमय सफर आनंदित करेगा, ये इस बात का हमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। जी धन्यवाद आपका। चलिए अब हम अपनी जो इबारत है उसके अनुसार ही हम आगे बढ़ रहे हैं। संगीतकार जयदेव के संगीतबद्ध किए गाने भी हैं और हम आपसे ये भी एक सवाल करना चाहेंगे कि जो ईश्वर की भक्ति है या ईश्वर का नाम है या यूं कहें कि उनके ऊपर जो विश्वास है, वो कब कब कौन सी परिस्थितियों में आपको बहुत संबल देता है, कब आपको लगा कि बस उनके सहारे ने हमें बहुत बड़ा संबल दिया, ये आप हमें बता सकते हैं। घरोंदा फिल्म का गाना भूपिंदर सिंह की आवाज में, अमोल पालेकर पर फिल्माया गया है, बोल किसके हैं ये आप बताइए हमें।

घरोंदा फिल्म का गाना, गुलजार का लिखा हुआ ये गाना आपने सुना। हमारे एक साथी की ये बात है कि जब कोई अनजान शहर में अकेला अपनों से दूर जिंदगी की तलाश में निकलता है तो यही गाना याद आता है, एक अकेला इस शहर में रात में है, रात में और दोपहर में। और जब अपनों की याद सताती है तो सीने में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है, तब सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, ये गीत हमें याद आता है। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि दिग्गज संगीतकार जयदेव, उनकी जन्म जयंती पर उन्हें विनम्र अभिवादन। बेहतरीन काव्य के साथ मेलोडी, मुश्किल फिर भी मनमोहक भावना प्रधान धुनों से सजे उनके गीत धीरे धीरे हमारे नस नस में समा जाते हैं। उनका संगीत शास्त्रीय रागों से परे, बुद्धि को चकरा देने वाला परंतु मन को संतोष और आनंद देने वाला। उनकी बहुत सारी अनुपम सुंदर रचनाएं आज हम सुन रहे हैं। एक साथी ने यह भी लिखा है कि आज की इबारत संगीतकार जयदेव की यादों के फूलों से बुनी जाने वाली है, बुनी जा रही है, तब हम यही कहेंगे उनके संगीत से रचे गीत सुनकर जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे आपके मन को मिलेगा। और विविध भारती के लिए भी कहेंगे कि तुम्हें देखते हैं सुनते हैं तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानते हैं सुनते आए हैं, अगर तुम हो संगीत सागर हम प्यासी नदी समान श्रोता हैं। ये हमारे श्रोताओं की बातें हैं, बहुत धन्यवाद आपका। एक अकेला इस शहर में ये गाना हमने सुना। आप ऐसी कोई याद हो आपकी कि आप किसी शहर में, नए शहर में गए हो, जहां रहते हैं उस शहर को छोड़ करके किसी नए शहर में गए हो और वहां आपने बहुत अकेलापन महसूस किया, फिर ऐसा

क्या हुआ कि आपके साथी बनते गए, मिलते गए, कारवां बनता गया और फिर वो शहर अच्छा लगने लगा, ये बात आप हमें बता सकते हैं। चलिए, प्रेम पर्वत फिल्म का ये गाना आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत आप जानते ही हैं जयदेव का है, गीतकार कौन है ये आप बताइए।

कि जिंदगी उतार चढ़ाव से भरा हुआ, बहुत बार परिस्थितियां डगमगाती हैं, खासकर जब लोगों का नहीं भगवान के भरोसे पर रहता है, पर कुछ ऐसी होनी होती है कि जिससे विश्वास मजबूत ही हुआ है। कठिन समय में भगवान पर विश्वास और अधिक मजबूत होता चला जाता है। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है, देखिए अब वो जो हम पढ़ रहे थे वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए कुछ देर बाद और आपके जो कमेंट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। दूरियां फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, अनुराधा पौडवाल और भूपिंदर सिंह की इसमें आवाजें हैं, सुदर्शन फाकीर के बोल हैं, संगीत जयदेव का। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

प्रेम पर्वत फिल्म का ये गाना आपने सुना, जानिस और अख्तर का लिखा हुआ ये गाना है। एक हमारे साथी की बात है कि एक अकेला इस शहर में, जो गीत हमने कुछ देर पहले आपको सुनवाया था, इसके बारे में लिखा है कि गीतकार गुलजार ने शहरी अकेलेपन को बेहद सारे लेकिन दिल को चीर देने वाले शब्दों में ढाला है। इन उम्र से लंबी सड़कों को हमने तो ठहरते देखा नहीं, जैसी पंक्तियां शहर की रफ्तार और इंसान की बेबसी को बेहतरीन तरीके से बयां करती है। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, महानगरों के उस मानसिक तनाव और खालीपन को दिखाता है। एक साथी ये लिखते हैं कि हमारा तो सफर ऐसे ही विविध भारती के संग कटता रहता है, काफी अच्छा लगता है सुनते हुए विविध भारती, दिन निकल जाता है। एक साथी ने ये भी लिखा है

उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि एक नई सुबह देखने को मिली। अपने मन की व्यथा को पूरे मन से समर्पित करते हैं और आत्मविश्वास से भर उठता है मन और शांति का एहसास होता है। सुख में भी ईश्वर को याद करना बहुत जरूरी होता है। एक हमारे साथी की ये बात, जो प्रेम पर्वत फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि बहुत मधुर, दिल को स्पर्श करने वाली देशी धुन पर आधारित प्रेम पर्वत का गीत मानो प्रकृति के घेरे में खड़े होकर सुन रहे हैं, मेरे सर्वकालिक पसंदीदा गानों में से एक है। और एक साथी लिख रहे हैं कि संगीतकार जयदेव का संगीत शोर नहीं बल्कि आत्मा की धीमी सी धुन था। उन्होंने कम फिल्मों में संगीत दिया लेकिन जो भी रचनाएं दी वे समय के साथ और भी अमर होती चली गई। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी कि ईश्वर पर मेरा अटूट विश्वास है, जब भी मुश्किल में होती हूं तो सहारा जरूर देते हैं, हर मुश्किल से वही तो हमें बाहर निकालते हैं। और बाकी जो साथी हैं हमारे, उन्होंने ये बात लिखी है कि आज सावन का पहला सोमवार है तो हम ईश्वर की आराधना में लगे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद आपका। और अब मुझे जीने दो इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, सही लुधियानवी के बोल। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

बल्कि जीवन का स्नेहिल निमंत्रण है। ये याद दिलाता है कि खुशियां अक्सर दस्तक देती है। इस गीत की हर लाइन इतनी प्यारी है कि इस गीत को पूरा सुने बिना तक कान वहीं पर लगे रहते हैं। और हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि धीर गंभीर स्वर में खूबसूरत अंदाज में गाया हुआ दूरियां फिल्म का जो गाना है ये बहुत ही अर्थपूर्ण गाना है। और एक साथी ने ये बात लिखी कि दूरियां फिल्म का ये जो गाना है ये मेरी लिस्ट में भी शामिल था और उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्म आया गया है। और एक साथी की ये बात है कि प्रसिद्ध संगीतकार जयदेव जी की जयंती है। जयदेव जी के संगीत में दैनिक जीवन में आने वाले विभिन्न पायदानों परिस्थितियों को संगीत में ढाला है। उनके गीत हमें सुकून मिलता है। उनके गीत कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। जब हमें इश्क सताता है तो हंस लेता हूं। चले आ रहे हैं किनारे किनारे, ये उनके जो गीत हैं उनकी कुछ कुछ लाइनें उन्होंने लिखी है। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं गर बुरा ना लगे। मंजू जी, हमें तो मुंबई आकर ऐसा ही लगा, बिल्कुल भी हमें अजनबी नहीं लगा। जी हां, ये दूसरे शहर से जब मुंबई आए तो मुंबई के बारे में इन्होंने ये बात लिखी। और एक साथी ने ये बात लिखी कि आज की इबारत में सुकून और आश्वासन की ये जो बातें हैं ये हमें बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद आपका। चलिए अगला गाना सुनवाते हैं, रेशमा और शेरा, इस फिल्म का ये गाना है और लता मंगेशकर की इसमें आवाज है। वहीदा रहमान और सुनील दत्त पर फिल्म आया गया ये गाना। गाना काफी लंबा है, शायद हम ये गाना आपको पूरा तो नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन जितना भी हम सुनवा पाएंगे आप सुनिए।

रेशमा और शेरा इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, वहीदा रहमान सुनील दत्त पर फिल्माया गया। एक हमारी जो साथी हैं वो लिख रही हैं कि लिखते हैं कि जयदेव जी के गानों में शर्मा बंधुओं का एक भजन नुमा जो गाना है, जैसे सूरज की गर्मी में तपते हुए मन को मिल जाए तरुवर की छाया। इस गाने में इतनी कशिश है कि कोई भी व्यक्ति 3 मिनट के लिए रुक कर इसे सुनता ही है। जयदेव जी ने सरल लेकिन आकर्षक धुन बनाई है और सभी की तरह मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है और आज के कार्यक्रम में ये जो गाना है ये बजने वाला है। जी हाँ, अगला गीत है ये और भजन नुमा ये गीत आप जरूर सुनेंगे। एक हमारे साथी की बात है कि अपना स्थान कभी नहीं भूलता। मेरी बेटी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मुंबई आई, फिर वहां ही उसकी जॉब भी लग गई, फिर शादी भी मुंबई में हो गई, लेकिन अभी भी उसका मन नहीं लगता। मुंबई की भागम भाग वाली लाइफ और फ्लैट वाली लाइफ में वो बहुत मायूस रहती है। हमारे यहाँ पंजाब में बड़े घर और ज्यादा भागम भाग नहीं है तो यहाँ उसे पसंद आता है। जी हाँ, ये तो सही बात है कि पूरा जीवन या फिर यूं कहें कि शुरुआती जीवन जहां हमने बिताया है वही जगह और वही कल्चर वही बातें हमें बड़ी पसंद आती है। तो आप कोशिश करें अपनी बेटी को या तो एडजस्ट करने के लिए या फिर से पंजाब लाने के लिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। और एक बात हमारे साथी की यह है कि आज के जो गाने हैं वो शांति से सुनने लायक है और वही मैं कर रहा हूं, इसलिए एकदम शांति से सुरीला सफर ये कार्यक्रम मैं सुन रहा हूं। और एक साथी की ये बात कि मुझे जीने दो फिल्म का जो गाना आपने सुनाया वो मेरी लिस्ट का 5वां गीत था जो आपने शामिल कर लिया है। बहुत धन्यवाद आपका। जी आपका भी धन्यवाद कि आप ये बातें लिखते हैं हमें और इनकी जानकारी देते हैं। चलिए, परिणय फिल्म से ये रचना शर्मा बंधु की आवाजें हैं।

0: ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया।
1: एक साथी की ये बात है कि जयदेव जी चले गए, लेकिन उनके सुर आज भी हवा में घुली उस प्रार्थना की तरह है जो हर सुनने वाले के दिल को एक अनकही शांति से भर देते हैं। उन्होंने कभी भी लोकप्रियता की चमक के पीछे अपने संगीत की आत्मा को नहीं खोया। उनके लिए हर धुन एक साधना थी, हर गीत एक प्रार्थना और हर स्वर ईश्वर को समर्पित एक दीपक। इसके लिए उनके गीत आज भी समय की धूल से अछूते हैं और हर पीढ़ी के मन में उसी ताजगी और पवित्रता के साथ गूंजते हैं। और एक साथी की ये बात है, रेशमा और शेरा फिल्म का जो गीत हमने आपको सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि जयदेव जी का संगीत में क्लासिक टच इसमें साफ झलकता है और लता जी की आवाज का तो क्या ही कहना। और मेरे लिस्ट का ये छठा गीत था जो शामिल हो गया। और लिखा है कि बाल कवि बैरागी की रचना, जयदेव जी का संगीत, लता जी की मधुर आवाज और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया गाना, ये बड़ा ही एक अद्भुत एक संयोग है। और एक हमारे साथी की ये बात है कि मुझे मेरे स्कूल की जो प्रेयर थी यानी कि प्रार्थना बहुत अच्छी लगती थी, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, और इस तरह ये जो प्रार्थना थी ये हमें बड़ी ही प्रिय लगी। और एक साथी लिख रहे हैं कि अपनी निरंतर नई विषय वस्तु पर संचालन के कारण सुरीला सफर कार्यक्रम सबसे आकर्षक लगने वाला कार्यक्रम है और VBS का सबसे सफल लोकप्रिय कार्यक्रम अब ये बन

गया है, नजर ना लगे इसकी गरिमा बरकरार रहे। और एक साथी लिख रहे हैं, जयदेव जी का संगीत मनमोहक हृदय स्पर्शी होता है, संभावित चयन का जो ये गीत है ये आपने शामिल किया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, दो बूंद पानी इस फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। दो आवाजें, मुख्य आवाजें इसमें हैं, वो किसकी है ये आप हमें बताइए, सिमी गरेवाल और मधु चंदा पर फिल्माया गया ये गाना।

मीनू पुरुषोत्तम, परवीन सुल्ताना और साथियों की आवाजों में ये गीत आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि ये जो इबारत है ये केवल ईश्वर प्रार्थना का वर्णन नहीं करती बल्कि मनुष्य के भीतर बसे उस अटूट विश्वास की कथा कहती है जो सबसे कठिन राहों में भी उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ता। अजनबी शहर, भीगी रात, उफनती धाराएं और चांदनी की कसक जीवन के उन क्षणों के प्रतीक है जब हर दिशा मौन हो जाती है। ऐसे समय में प्रार्थना शब्दों से अधिक आत्मा का संवाद बन जाती है जो भय को धैर्य और प्रतीक्षा को विश्वास में बदल देती है। यही आस्था अंततः मन को यह अनुभूति कराती है कि हर अंधेरी रात की नेति उजाला है और हर अधूरी यात्रा के अंत में एक ऐसा सवेरा प्रतीक्षा करता है जहां पीड़ा स्मृति बन जाती है और जीवन फिर से मधुर संगीत की तरह बहने लगता है। और हमारे साथियों ने ये बातें लिखी कि परिणय का जो शर्मा बंधु का गाना भी है, भजन भी है और निर्गुण भी है, वाकई सुनते ही मानसिक ऊर्जा जागृत हो जाती है। संशय मन को शक्ति और सुकून देने वाली सर्वश्रेष्ठ रचना है ये। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जैसे सूरज की गर्मी से भजन प्रफुल्लित हो गया, खूब खूब आभार, मन को बहुत ठंडक हो गई इस भजन को सुनकर के। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि सूरज की गर्मी से शर्मा बंधु द्वारा गाया गया, ये एक प्रोग्राम में इनसे मिली थी मैं, और जितनी मधुर आवाज है उतना ही तेज इनके चेहरे

पर भी है, ऐसी बात इन्होंने लिखी है। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। गमन फिल्म से ये अगली जो है ये रचना है। बोल इसमें शहरयार के हैं और संगीत जयदेव का है। फारूक शेख पर ये फिल्माया गया है।

दो बूंद पानी फिल्म का जो गाना सुना उसके बारे में हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि वो गीत सुनकर अपने गांव का पनघट मुझे याद आ गया। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि बचपन में इस गीत पर हमने बहुत डांस किया था। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण में ही निहित है, जब आत्मा अपने अहंकार को त्याग कर परमात्मा की शरण में जाती तभी उसे असीम शांति और मुक्ति का मार्ग मिलता है। चलिए अगला और अंतिम गाना, आलाप फिल्म का ये गाना यशुदास की आवाज में। पर्दे पर कौन गाता है आप बताइए।

आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक। आपने कार्यक्रम को ध्यान से सुना, आपने प्रतिक्रियाएं हमें दी, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजें, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है एसडी बर्मन का।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती,
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए ये रास्ते हैं प्यार के। इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है रवि का।

ये दिल किसको दूं, ये फिल्म का नाम है। आवाज मोहम्मद रफी की, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

चूमता बल खाता वो झूमता बल खाता वो झूमता बल खाता हुआ

0: प्यार का आलम कभी इकरार का आलम
1: प्यार का आलम
0: प्यार का आलम।
2: वो कॉमिक क्रिएटर है।
3: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
2: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
3: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
2: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
3: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
2: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

0: विविध भारती पर।
1: शकील बदायूनी का लिखा और रवि का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम मुलजिम।

मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाजों में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, मदन मोहन का संगीत, फिल्म का नाम शराबी।

0: हम चांद आत्मा के,
1: हाय हाय गुरूर इतना,
0: गुरूर इतना,
1: सुफ ये अदा है ये नशा।
0: हाँ हाँ।

0: हाय,
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय,
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। अगला गाना रुस्तम सोहराब, इस फिल्म से सुरैया की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है सज्जाद हुसैन का।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो, 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: ये है सेहरा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ें, हसरत जयपुरी की बोल, संगीत रामलाल का।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को, सभी बहनों को और सखा भाइयों को, सभी श्रोताओं को नमस्कार। दीपा जी, आपको भी नमस्कार।
2: हमारे सुनने वाले सभी सखियों, सहेलियों, श्रोता भाइयों को और चंचल वर्मा आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: मैं इंतजार कर रही थी आपके हेल्दी नमस्कार का। अभी बात हेल्थ की होने वाली है तो आज जो हम रेसिपी बताने वाले हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है और प्रादेशिक व्यंजन की चर्चा इस दिन की जाती है, तो नया महीना शुरू हुआ है और नए महीने से हम नए प्रांत को लेकर कुछ रेसिपीज लेकर आए हैं। अभी हम चल पड़े हैं पश्चिम बंगाल की ओर, तो वहां का एक हेल्दी स्नैक्स, मतलब हल्की फुल्की भूख के लिए जो खाया जाता है ना, जो आपको लगे भाई कुछ हल्का फुल्का सा ही खाना है ताकि पेट पर भार ना हो।
2: तो भाई ये जो खास तौर पे शाम का वक्त रहता है
1: जी,
2: जब हम मन कर जाता है एकदम चाय पकौड़ी या समोसे, तो उसके बदले में एक विकल्प देंगे,
1: हाँ
2: वो भी हेल्दी।
1: बिल्कुल, और वो हेल्दी विकल्प है झालमुरी, जिसके बारे में बहुत सारे व्यंजन आने शुरू हो चुके हैं कि अलग अलग प्रांतों में क्या नाम है, हमारे श्रोता ये भी लिखकर भेज रहे हैं, किस किस तरह के मसाले डालकर उसको थोड़ा सा बदलाव किया जाता है वो भी लिखकर भेज रहे हैं, और पूरी रेसिपी उसकी जो

0: बनाने की विधि है वो भी श्रोताओं ने हम तक पहुंचाई है।
1: यानी कि हमेशा नया कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए।
0: हाँ, तो भाई आपके प्रांत में जिस तरह बनाई जाती है कि उसे नए तरीके से कैसे बनाना है आप ये भी सीख सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं जो रूटीन से हटकर हम नया सीखते हैं हर दिन में
1: जी,
0: उसके बारे में भी हमारे श्रोता हमें लिखकर जरूर बताएं। और बात जब सेहत की चली है तो एक शिशु नवजात जब जन्म लेता है तो उसकी सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज है माँ का दूध।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है 1 तारीख से लेकर 8 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं।
1: और जब छोटा बच्चा होता है तो उसको सुलाया जाता है कहानी सुनाकर, लेकिन बात सिर्फ छोटों की नहीं हो रही, यहाँ तो हम सब बड़े बड़ा मन लगा के कहानी सुनते हैं, है ना।
0: तो आपका इशारा कथा सुधा की ओर है।
1: बिल्कुल।
0: तो आज अशिक्षित हृदय कथा का दूसरा भाग हमारे श्रोता सुनेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं सेहत की, यानी कि एक शिशु के स्तनपान को लेकर जो उसके लिए बहुत जरूरी है। एक शिशु के लिए सबसे ज्यादा सेहतमंद चीज होती है माँ का दूध, और माँ का दूध शिशु को पलने के लिए, उसे बड़े होने के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्वों का एक बेमिसाल मिश्रण होता है। साथ ही इसमें बहुत बड़ी तादाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, तो शिशु में बीमारियों से लड़ने के लिए वो मदद करती है और एक शिशु को स्वस्थ भी रखता है माँ का दूध।
1: बिल्कुल सही कहा चंचल आपने। और जन्म देने के बाद माँ की शुरुआती दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं।
0: हाँ।
1: और इस दूध में जो जैसा आपने बताया रोग प्रतिकारक और पोषक तत्वों की भरमार होती है, इसलिए इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। तो दो नाम अब आप लोगों ने सीख लिए, कोलेस्ट्रम और लिक्विड गोल्ड।
0: हाँ।
1: और ये इस शिशु के लिए बहुत आवश्यक है, नवजात शिशु के लिए।
0: बिल्कुल, आप नया क्या क्या सीख रही हैं इसके बारे में ही बता रही हैं।
1: बताते चलेंगे और याद दिलाते चलेंगे, देखिए आज हमने क्या क्या सीखा।
0: तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जो शुरुआती 3 से 5 दिन तक माँ के स्तन में जो दूध आता है उसमें थोड़ा सा बदलाव होता रहता है, और ये जो दूध आता है बाद में 3 से 5 दिन की बात कर रहे हैं शुरू के 3 दिन को छोड़कर, तो ये कोलेस्ट्रम की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा सफेद भी होता है और पतला होता है, और इस दूध में मिठास, पानी, प्रोटीन, वसा, ये तमाम तरह की चीजें होती हैं जो कि एक शिशु को बढ़ने के लिए यानी उसके विकास के लिए सभी जरूरी चीजें होती हैं।
1: बिल्कुल। और ये कई तरह के संक्रमण जो बच्चे में खतरा हो सकता है
0: हाँ।
1: कम करने का काम करता है और उन्हें स्वस्थ रखता है, लेकिन स्तनपान के बारे में सही ज्ञान का भी बहुत अभाव है।
0: बिल्कुल।
1: उसका कारण कई हो सकते हैं, ये भी देखा जाता है कि छोटे बच्चे पोषक को या किसी और संक्रमण का शिकार कई बार हो जाते
0: हाँ,
1: हैं।
0: बिल्कुल, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं
1: जी।
0: वो।
1: और खास तौर पर वे महिलाएं जो पहली बार माँ बनी हैं और उनके पास परिवार को उसके परिवार में कोई बड़े नहीं है या कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें समझा सके, तब भी ये जो समस्या है सामने आ जाती है, इसलिए इन दोनों इस प्रकार की जानकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध कराई जाती है।
0: तो चलिए अब गीत सुन लेते हैं।
2: इतने बड़े जहां में

0: इतने बड़े जहां मैं तुझको अकेला छोड़ूं कैसे, और एक माँ की भावना भी यही रहती होगी ना, जब एक नया शिशु जन्म लेता है तो माँ उसे सबसे बचाकर रखती है, उसे पूरा पोषण देना चाहती है, पूरा संरक्षण देना चाहती है। और शायद यही वजह है कि हर माँ भी चाहती है कि उसकी शुरुआत स्तनपान से हो उस बच्चे की, और वो बहुत स्वस्थ रहे। और चिकित्सक भी यही कहते हैं कि शुरुआती जो 6 महीने होते हैं उसमें बच्चे को सिर्फ माँ के दूध पर ही निर्भर रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, और जुड़ाव भी देखो वहीं से शुरू होता है।
0: हाँ।
1: जो बिल्कुल जन्म जन्म तक चलता है शायद।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: और आगे जो हम बात कर रहे थे स्तनपान के बारे में, कि ये प्रक्रिया, स्तनपान की जो प्रक्रिया है, शिशु के लिए संरक्षण और संवर्धन का काम करती है। ये दूध शिशु के लिए केवल पोषण नहीं बल्कि अमृत के समान है। शिशु के लिए स्तनपान एक रक्षा सूत्र की तरह काम करता है। नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक शक्ति जन्म से नहीं होती बल्कि माँ के दूध से ये ताकत शक्ति बच्चों को मिलती है। माँ के दूध में लैक्टोफॉर्मिन नाम का एक तत्व होता है जो बच्चों की आंतों में लौह तत्व को बांध लेता है, जिसके कारण आंतों में रोगाणु फिर पनप नहीं पाते हैं। और माँ के दूध में सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं, जैसे एंटीबॉडीज, हार्मोन्स और एंटीफंगल और रोग प्रतिरोधक शक्ति, और साथ में कई अलग अलग तरह के तत्व मौजूद होते हैं जो नवजात के बेहतर विकास और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए एक शिशु के लिए सर्वोत्तम ये आहार है। स्तनपान से शिशु के बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होती है, साथ ही माँ और शिशु के लिए एक इमोशनल बॉन्ड यानी कि भावनात्मक रिश्ता भी प्रगाढ़ होता है।
0: और जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इस दूध में वसा है, प्रोटीन है, मिठास है, ये सभी चीजें होती हैं। बहुत सारे लोग को ये लगता होगा, और कई बार जो बच्चियां हैं जो पहली बार गर्भ धारण करती हैं, माँ बनती हैं, तो उन्हें भी मन में शायद ये लगता होगा कि भाई सिर्फ दूध पीने से ही बच्चे को पूरा पोषण कैसे मिलेगा, और कई बार पानी पिलाएं या कुछ और खिलाएं ऐसी कोशिश की जाती है, लेकिन माँ का दूध अपने आप में पूर्ण संपूर्ण आहार होता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने चंचल। और माँ के दूध की अहमियत से लगभग सभी लोग भली भांति परिचित तो रहते हैं, फिर भी देखा गया है कि कुछ महिलाओं में ये भ्रांति घर कर जाती है कि स्तनपान की वजह से उनके शरीर की सुडौलता पर विपरीत असर होगा या उनका फिगर बिगड़ जाएगा। ऐसे
0: हाँ,
1: सोच जो नई लड़कियां होती हैं उनके मन में आता है, और इसी वजह से वे स्तनपान से परहेज करने लगती हैं। माताओं के इसी भ्रम को दूर करने के लिए, स्तनपान के प्रति जागरूकता लाने और स्तनपान के महत्व को समझने के लिए, इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत 1991 में हुई, और अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है।
0: और दीपा, माँ का दूध केवल पोषण नहीं, हम कह सकते हैं कि जीवन धारा, जैसे आपने कहा ना किसे लिक्विड गोल्ड कहते हैं, तो जीवन धारा भी है। इससे न केवल एक शिशु बल्कि माँ के स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। और चिकित्सक भी सलाह देते हैं कि माँ को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बच्चे को सेहत नहीं चाहिए, एक गर्भवती स्त्री जिसने 9 महीने तक उस शिशु को पेट में रखा है और बाद में बहुत सारी चीजों की जब कमियां आती हैं तो वो स्तनपान कराना ही चाहिए, इससे उनको स्वास्थ्य में बेहतरी होती है। प्रसव के बाद बहुत सारी शिकायतें होती हैं एक स्त्री को, इससे भी मुक्ति मिल जाती है उन्हें। और ये कहते हैं कि एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक का भी काम करता है।
1: और सबसे बड़ी बात तो ये है ना चंचल, कि माँ और शिशु के बीच का ये जो भावनात्मक संबंध है ये मजबूत करने का एक बहुत सुलभ साधन है।
0: तो चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले एक गाना सुन लेते।
1: चलिए।

0: इस खूबसूरत से गीत के बाद में मुझे लगता है कि अब हमें कहानी सुननी चाहिए, और एक वो कहानी जो इस समय अधूरी है। इसका पहला भाग हमारे श्रोता पहले सुन चुके हैं, आज इसका दूसरा भाग हम सुनवा रहे हैं। सुनते हैं कहानी अशिक्षित हृदय का दूसरा भाग।
1: चलिए,
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अशिक्षित का हृदय। आइए आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। अशिक्षित का हृदय। इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना, 55 वर्षीय मनोहर सिंह फौज की सेवा से निवृत्त होकर गांव में अब अकेला रहता है। टूटे फूटे मकान में रहने वाले मनोहर ने कुछ समय पहले खेती कराने

0: के लिए जमीन ली थी, जिसमें उसे नुकसान हो गया और समय पर लगान न दे सकने के कारण उसे अपने घर के द्वार पर लगे नीम के वृक्ष को ठाकुर शिवपाल सिंह के पास गिरवी रखना पड़ा। समय सीमा के बाद शिवपाल सिंह उस पेड़ को कटवाने का हुक्म देता है और मनोहर उस नीम के पेड़ को अपनी जान से भी अधिक चाहता है और उसे बचाने का हर संभव प्रयास करता है। गांव का एक बालक तेजा उसकी भावना को समझता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। मनोहर पेड़ को बचाने के लिए ठाकुर से 8 दिन की और मोहलत लेता है, परंतु पैसे की व्यवस्था वो नहीं कर पाता है। आज मियाद खत्म होने वाली है, क्या मनोहर सिंह नीम का पेड़ बचा पाएगा जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है? आइए सुनते हैं आगे।
1: एक सप्ताह बीत गया, आज 8वां

0: और उसे बचाने का हर संभव प्रयास करता है। गांव का एक बालक तेजा उसकी भावना को समझता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। मनोहर पेड़ को बचाने के लिए ठाकुर से 8 दिन की और मोहलत लेता है, परंतु पैसे की व्यवस्था वो नहीं कर पाता है। आज मियाद खत्म होने वाली है, क्या मनोहर सिंह नीम का पेड़ बचा पाएगा जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है? आइए सुनते हैं आगे।
1: एक सप्ताह बीत गया, आज 8वां दिन है। मनोहर सिंह रुपयों का प्रबंध नहीं कर सका। वो समझ गया कि अब पेड़ का बचना कठिन है, पर साथ ही वो ये भी निश्चय कर चुका था कि उसके जीते जी कोई उसको काट नहीं सकता। उसने अपनी तलवार भी निकाल ली और साफ करके रख ली थी। अब वो हर समय पेड़ के नीचे ही पड़ा रहता था और तलवार सिरहाने रखी रहती थी। 8वें दिन दोपहर के समय शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को बुलवाया। मनोहर सिंह तलवार बगल में दाबे अकड़ता हुआ ठाकुर साहब के सामने पहुंचा। शिवपाल सिंह और उसके आसपास बैठे हुए लोग बुढ़े की सज धज पर मुस्कुराए। शिवपाल सिंह ने कहा,
2: सुनते हो मनोहर सिंह, एक सप्ताह बीत गया, अब पेड़ हमारा हो गया, आज हम उसकी कटाई शुरू कराते हैं।
3: जी आपको अधिकार है, मुझे रुपया मिलता तो दे ही देता, और अब भी यदि मिल जाएगा तो दे दूंगा। मेरी नीयत में बेईमानी नहीं है, मैं फौज में रहा हूँ, बेईमानी का नाम नहीं जानता।
2: अब हम उसे कटवा लेना?
3: ये मैं कैसे कहूँ, आपका जो जी चाहे कीजिए।
1: ये कहकर मनोहर सिंह उसी प्रकार अकड़ता हुआ ठाकुर शिवपाल सिंह के सामने से चला आया और अपने पेड़ के नीचे चारपाई पर आकर बैठ गया। दोपहर ढलने पर 4-5 आदमी कुल्हाड़ियां लेकर आते दिखाई पड़े। मनोहर सिंह झट म्यान से तलवार निकालकर डट कर खड़ा हो गया और ललकार कर बोला,
3: रुको, संभल कर आगे बढ़ना, जो किसी ने भी पेड़ में कुल्हाड़ी लगाई तो उसकी और अपनी जान एक कर दूंगा।
1: मजदूर बुढ़े की ललकार सुनकर और तलवार देखकर भाग खड़े हुए। जब शिवपाल सिंह को ये बात मालूम हुई तब पहले तो वो बहुत हंसे, परंतु पीछे कुछ सोचकर उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और बोले,
2: इस बुढ़े की शामत आई है, हमारा माल है, हम चाहे काटें चाहे रखें, वो कौन होता है? चलो तो मेरे साथ, देखो वो क्या करता है। क्यों मनोहर
3: जी,
2: ये क्या बात है?
3: बात केवल इतनी है कि मेरे रहते इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये मैं जानता हूं कि अब ये पेड़ आपका है, मगर ये होने पर भी मैं इसे कटता हुआ नहीं देख सकता।
2: पर हम तो इसे कटवाए बिना न मानेंगे।
3: ठाकुर साहब, जो आप सच्चे ठाकुर हैं तो इस पेड़ को कटवा ले, और जब मैं असली ठाकुर होऊंगा तो इसे कटने न दूंगा।
2: देखते क्या हो, इस बुड्ढे को पकड़ लो और पेड़ काटना शुरू करो।
1: ठीक उसी समय तेजा सिंह दौड़ता हुआ आया और मनोहर सिंह को कुछ रुपए देकर बोला,
4: लो चाचा ये रुपए लो, अब तुम्हारा पेड़ बच गया।
3: कहिए ठाकुर साहब, रुपए लेना हो तो ये हाजिर हैं, और जो पेड़ कटवाना हो तो आगे बढ़िए।
2: रुपए तो अब हम ले नहीं सकते, रुपए देने की मियाद बीत गई, अब तो पेड़ कटेगा।
3: ठीक है, अब मालूम हुआ कि आप केवल मुझे दुख पहुंचाने के लिए पेड़ कटवा रहे हैं। अच्छा कटवाइए, मुझे भी देखना है आप किस तरह पेड़ कटवाते हैं।
1: इतनी ही देर में गांव भर में ये खबर फैल गई कि शिवपाल सिंह मनोहर सिंह का पेड़ कटवा रहे हैं, और मनोहर सिंह तलवार खींचे खड़ा है, किसी को पेड़ के पास जाने नहीं देता। ये खबर फैलते ही गांव भर के लोग जमा हो गए। गांव के 2-4 प्रतिष्ठित आदमियों ने मनोहर सिंह से पूछा,
2: क्या बात है मनोहर सिंह,

0: मैं रुपए देता हूं, ठाकुर लेते नहीं। कहते हैं कल तक मियाद थी, अब तो पेड़ कटेगा।
1: कल तक ये रुपए दे देता तो पेड़ पर हमारा कोई अधिकार ना होता। अब हमारा उस पर पूरा अधिकार है, हम पेड़ अवश्य कटवाएंगे।
2: भीड़ में खड़े हुए लोगों के बीच में से एक व्यक्ति बोला, जब कल इसके पास रुपए नहीं थे तो आज कहां से आ गए? तभी शिवपाल सिंह का एक आदमी बोला, तेजा ने अभी लाकर दिए हैं। भीड़ में गांव वालों के साथ तेजा का पिता भी था। उसने ये सुनकर तेजा को पकड़ा और कहा,
3: क्यों रे, तू नहीं रुपए चुराए थे? मैंने दोपहर को पूछा तो 3 तेरा बकने लगा था। मनोहर, ये रुपया तेजा मेरी संदूक से चुरा लाया है, ये रुपए मेरे हैं।
0: तेरे हैं तो ले जा, मैंने तेरे लड़के से रुपए नहीं मांगे थे। तेजा बेटा, तूने ये बुरा काम किया, चोरी की। राम राम राम, बुढ़ापे में मेरी नाक कटाने का काम किया, ये लोग समझेंगे मैंने ही चुराने के लिए तुझसे कहा होगा।
4: चाचा, मैं गंगा उठाकर कह सकता हूं कि तुमने मुझसे रुपए मांगे तक नहीं, चुराने के लिए कहना तो बड़ी दूर की बात है।
1: क्यों मनोहर, अब रुपए कहाँ हैं? लाओ लाओ, रुपए ही लाओ, मैं रुपए लेने को तैयार हूं। अब या तो रुपए दे दो या सामने से हट जाओ, झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं होगा।
0: ठाकुर साहब, इन तानों से क्या फायदा? रुपए मेरे पास नहीं है, लेकिन पेड़ मैं कटने नहीं दूंगा।
1: आप लोग इस बात को देखिए और न्याय कीजिए। मियाद कल तक की थी, मैं आज भी रुपए लेने को तैयार हूं। अब मेरा अपराध नहीं है, ये बुड्ढा व्यर्थ में झगड़ा कर रहा है।
2: तेजा सिंह ये सुनते ही आगे बढ़ा और अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतारकर शिवपाल सिंह से बोला,
4: ठाकुर साहब, ये अंगूठी 1 तोले की है, आपके रुपए इससे निकल आवेंगे। आप यह अंगूठी ले जाइए, इस अंगूठी पर मेरे बापू का कोई अधिकार नहीं, यह अंगूठी मुझे मेरे नानी ने दी थी।
2: सब लोग लड़के की बात सुनकर दंग हो गए। ये देखकर तेजा सिंह के पिता ने आगे बढ़कर कहा,
3: ठाकुर साहब, लीजिए ये 25 रुपए और अब इस पेड़ को छोड़ दीजिए। आप अभी कह चुके हैं कि रुपए मिल जाएं तो पेड़ छोड़ देंगे, अपने वचन का पालन कीजिए, पेड़ छोड़ दीजिए।
2: ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ गया, उन्हें विश्वास हो गया था कि अब मनोहर सिंह को रुपए मिलना असंभव है। इसी से उन्होंने केवल अपनी उदारता दिखाने के लिए रुपए लेना स्वीकार किया था। अब वो कुछ न कह सके, कारण कि उन्होंने 25-30 आदमियों के सामने रुपए लेना स्वीकार कर लिया था। वो रुपए लेकर चुपचाप चले गए। ठाकुर साहब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा सिंह को बुलाकर छाती से लगाया और कहा,
0: तेजा बेटा, इस पेड़ को तूने ही बचाया, मैं तुझी को ये पेड़ देता हूं। मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पीछे तू इस पेड़ की पूरी रक्षा कर सकेगा। भाइयों, मैं तुम सबके सामने ये पेड़ तेजा सिंह को देता हूं। तेजा को छोड़कर इस पर किसी का कोई अधिकार न रहेगा। पर मेरे जीते जी कोई पेड़ में हाथ नहीं लगा सकता था, अपनी और उसकी जान एक कर देता। मैंने फौज में नौकरी की है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं, ये बेचारे हैं क्या चीज।
5: अशिक्षित का हृदय। अभी आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। लेखक थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह जी श्याम, तेजा सिंह सोहिल पात्रीकर, तेजा सिंह के पिता दीपक केसावलेकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
6: अभी हम सुन रहे थे कहानी अशिक्षित का हृदय, इसका दूसरा भाग। और इस कहानी को लेकर हमारे श्रोताओं को भी इंतजार था, क्योंकि ये दूसरा भाग था। एक श्रोता का ने जो संदेश लिखकर भेजा है कि अशिक्षित का

0: जब मैं पहली बार इस कहानी को मैंने सुना तो मैं भावुक हो गई और आज इसके दूसरी और अंतिम भाग का बहुत बेसब्री से इंतजार है और ये बहुत भावुक कर देने वाली प्यारी कहानी है, तो इनका इंतजार आज पूरा हो गया।
1: बिल्कुल, और इसी तरह एक और हमारे सखी ने लिख भेजा है कि एक तो जी श्याम जी की दमदार आवाज, ऊपर से जैन जी का बेहतरीन अभिनय, तो उन्हें कहानी बहुत ही सुंदर लगी। बेशक हमें भी कहानी बहुत अच्छी लगी, और जब कहानी सुनते हैं तो उनकी जो कहानी में जो पात्र चल रहे हैं और कहानी किस चीज के इर्द गिर्द घूम रही है, हम भी खो जाते हैं, है ना चंचल?
0: और कई बार जो चित्रण है बिल्कुल हमारे सामने होता है कि वो जो नीम का पेड़ है, जो उस का व्यक्ति का दर्द है जिसका पेड़ काटा जा रहा है, वो सब चीजें, और एक इंसान जो बहुत सख्त है तो उसका चेहरा छवि कैसी होगी, ये हम अपनी कल्पनाओं में कहीं ना कहीं एक छवि बना लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और इसी तरह से स्तनपान की जब हम बात कर रहे थे, इस पर भी एक बड़ा सुंदर संदेश आया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि एक व्यक्ति पैदा होने के बाद से ही सीखना प्रारंभ कर देता है, शिशु अवस्था में से ही वो पास में खपलता, पास रखी चीजों को छूने की पकड़ने की कोशिश करता है। ये इन्होंने सीखने को लेकर बातें लिखी हैं, जो हमारा अगला विषय
1: है वो है। और एक संदेश इसके जो स्तनपान के बारे में है, एक संदेश आया है, हमारे एक सखा लिखते हैं कि दूध को आधा भोजन भी कहा जाता है क्योंकि शिशु के लिए तो वो सर्वोपरि है, और मां के दूध का सेवन क्योंकि उसमें मिलने वाला पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल शुरुआत के दिनों में सर्वाधिक हुआ करता है।
0: और यही बात करते करते जब मेरी नजर गई घड़ी पर तो पता लगा कि अंतराल का वक्त हो गया है।
1: तो चलिए

विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और अंतराल के बाद हम वापस आ गए हैं, लेकिन अब सुनते हैं एक प्यारा सा और बहुत मीठा सा गीत।

0: जाने क्या क्या बना, और इसी तरह से हम जाने क्या क्या सीखते भी हैं।
1: बिल्कुल, बचपन से लेके आज तक का कभी लिस्ट लेके बैठे ना तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी
0: क्या क्या सीखा,
1: क्या क्या सीखा, क्या क्या चीज सीख के छोड़ दी और क्या क्या चीजों की सीखने की अभी भी इच्छाएं बाकी है।
0: बिल्कुल, लेकिन ये बात तय है कि नया कुछ ना कुछ सीखते रहना ही चाहिए, तो हमारे जो कहते हैं ना कि मस्तिष्क का विकास भी बढ़ते रहता है। कई बार लगता है ना कि अरे बहुत सीख लिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको जहां से कुछ भी सीखने का मौका मिले वो सीख लीजिए, ना ये सोचना है कि अरे ये हमसे छोटा है ये हमें क्या सिखाएगा।
1: सही बात,
0: कई बार छोटों से भी सीखने मिल जाता है हमें।
1: बिल्कुल सही कहा, और कई बार ऐसा जो सोचा नहीं हो वहां से भी सीखने मिल जाता है।
0: बिल्कुल, दिमाग को चुस्त दुरुस्त अगर बनाए रखना है तो ये बहुत जरूरी है कि सीखते रहें। और बहुत सारी जो रिसर्च होती है ना इन चीजों को लेकर, वो भी ये बताती हैं कि कोई भी नई चीज या नया शौक जब हम सीखते हैं तो ये हमारी याददाश्त को भी मजबूत बनाने के लिए बहुत मददगार होता है और इसके बहुत सारे फायदे भी हमें हो सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम अपने रोज के कामों की सूची बनाएं तो पाएंगे कि उसमें कुछ नया नहीं है, बल्कि हम रोजाना एक जैसा काम करके ही अपना दिन व्यतीत करते रहते हैं। दरअसल अपनी जो बिजी शेड्यूल है यानी व्यस्तता है या भागदौड़ भरी जीवन शैली है, इसके चलते कई नई चीजें सीखने के लिए समय निकालना कुछ हद तक एक चुनौतीपूर्ण काम भी हो जाता है। चंचल, है ना?
0: बहुत सही कह रही हूँ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक अपना कम्फर्ट जोन बना लेते हैं कि भाई हमें इतना ही करना है, यही करना है, और उसे छोड़कर कुछ भी नई चीज वो आजमाना ही नहीं चाहते, नया सीखना भी नहीं चाहते, और नए सीखने वो क्या करते हैं, टाल देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन नया सीखने के बारे में क्या फायदे होते हैं ये जब उनको पता लगेगा तो उनको भी लगेगा कि जो रूटीन की चीजें हैं उनसे बंध कर हम अपने दिमाग या शरीर को थोड़ा सा नुकसान तो पहुंचा रहे हैं, इसीलिए टालमटोल जब वो जानेंगे ना फायदे, टालमटोल करना छोड़ेंगे और नया सीखने की मुमकिन कोशिश भी जरूर करेंगे।
1: बिल्कुल, टालमटोल से याद आया कि हम ये जानते हैं कि ये सारी बातें, लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि हमने हाल ही में एक नया सीखने का मजा कब उठाया था। अगर ये सोचें और बहुत पहले या फिर कभी नहीं, या ये भी कुछ हद तक संभव है कि हम ये भूल भी चुके हों कि कुछ नया सीखने का हमने आनंद लिया या इसका आनंद होता क्या है, ये भी कभी कभी हम भूल जाते हैं। और सच मानिए ये अनुभव हमारे यानी बड़ों के लिए भी ठीक वैसा ही होगा जैसे किसी बच्चे को किसी एक चॉकलेट के स्टोर पे दुकान पे ले जाए जहां पे इस तरह की कैंडीज वगैरह खूब मिलती है, या कोई पसंदीदा खिलौने को पाकर के जैसे उसे खुशी मिलती है ना, शायद वैसी खुशी वैसा आनंद हम बड़े हम लोगों को भी आए।
0: और दीपा, विज्ञान भी यही कहता है कि जब कोई नया अनुभव हमारे दिमाग को ऐसी खुराक देता है तो वो चीज हमारे मूड को बहुत बेहतर बनाती है और तनाव को भी दूर करती है, यानी कि तनाव चुमंतर, और नया सीखकर हम संपूर्णता और गर्व भी महसूस करते हैं। साथ ही दूसरा काम जो कोई नहीं कर सकता वो भी हमें आ जाता है, और हमारा आत्मविश्वास, हमारे निर्णय लेने की क्षमता, इन चीजों में भी विकास होता है।
1: बिल्कुल, और जब नया सीखते हैं तो देखो खुशी की एक बात ही अलग होती है, वो दिन सारा दिन एकदम ऊर्जा में हमारा बीतता है। और जब हम ये नया सीखने की शुरुआत करेंगे तो पहले से ज्यादा समय मिलेगा हमें, सुनने में अजीब जरूर लगेगा लेकिन ये सही है। दरअसल में हम जब अपने रूटीन से हटकर कुछ करते हैं और अपनी रोजाना या जो अपना जो साप्ताहिक सारणी होती है ना, एक वीकली टाइम टेबल कह लीजिए उसे, उसमें कुछ नया जोड़ते हैं तो होता यह है कि हम अपना पूरा जो शेड्यूल है वो बदल देते हैं और उसी समय में से थोड़ा सा समय इसके लिए हम निकाल लेते हैं।
0: बिल्कुल, जहां एक बार लगता है ना कि नहीं हमें तो समय ही नहीं मिलता, हम कहां से समय निकालें, लेकिन वो चीज जब हमें रुचि देने लगती है और मजा आने लगता है उसमें, तो हमारा जो पूरा शेड्यूल है या टाइम टेबल है उसे हम बदल देते हैं और फिर वही उस चीज के लिए वक्त मिल जाता है। तो क्या इरादा है, गाना सुन के आगे बढ़े?
1: बिल्कुल, उसी का वक्त हो रहा है।

0: आए हैं दूर से, यानी कि संदेश बड़ी दूर दूर से आए हैं भाई हमारे श्रोताओं के, और बड़ी दूर दूर से जो श्रोता बैठे सुन रहे हैं उन्हीं के संदेश हम पढ़कर सुनाते हैं। नया सीखने को लेकर हम जो बातें कर रहे थे, इसके हमारे श्रोता कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान का सागर इतना विशाल है कि जितना सीखें उतना ही एहसास होता है कि अभी और गहरे उतरना है, कुछ और सीखना बाकी है। हर इंसान, हर अनुभव, हर यात्रा, हर चुनौती हमें कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाती है। समय लगातार बदल रहा है, नई तकनीक, नए विचार, नए तरीके हमारे सामने हर दिन आते रहते हैं। यदि हम सीखने के लिए तैयार रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए जीवन में कभी भी ये मत सोचिए कि अब सब कुछ सीख लिया है। जिज्ञासा को जीवित रखिए, प्रश्न पूछिए, अनुभवों से सीखिए और नए दिन का स्वागत हमेशा एक विद्यार्थी की तरह कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात लिखी है
1: बिल्कुल।
0: और अंत में लिखते हैं कि जो सीखना नहीं छोड़ता वो कभी भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। ये बहुत सही बात है, जो सीखेगा वही आगे भी बढ़ेगा और नए नए अनुभव भी उन्हीं को मिलेंगे जो
1: बिल्कुल
0: नया सीख रहे हैं।
1: और ऊर्जा में भी रहते हैं, खुश रहते हैं हमेशा, जो हमेशा निरंतर नया सीखना चाहते हैं। एक संदेश और आया है, ये कहता है कि नया सीखने के लिए तैयारी जरूरी है, खासकर आजकल के मोबाइल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर युग के साथ चलना अत्यंत जरूरी होता जा रहा है। बच्चे लोग तो इस टेक्नोलॉजी को आसानी से सीख लेते हैं, वहीं मेरे जैसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए उतनी आसानी रहती नहीं है। फिर भी इस बदलते युग के साथ कदम मिलाना भी जरूरी है। विविध भारती के इस मंच पे से सके सहेली कई सारी नई नई जानकारियां अक्सर मिलती रहती है उनसे, जो हम जैसे लोगों के लिए एक

0: सहारा सा बन गया है। तो देखिए ये परिवार ही ऐसा है, हम सब एक दूसरे का सहारा है, और जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम और आप मिलकर यही कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को शिक्षित करते रहें और जानकारी से भरते रहें।
1: इसी तरह से दीपा, जब हम प्रांतीय व्यंजन लेते हैं तो कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, कोई बंगाल में है, तो हर प्रांत के व्यंजन अलग होते हैं। यहां बैठकर हमने ये कोशिश भी शुरू की है कि प्रांतीय व्यंजन जब हम ले रहे हैं तो एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक किस तरह से मसालों का बदलाव होता है, थोड़ी थोड़ी सी चीजों का बदलाव करके एक व्यंजन को किस तरह से नया बना दिया जाता है।
0: बिल्कुल, चीजें तो वही होती हैं, चीजें वही होती है, लेकिन हम अपने घर में ही अगर सुन लिया है कहीं पे कार्यक्रम के दौरान कि भाई आज तो पश्चिम बंगाल की कोई चीज को हम कोई व्यंजन को सीख रहे हैं, तो हमारे घर में क्या क्या वो चीज है और हम कुछ ऐसे उसमें क्या चेंजेस करके एक नई कुछ रेसिपी हम बना सकते हैं।
1: तो सीखने के लिए तैयार रहने पर अगला संदेश मैं पढ़कर सुना रही हूँ आपको भी और हमारे सभी अन्य सुनने वाले।
0: चलिए,
1: बहता हुआ पानी साफ सुथरा और गतिमान होता है, मंजिल तक पहुंच जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में अंत तक हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। नया करने की चाह जीवन को उत्साह से भर देती है। आजकल मैं नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए छोटे छोटे से स्वेटर बना रही हूँ, इन्हें मैंने YouTube पर देखकर सीखा है, और कुछ नए स्टाइल से पैटर्न बनाना था तो थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई, लेकिन अब तक वो करीब करीब आधा बनने तक आ गया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और एक न एक दिन ये पूरा भी हो जाएगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं और बिल्कुल हमें ये विश्वास है कि आप इसे जरूर पूरा कर लेंगी, और जब ये पूरा होगा तो आपको खुशी होगी तो होगी, जिनके लिए आपने बनाया है
0: उन्हें भी खुशी होगी। और आप संदेश के द्वारा जरूर बताइएगा कि जो आप स्वेटर बना रही हैं वो पूरा हो चुका है
1: जी,
0: है ना। एक और संदेश आया है, ये कहता है कि आदमी पैदा होने के बाद से सीखना प्रारंभ कर देता है, शिशु अवस्था में ही वो अपने पास रखी चीजों को छूने के लिए या उसे पकड़ने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी सीखने की ललक बढ़ती जाती है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ते वक्त वो तरह तरह के विचारों और व्याख्यानों को से बहुत कुछ सीखता है, और पुस्तकों में जो अलग अलग बातें लिखी होती हैं उनसे सीखता है, प्रयोगशाला में अलग अलग आजमाते हैं वो प्रयोग करते हैं उनका प्रभाव जानता है, शादी ब्याह के बाद पत्नी के साथ जीवन जीने की कला सीखता है, लोगों को प्यार करना और सम्मान देना भी सीखता है। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन आदमी के जीवन में जारी रहती है।
1: इसी तरह से एक संदेश में छोटी सी है लेकिन बड़ी काम की बात है कि कोई भी नया सीखने में शर्म नहीं करनी चाहिए
0: जी,
1: नए काम बच्चे की तरह सिखा दिए जाते हैं। एक दूसरे प्रदेश के व्यंजन को भी बनाना सीखना चाहिए, यही बात अभी हम भी कर रहे थे। तो व्यंजन बनाना सीखेंगे लेकिन पहले गाना तो सुन लें।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: 4 औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक कुछ नया सीखने की बात कर रहे थे हम, है ना, तो लगातार एक जैसे रूटीन की से कभी कभी ये तनाव का कारण भी बन जाता है। तो शोधकर्ता कहते हैं कि एक अध्ययन में पाया गया कि उबाऊ जीवन जीने वाले को दिल के दौरे का 2 गुना ज्यादा जोखिम होता है। और वहीं चिकित्सक ये मानते हैं कि अपनी दिनचर्या को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम रोज एक ही तरह का काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां उसकी आदी हो जाती है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है या कम हो सकती है। दूसरी ओर जब हम कुछ नया सीखते हैं या करते हैं तो अपने व्यक्तित्व को संवरने और निखरने का मौका देते हैं और जीवन के कई क्षेत्रों में खुद को अपडेट भी करते हैं। इसलिए नया तो सीखते रहना चाहिए।
4: जब तुमने बात की खुद को अपडेट करने की, तो मोबाइल ऐसी चीज है जो खुद को अपने आप अपडेट करता रहता है। हम देखते हैं कि जब नया वर्जन आता है किसी भी ऐप का या मोबाइल का तो वो उसे अपडेट करता रहता है। वहीं जो पुराने जमाने के जो लोग हैं जिनके हाथ में छोटा सा फोन हुआ करता था, अब वो भी अपने आप को अपडेट करके एंड्रॉयड फोन चलाना सीख रहे हैं। तो एक संदेश आया है कि अब हम चलाना सीख रहे हैं एंड्रॉयड फोन और आप सभी प्यारी सहेलियों से भी हम जुड़ते जा रहे हैं और ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो भाई जिन्हें इस फोन को कई बार लेके हवा लगता था कि भाई इसमें इतनी सारी चीजें हैं और हाथ लगाते ही तो कुछ भी इसमें शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें टच स्क्रीन होती है
3: जी।
4: तो वो लोग भी इसे चलाना सीख रहे हैं और इसके साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार अपना बना रहे हैं।
3: बिल्कुल। और ये देखिए, ये अब कार्यक्रम में जितने संदेश आ रहे हैं ये अपने आप ही उस चीज का उदाहरण है कि कितने सारे लोग ये जो नई चीजें हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उसे सीखते चले जा रहे हैं।
4: तो अभी झालमुरी जिन्होंने खाई है, बनाई है, वो भी हमें संदेश भेज रहे हैं। इसीलिए हमारे एक श्रोता का संदेश है कि झालमुरी हमने धनबाद में खाई थी, जब छुट्टियों में हम मामा के घर जाते थे तो शाम को इसे जरूर खाते थे।
3: क्या बात है। और एक हमारी श्रोता सखी लिखती है कि झाल का मतलब होता है मसालेदार और तीखा, और मुड़ी का मतलब होता है मुरमुरा, यानी कि कुरमुरा या परमल, अलग अलग जगह पे इस तरह से बोलते हैं। जब मुरमुरे में उबले चने, उबले आलू, बारीक कटे प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, हरा धनिया, तली हुई चने की दाल और मिक्सर में कच्चा, उसको मिलाने के लिए कच्चे सरसों का तेल या अचार के सरसों का तेल डालकर बनाया जाता है तो उसे झाल मुरी कहते हैं। और उड़ीसा में जब इसे बनाते हैं तो इसमें आमा हल्दी, जिसे कच्चे आम का स्वाद होता है, जिसमें वो भी डालते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़िया हो जाता है।
4: हमारे श्रोता ने पूरी की पूरी इसके व्यंजन की विधि बनाकर बताई है हमें। तो इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो है मुरमुरे, यानी कि आधार सामग्री जो है इसकी वो 2 से 3 कप लेनी है। सब्जियां बारीक कटी हुई

0: जिसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, खीरा, उबले हुए आलू और हरी मिर्च। तो अपने स्वाद या अपनी जरूरत के अनुसार आप इन चीजों को ले सकते हैं। और कुछ क्रंची चीज यानी कुरकुरी चीजें लेनी है, उसमें भुनी हुई मूंगफली, जो चना होता है जिसे हम चना जोड़ गरम भी कहते हैं, वो लेना है, थोड़े से सेव लेने हैं या कोई भी मिक्स नमकीन आप ले सकते हैं। और कच्चा सरसों का तेल लेना है क्योंकि यही इसकी खास स्वाद की पहचान होती है। थोड़ा सा नींबू का रस लेना है और आम का अचार भी, जो मसाला है
1: उसका जो मसाला है जी,
0: वो लेना है। इसे बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में जो सारी सामग्री यानी कि मुरमुरे और कटी हुई सब्जियां, उबले आलू, मूंगफली, नमकीन, सेवे, सभी चीजें डाल दीजिए। ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल, नींबू का रस, अचार का मसाला और थोड़ा सा नमक अपने स्वाद अनुसार डालकर इसे मिला लेना है और झालमुरी बनकर तैयार है। और हमारे पास अभी गाना भी तैयार है।

0: एक संदेश कहता है,
1: हाँ
0: आप कुछ कहना चाह रही हैं?
1: भाई एक संदेश ये कहता है कि झालपुरी को भेलपुरी की सगी बहन कह सकते हैं।
0: अच्छा, हमने जो संदेश चुना है वो ये कहता है कि झालमुड़ी हमारे बिहार में खाते हैं, जिसे भुजा बोलते हैं, उसमें उबले आलू नहीं डाले जाते, चार भुने अनाज यानी चना, मूंगफली, मटर, मटका ये डाले जाते हैं, और सरसों के तेल और कुछ अचार के मसालों के साथ ये बिहार का बेहद लोकप्रिय स्नैक्स है।
1: तो भाई अब ये जो टाइम है ये स्नैक्स का भी हो गया है और कार्यक्रम का भी समय पूरा हो चला है, तो इसके बाद टी टाइम में किसको क्या स्नैक्स खाने हैं वो सब अपनी पसंद से चुन सकते हैं। लेकिन फिलहाल लेते हैं विदा चंचल वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी का। नमस्कार
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।

कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनने वाले सभी नए पुराने दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए अलका याग्निक और मनहर उदास की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम है त्रिदेव।

लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। संगीतकार हैं मदन मोहन और जयदेव। फिल्म का नाम है लैला मजनू।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: विचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: जावेद अख्तर का लिखा गीत सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। संगीत है अनु मलिक का, फिल्म का नाम है मैं हूं ना।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मन्ना डे की आवाज में। नगमा निगार है हसरत जयपुरी, तर्ज है शंकर जय किशन की। फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर।

दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का चार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का चार है।

आइए सुनते हैं अगला गीत अभिजीत अनु मलिक और अनुराधा श्रीराम की आवाजों में। शब्द रचना समीर की, संगीत रचना अनु मलिक की, फिल्म का नाम है बीवी नंबर 1।

राष्ट्रीय सेवा विविध भारती, ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। साथियों, एक बार फिर तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है हम जोली।

ओ सनम जाने मुझे ऐसे देखा तूने कैसे क्यों होने लगी जी में टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: कार्यक्रम में अगली आवाजें हैं सुदेश भोसले, कुमार सानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत है बप्पी लहरी का, फिल्म का नाम है आंखें।

दिल के लिए दिल का कोई पैगाम तो बता। आशिक का तेरे क्या होगा अंजाम तो बता। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों, कार्यक्रम की अगली पेशकश है किशोर कुमार की आवाज में। नखमनिगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

कार्यक्रम की अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं अनुराधा श्रीराम की आवाज में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं अनु मलिक। फिल्म का नाम है मुझे कुछ कहना है।

0: साथियों, कार्यक्रम तराने नए पुराने अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।